0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
14: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
15: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
16: It's Lawson.
15: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
16: It's Lawson.
15: Daddy, what is the law?
17: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
18: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

गुड इवनिंग डैलस की जनता, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो बहुत सही हूँ. बस यस यस यस, वो टाइम आ चुका है भाई. कौन सा टाइम है? टाइम है फॉर एन इवनिंग इन डैलस फीचरिंग योर वन एंड ओनली इपी द हिपी ऑन फनीशियर रेडियो 104.9 FM. दैट इज करेक्ट गाइज, इट इज द टाइम. और मैं आपके साथ रहने वाली हूँ पूरे 3 घंटे, फुल 3 आवर्स, ऑल द वे टिल 10 o'clock. तो पहली बात तो, आपका वीकेंड कैसा गया? आप डिड यू ऑल कैच अप ऑन कॉकटेल टू येट? नहीं देखी? वो यू शुड गो चेक इट आउट. यू नो वी गाइज फ्रॉम फनेशिया, वी वर डूइंग दिस इनक्रेडिबल प्रोमो थिंग विच वॉज हैपनिंग at different locations all across DFW, and a lot of people won free tickets to the movie. So, भाई अगर आपने Cocktail 2 नहीं देखी, then you must check out after the super hit success of 2012 Cocktails, drama, romance, and friendship. They are back with a fresh twist. Get ready for Cocktail 2, releasing in theaters on June 19, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna. A new story, new emotions, and a brand new cocktail of love, friendship, heartbreak awaits you. So don't miss Cocktail 2. मैंने अभी तक नहीं देखी. I have to go check it out. But तब तक के लिए आप Cocktail 2 का ये गाना सुनिए. हाँ.

भाई आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? भाई मेरे को ऐसा लग रहा है सारी हर तरफ से मैं इतना सारा काम करती हूँ, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में मुझे पैसा उतना नहीं मिलता। और सारे मेरे जितने भी लोग हैं ना मेरे आसपास के, सब मेरे साथ पैसे की गड़बड़ कर रहे हैं। मेरी आई वर्क इन लाइक टू डिफरेंट प्लेसेस, एक जगह से मुझे पैसे ही नहीं आए, दूसरी जगह से उन्होंने मेरी पे चेक कम कर दी। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है क्या? आई नो मर्क्यूरी इज माई लाइक डोमिनेंट प्लानट एंड एवरी थिंग, लाइक आई एम अ वर्गो एंड स्टफ, बट यू गाइज आई मीन पैसा इज वेरी जरूरत है ना वो, तो दैट डिड नॉट मेक एनी सेंस ना इंग्लिश में ना हिंदी में, बट आपको मीनिंग समझ में आ गया ना। इट डजेंट मैटर भाई, ग्रामर कुछ भी हो, मीनिंग समझ में आना चाहिए। वेरी जरूरत है मुझे पैसों की, और लेकिन पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, इधर उधर जा रहा है, और उसके ऊपर से मैंने शॉपिंग पे शॉपिंग कर जा रहा है, ठीक है, जा रही हूँ। चलो ये गाना सुनते हैं, उसके बाद वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर एट 7:30।

0: They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
4: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
5: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
6: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
8: हाँ.
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ.
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ.
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
10: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
11: ओए पैंदा, व्याह है गाय, एयरपोर्ट जान दी कोई जरूरत नहीं, समझ गया?

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies.

करना कितना सही था. पता है गाइस, मेरे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं और नॉट सो रेगुलर लिसनर्स भी हैं, मैंने आज डिसाइड किया है कि आज पूरे शो में फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स मैं सिर्फ 5 बार ही एनीवेज बोलूंगी कि ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी टीम ने बोला है कि मैं इतनी बार ही एनीवेज बोलती हूँ, हर 2 मिनट में एनीवेज बोलती रहती हूँ. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे 3 घंटे में ओनली 5 टाइम्स आई विल से एनीवेज, क्योंकि भाई 5 टाइम्स इज लाइक नॉर्मल. ठीक है, तो एक बार तो मैंने बोल दिया पहले ही, वो 7 o'clock टू 7:30 के बीच वाले टाइम में एक बार हो गया. सो नाउ वी ओनली हैव 4 लेफ्ट. अगर उसके पहले उसके उससे ज़्यादा हो गया देन आई डोंट नो, वो फिर मैं अपने लिए कोई पनिशमेंट डिसाइड करूंगी, लेकिन अभी के लिए वी लिमिटेड टू 5. ठीक है, धीरे धीरे करके होता है ना, मतलब एक आदत अगर आपकी लग जाती है तो उसको छोड़ने में थोड़ी टाइम तो लगती है यार, थोड़ा टाइम तो, मतलब यू नो यू हैव टू गिव इट यू नो लिटिल बिट, यू हैव टू बी लिटिल काइंड टू योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस. मैं दोबारा बोलने वाली थी लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि मैंने चेक कर लिया अपने आप को. तो हम एक गाना सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड देन टॉक अबाउट सम फन स्टफ लाइक हाउ वाज योर मंडे.

गाइज, आप लोगों का मंडे कैसा गया? मेरा मेरा तो वीकेंड बहुत अच्छा गया. आई सॉ सम लाइक रियली रियली रियली कूल थिंग्स दिस वीकेंड. सबसे मज़ेदार चीज़ पता है क्या देखी मैंने? सो वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट हॉबीज, और लाइक आई डोंट नो इफ इट्स अ हॉबी रियली, बट इट्स लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट क्वर्क्स इज वन आई एम ड्राइविंग. और मुझे ना लोगों के नंबर प्लेट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है. यू नो इट्स लाइक एन इंसाइट इन टू वट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी दे हैव. सम पीपल पुट देयर नेम्स, कुछ लोग कुछ फनी फनी चीज़ें डालते हैं. तो सैटरडे को मैं ड्राइव करी थी सैटरडे मॉर्निंग, एंड आई वॉज गोइंग टू वन ऑफ माई लेसन्स, एंड आई सॉ दिस रेड टेस्ला. ठीक है, अब अगर आपकी वो गाड़ी है तो आई एम सॉरी, बट आई थिंक दैट वॉज लाइक सुपर कूल, क्योंकि मैं आपकी गाड़ी के बारे में बता रही हूँ. बट आई डोंट नो किसकी गाड़ी है. मेरे आगे से जा रही थी वो गाड़ी, एंड आई सॉ इट. इट वॉज अ रेड टेस्ला, और उसका नंबर प्लेट पता है क्या था? पनीर. यू गाइज, उसको इतना पनीर से इतना प्यार है, एंड दैट एब्सोल्युटली मेड माई डे. मैंने कहा यार, इस बंदे या बंदी को पनीर से इतना गहरा लगाव है कि ही हैज़ मेड एन इमोशनल बॉन्ड विद पनीर, एंड उसकी पूरी ब्रांडिंग ही पनीर के ऊपर चल रही है. मतलब आई न्यू अ पर्सन लाइक दैट बैक इन इंडिया, लेकिन इट्स गुड टू सी पीपल लव देयर प्रोटीन सो मच. क्योंकि इंडिया में पता है क्या है, हमारे डाइट में, इंडिया साउथ एशियन डाइट में बोलते बहुत है, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हम लोग सब खाते हैं अपना प्रोटीन नहीं खाते. भाई यू नो दिस गाय, ये तो पक्का अपना प्रोटीन खा रहा होगा. ही मस्ट बी ईटिंग पनीर इन एवरी सिंगल मील ऑफ द डे. एंजॉय दिस सॉन्ग. दिस वन गोज आउट टू जिमरान.

All right, guys. Chunari Chunari, the new version of that track. बिल्कुल. और ये movie तो निकल चुकी है. आप, I'm sure आप सबने देखी होगी. But this was quite a big hit. Like the original Chunari Chunari also. It was such a classic tune. मुझे याद है मैंने जब अपने college का farewell किया था, when I was like what 21 years old. तब हम लोगों ने इस पे डांस किया था. यू नो, वी वर गिविंग अ फेयरवेल टू आर कॉलेज सीनियर्स. तो मैंने ही कोरियोग्राफ किया था. मैंने बोला मैं सिखाती हूँ सबको डांस करना, आओ भाई. और सब लोगों ने फॉलो भी किया, विच वॉज प्रीटी गुड. इट वॉज प्रीटी गुड एंड इट वॉज सच एन आइकॉनिक मोमेंट. कि उसके बाद मेरी जब दोस्त की शादी हुई उस पर भी हमने इसी गाने पर डांस किया. ये गाना था जो सब उस पर गाना डांस करना चाहते थे. एनीवेज, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू देवन राणा. देवन, आप 15 साल के हो चुके हैं. ये स्पेशल गाना आपके लिए. आई एम श्योर अगर आपको पेरेंट्स की परमिशन मिल गई है तो थोड़ा आप दोस्तों के साथ घूमो फिरो, पार्टी चार्टी करो. 15 इज अ वेरी आइकॉनिक, यू नो, ईयर. इट्स लाइक राइट इन द मिडल ऑफ योर टीन्स एंड आई होप यू हैव फन एंड एंजॉय दिस ट्यून. अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द फन.

0: ये भी शुरुआत ही है। ये नेक्स्ट गाना मैं आपके लिए बजा रही हूँ, दिस इज फॉर हरजिंदर जी, जिन्होंने कॉल करके मुझे रिमाइंड किया कि भाई एनीवेज मैं दोबारा बोल चुकी हूँ, तो मेरे दो एनीवेज पूरे 3 घंटे में से गायब हो गए हैं। अभी मेरे पास बचते हैं सिर्फ तीन ही, नहीं दो एनीवेज गायब हो चुके, सिर्फ तीन ही बचे मेरे पास। हा, आई थिंक आई कैन डू इट। डू यू थिंक आई कैन डू इट? आई थिंक आई कैन डू इट। हरजिंदर जी, थैंक्स फॉर द कॉल, दिस सॉन्ग इज फॉर यू। जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर टू, दैट काइंड ऑफ राइम्स।
1: बात

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: Now, sir, or price?
6: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duds may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
15: गाइज, वक्त आ चुका है किस चीज का, मैं बिना एनीवेज बोल के मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वक्त आ चुका है। ये वक्त आ चुका है गिव अवे का। दैट इज करेक्ट। हमारे पास आज एक नहीं, दो गिव अवे हैं। उसके बाद मैं माया जी के लिए एक बड़ा अच्छा सा गाना बजाऊंगी, लेकिन पहले मुझे गिव अवे करना पड़ता है क्योंकि वो 8 बजे का स्लॉट है। एंड तब तक के लिए माया जी, यू विल हैव टू वेट फॉर लाइक 5 मिनट्स। ओके, What is the giveaway? The giveaway is Fun Pizza Kitchen. Are you craving something cheesy with a desi twist? Fun Pizza Kitchen is where flavor meets fire. अगर आप वेजी हैं, then you can try the achari paneer pizza और अपने number plate पे भी डाल लेना। फिर उसके बाद packed with tangy achar punch and soft paneer melting in your mouth. And then for meat lovers, you have the tandoori chicken pizza, and I'm sure there is other varieties also. Straight from the tandoor to your taste buds. और अगर आपको beautifully balanced कोई flavor चाहिए with bold masala and spices, then there is a slice waiting for you at Fun Pizza Kitchen. For details, you can log on to funpizzakitchen.com. तो आप क्या जीत सकते हैं आज के गिव अवे क्वेश्चन में? आपको मिलेगा $10 का गिफ्ट कार्ड जो आप वहां जाके रिडीम कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ऑन हाउ टू रिडीम इट, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एट फनेजा रेडियो. प्लीज कोशिश करिए कि मुझे इस बारे में डीएम ना करें मेरे इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप यहाँ पे कॉल करके मुझे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी को भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड दे विल गिव यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. तो अगर आपने गिव अवे पहले खेला है तो मैं आपके लिए बजाऊंगी एक कोई रंगीन सा गाना फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज और उसका कॉपी कैट बॉलीवुड वर्जन ऑफ द सॉन्ग. ओके, तो लेट्स सी मतलब पहले कौन सा किसने कॉपी किया था, इसका तो मैं अभी जवाब नहीं बता सकती हूँ, लेकिन दीज बोथ साउंड वेरी वेरी सिमिलर, लाइक एक्सट्रीमली सिमिलर. ओके, तो ये थोड़ा मुश्किल है, सो आई विल ऑलरेडी गिव यू अ हिंट बिकॉज आई एम नाइस लाइक दैट. ओके, द बॉलीवुड सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी शोले. ओके, और उससे ज़्यादा अगर मैंने बता दिया तो मैंने सारा ही मतलब आपको मतलब सारे क्लूज ही दे दिए, तो वो मैं नहीं कर सकती. तो आप ये वाला गाना सुनिए एंड देन टेल मी व्हाट इज द बॉलीवुड वर्जन फॉर इट.

अब तक है जा जाने जहां, मैं अपनी बातें नहीं बंद करूंगी क्योंकि मैं पैदा ही हुई थी बातें करने के लिए. गाइस दिस नेक्स्ट पार्ट मैं खाना खाते खाते बोल रही हूँ क्योंकि भाई डिनर टाइम भी हो चुका है. वी हैव टू मल्टीटास्क ओवर हियर. ओके दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. अगर आप किसी भी कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस गए हैं या फिर एक स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हो गया है, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट उमर ख्वाजा. ही विल कम एंड फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन यू डिजर्व. इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर वेल कॉम्पेंसेटेड. और आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है जब तक आप जीत नहीं जाते हैं. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046 or visit attorneyomer.com. Well, this next song goes out to Maya ji, who's been my regular listeners. Maya ji, she thinks I'm flying very, very high. But I said, "Bhai, Maya ji, paise to hai nahi, fame bhi hai nahi. Chalo, aap logon se baatein kar rahi hoon. That's it. But I don't think I have reached the place where I visualize myself to be. Maybe one day I will get there. But Maya ji is saying I'm running really, really fast, and I really hope that I don't fall and crash despite me running that fast. Although I don't think I'm running that fast. I feel like I'm quite behind. But this is a little bit of a spiritual tune. We will listen to a little bit of this and then we will come back and resume our fun stuff. This one goes out to Maya ji.

ऑलराइट गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं. भाई वो गाना था माया जी के लिए, हु इज बिन माय रेगुलर लिसनर. ऑल्दो हमारे उसमें वाइब में मैच नहीं गया, बट स्टिल बिकॉज दिस इज फॉर जस्ट फॉर माया जी, बिकॉज यू आर सो ऑसम. आप मुझे हर रोज कॉल करती है एंड दैट्स अमेजिंग. एनीवेज गाइस, ये नेक्स्ट गाना, ओहो फिर से एनीवेज बोल दिया, कोई बात नहीं, तीसरा हो गया, नंबर थ्री इज गॉन, टू मोर लेफ्ट. तो आगे बढ़ते हैं और ये गाना सुनते हैं, क्योंकि भाई स्वीटी हमें भी तुम्हारा प्यार चाहिए था. हाँ,

भाई कोई हाथ धो के स्वीटी के इतना पीछे पड़ जाएगा, इतना चेप हो जाएगा, तो फिर स्वीटी क्या बोलेगी? मतलब स्वीटी स्वीटी स्वीटी तेरा ऐसा, तो मतलब आप पीछे ही पड़ गए हो ना भाई। गिव सम स्पेस टू ब्रीद, स्वीटी को भी सांस लेने दो, नहीं तो स्वीटी घूम के आके ये बोलने वाली है।

एंड वी आर बैक. हम चार मिनट में एक जाने वाले हैं ब्रेक में, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक छोटा सा गाना मैं आपके लिए बजाती हूँ. ये मेरा गाना है, अगर आपको पसंद आए तो जरूर लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई. हे दैट राइम्स टू. आज आई एम ऑन फायर. वाओ. दिस इज किताबे बाय योर्स ट्रूली.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, सारे accounts updated.
6: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps

0: understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
0: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
2: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
3: इट्स लॉसन.
2: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
3: इट्स लॉसन.
2: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
4: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे. 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
0: Hey maps, take me to my desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.

0: Bollywood's biggest super hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: Alright guys, हम वापस आ चुके हैं. बिल्कुल मेरे रेगुलर कॉलर आतिक जी ने मुझे फोन किया और मुझे ये क्यूरियस होकर वो पूछ रहे हैं कि जो मैं थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि भाई यहाँ से भी पैसे की गड़बड़ हो रही है, वहाँ से भी पैसे की गड़बड़ हो रही है, सब इधर उधर से पैसा मारने की कोशिश कर रहे हैं. लाइफ इज सच, व्हाट टू डू. लेकिन हम लोग उसी में से अपना सिचुएशन निकाल के बाहर आते हैं, क्यों है ना, बिकॉज वी हैव टू फाइट फॉर योर राइट. राइट, एग्जैक्टली. तो वो बातें हम बाद में करेंगे. लेकिन जैसे मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, 8:30 को हमारा सेकंड गिव अवे होगा. लेडीज एंड जेंट्स, दिस इज योर चांस टू विन ए दाल मखनी यम यम या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज लोकेटेड एट द प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. कहाँ पे? फ्लेवर लाउंज प्रेस्टन रोड वाले लोकेशन पे इन फ्रिस्को. बाय द वे, ये गिव अवे सिर्फ डाइन इन के लिए है. तो आप जीत सकते हैं एक दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि पिछले एक महीने में आप ये गिव अवे नहीं जीते हैं. ठीक है, नहीं तो फिर इट्स अनफेयर टू द अदर लिसनर्स ना. सबको चांस मिलना चाहिए भाई. और दूसरी चीज़, या बेसिकली हम आप रेस्टोरेंट पे डायरेक्टली जाके इसको रिडीम कर सकते हैं. फनेशिया इज़ नॉट गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, लेकिन हम आपका इन्फॉर्मेशन लेंगे जो हम रेस्टोरेंट में फॉरवर्ड करेंगे और वहाँ जाके आप इसको रिडीम कर सकते हैं. ठीक है, दे विल हैव ऑल योर इन्फो. लेकिन 2-3 दिन लगता है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचने में. सो बेसिकली दैट्स अ थिंग. और कोशिश करिए कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर रिडीम कर लीजिए. लेकिन कहीं तो क्या होता है, बहुत बैकलॉग हो जाता है. ठीक है, तो अगर आपने गिव अवे खेला हुआ है ये पहले, तो आपको पता ही होगा कि ये कौन सा गिव अवे है. एग्जैक्टली, ये कॉपी कैट गिव अवे है. भाई मेरे को कैसे पता इतना सारा इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी रिसर्च करती हूँ यार. ऐसा नहीं है मैं मुंह उठा के चली आती हूँ रेडियो पे बोलने. बहुत बारी वो भी किया हुआ है मैंने, लेकिन ये वाला कॉपी कैट वाला तो बिल्कुल मैं रिसर्च करके लाती हूँ एकदम मैचिंग सॉन्ग ढूंढ के, क्योंकि भाई वो मेरा काम है. तो मैं बजाऊंगी आपके लिए एक मज़ेदार ईरानी गाना. ईरानी दिस टाइम, ओके. इट इज़ नॉट एनी अदर सॉन्ग, इट इज़ नॉट एन इंग्लिश ट्यून, इट इज़ एन ईरानी ट्यून. इट्स अ वेरी ओल्ड ईरानी फोक ट्यून. लेकिन इस ट्यून को बहुत लोगों ने अडेप्ट किया हुआ है, क्योंकि फोक ट्यून है तो सब लोगों ने अपना अपना वर्जन गाया हुआ है. तो मैं आपको थोड़ा सा 80s का वर्जन प्ले करती हूँ, ठीक है. और उसके बाद आपको मुझे कॉल करके बताना है कि इसका बॉलीवुड वर्जन क्या है. ये बहुत ईजी है तो मैं आपको हिंट नहीं दे रही. माई नंबर इज 9722355555. तो रेडी है? 5, 4, 3, 2, and 1. Here we go.

0: Hello, thank you for calling. Can you hear me?
1: This is Samana.
0: This is what?
1: Samana.
0: Your name is
1: Oh, and
0: Samana?
1: then
0: How do you
1: the name,
0: अच्छा आई विल टेक
1: sorry.
0: योर इन्फॉर्मेशन नो वरीज आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद ठीक है बट डू यू हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन पहले तो
1: वाज लाइक हेमत और लाइक हेमा.
0: हेमा
1: या
0: द व्हाट इज द सॉन्ग नेम डू यू नो द सॉन्ग नेम
1: That's the name, Hema or something.
0: नो दैट्स नॉट द
1: No.
0: राइट बट थैंक यू फॉर कॉलिंग हाय ओ भाई आ गया दूसरा कॉल हाय फाइनेंशियल रेडियो यू आर ऑन एयर थैंक यू फॉर कॉलिंग हेलो हेलो हेलो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं हेलो ओके नेक्स्ट कॉल पे जाते हैं हाय फाइनेंशियल रेडियो थैंक यू फॉर कॉलिंग हेलो हेलो
2: हेलो
0: हाँ आपको
2: हेलो.
0: आवाज़ आ गई मेरी
2: जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज.
0: परफेक्ट आप अपना नाम बताइए पहले और फिर उसके बाद आंसर बताइए क्वेश्चन का
2: मेरा नाम है अनुज.
0: अनुज अनुज ओके सो डू यू हैव द आंसर टू द क्वेश्चन
2: आई थिंक सो. द सॉन्ग इज यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा.
0: नो इट्स नॉट बट दैट वाज अ गुड ट्राई दे आर वेरी क्लोज बाय दे आर वेरी
2: ओके,
0: क्लोज
2: नो
0: बाय बट दैट्स
2: प्रॉब्लम.
0: नॉट द आंसर ऑलराइट हुज नेक्स्ट Hi, Phanisha Radio.
3: हेलो,
0: Hi. Okay, do you have the answer to this question? First of all, tell me your
3: हाय. आई
0: name.
3: डिडंट माय नेम इज कमलेश. आई डिडंट हियर द क्वेश्चन बट आई हर्ड द सॉन्ग. आई थिंक आई स्टार्टेड लेट बट आई
0: Okay.
3: थिंक यू वांट टू नो द नेम ऑफ द सॉन्ग बेस्ड ऑन वेयर इज दिस इंस्पायर्ड फ्रॉम, राइट?
0: Yeah, what is a Bollywood copycat of this song? Like, I played an Iranian song.
3: ओके,
0: What's a
3: जहां
0: Bollywood?
3: तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है.
0: Very
3: आई थिंक
0: good,
3: दैट.
0: कमलेश, यू हैव वन द गिव अवे तालियां डर डर डर वेरी गुड
3: थैंक
0: भाई इतने सारे ट्राइज के बाद 4-5 कॉल्स के बाद कमलेश का नंबर लग गया तो कमलेश यू हैव टू स्टे ऑन द लाइन आई एम गोना प्ले द
3: ओके.
0: सॉन्ग
3: हाँ,
0: इन द बैकग्राउंड ठीक है और
3: ओके
0: एंड आई एम गोना टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर ओके तो जस्ट स्टे ऑन द लाइन डोंट हैंग अप तब तक मैं गाना बजाती हूँ गाइज आप तब तक के लिए
3: श्योर.
0: गाना एंजॉय करिए एंड वी विल बी राइट बैक

भाई कॉपी की जब बात आती है तो भाई अब उस थीम में जब जा रहे हैं तो एक धुन के कितने सारे गाने हो सकते हैं. मतलब यू नो फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज, डिफरेंट कंट्रीज. वेल दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम ए डिफरेंट कंट्री, लेकिन इसकी भी ट्यून सेम ही है यार. तो जब मूड चल ही रहा है सेम ट्यून का तो इसको भी बजा ही देता है. जस्ट पॉप्ड अप ऑन माय इंस्टाग्राम अ फ्यू डेज अगो एंड आई वाज लाइक यार आई हैव टू प्ले दिस ट्यून. तो दिस इज मैं गाना ही बजाती हूँ, बाद में बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है, चलो लेट्स लिसन टू इट.

0: नहीं।
1: भाई आप मानेगी नहीं, उसका तो नहीं पता भाई, आप क्यों, आप मानेगी नहीं। भाई इसके पहले जो मेरा शो पिछले 2 घंटे से सुन रहे हैं उनको शायद पता ही चल गया होगा कि हाँ मैंने अपना शो आज शुरू किया एक बड़े यूनिक से टेस्ला वाले नंबर प्लेट से, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग ऑन सैटरडे और मेरे सामने एक गाड़ी आई लाल रंग की टेस्ला। मैंने कहा चलो ठीक है, लाल रंग की टेस्ला प्रिटी प्रिटी कॉमन, ठीक है। उसके बाद मैंने नंबर प्लेट देखा, उसके नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था पनीर। पनीर मैन, हाउ मच डू यू हैव टू लव पनीर टू एक्चुअली पुट इट ऑन योर नंबर प्लेट, कि आप पैसे खर्च करके उसका नंबर प्लेट बना रहे हो सच में, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट्स चीप है ना, वो नंबर प्लेट लेना थोड़ा इट्स अ लिटल एक्सपेंसिव। एनीवेज तो ये ना मेरी नई हॉबी बन चुकी है, जो मैं कभी भी ड्राइव करती हूँ ना मैं हमेशा लोगों के नंबर प्लेट देखती रहती हूँ कि इसने किसने क्या डाला। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैंने देखा आज ड्राइव करते करते, मोस्टली मुझे याद नहीं रहते बट आज एक और मुझे दिखा, उसमें लिखा हुआ था ऑलवेज L8। तो उसको पता है कि वो जिंदगी में हमेशा लेट होगा तो इसीलिए उसने अपना नंबर प्लेट ही लिख दिया ऑलवेज लेट। भाई जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए वी विल ऑलवेज बी लेट, इंडियन है ना हम लोग, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो फॉलो करके ही चलेंगे है ना। तो इसीलिए ये गाना सुनते हैं क्योंकि रुकी रुकी सबकी जिंदगी होती है लेकिन उसको आगे बढ़ानी पड़ती है थोड़ा, चाहे ऑलवेज लेट ही क्यों ना हो एज लॉन्ग एज वो बढ़ती जाए चलती जाए है ना। चलो

एग्जैक्टली, हम ट्रेन बन चुके हैं. नहीं, हम ट्रेन नहीं बन चुके हैं. दिस इज नॉट द लंच ट्रेन. दिस इज एबी द हिप्पी एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू फनेजिया रेडियो एंड ऑन माय शो एन इवनिंग इन डैलस. दैट इज राइट गाइस. कितने दिनों बाद मैंने वो गाना सुना है, पता है? मैं बड़ी देर से ढूंढ रही थी. मैंने कहा यार ट्रेन के ऊपर गाना. कुछ दिनों पहले ना मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि आप ट्रेन से रिलेटेड कोई गाना बजाओ, तो सबको ट्रेन से गाने के वो छैया छैया याद आता है. एंड देन सुन, याद करते करते मैंने कहा यार ये भी तो गाना है. एंड दिस वॉज सच अ बिग हिट फ्रॉम लाइक द 90s. आई लव्ड. एंड उर्मिला मातोंडकर, I think she was like a whole different spirit animal, you know. She was like this wild spirit and I loved watching her dance and act, and she had this like innocent girl vibes. Anyways, oho, phir anyways bol diya. Aage badhte hain, usko cancel karte hain. Anyways, maine nahi bola hai, theek hai? So, I just got a call from Aniket, who was telling me about number plates, jo he has also come across. Two of his friends have really, really, really unique number plates. भाई सबसे गंदा पता है कौन सा number plate होता है जो अपना नाम रख लेता है भाई. फिर तो सबको पता चल जाएगा कि आप ही हो. एक ये स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन अपना नाम कभी मत रखना नंबर प्लेट में. जो नाम रखते हैं ना वो थोड़े बेवकूफ होते हैं, क्योंकि आई फील लाइक सबको आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा. आइडेंटिटी आजकल के ज़माने में चुराना बहुत ईजी है, तो डोंट कीप योर नेम एज अ नंबर प्लेट इन माई ओपिनियन. वैसे अगर रखना है दैट इज़ टोटली ऑन यू, बट अगर मैं हूँ, अगर कोई मेरे से पूछे भाई मैं तो अपना नाम अपना नंबर प्लेट नहीं रखूँगी. आई मीन सम थिंग्स हैव टू बी प्राइवेट, यू नो. एनीवेज, तो अनिकेत ने बोला कि भाई मेरे चार एनीवेज हो गए, अब मैं एक ही बचा है मेरे पास एनीवेज, ठीक है? तो कोशिश करेंगे हम नो एनीवेज बोलेंगे. तो अनिकेत ने बोला दैट टू ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव रियली यूनिक नंबर प्लेट्स. वन इज दिस गाय हु इज फ्रॉम यूपी, तो उसने यूपी का एक स्लैंग रखा है जिसका नाम है भोकाल. आई हैव नो आइडिया व्हाट भोकाल मीन्स. अगर आपको पता है व्हाट भोकाल मीन्स देन यू कैन कॉल मी एंड टेल मी. मुझे तो पहले सुनाई दिया भोपाल. मैंने कहा भोपाल, ही मस्ट रियली मिस हिज होम टाउन. कहते नहीं भोपाल नहीं, भोकाल, इट्स अ स्लैंग. मैंने कहा अच्छा चलो गूगल करते हैं. गूगल माता की जय, गूगल के पास सारे आंसर्स है. अब तो चैट जीपीटी की भी जय, बट वट एवर, लेट्स फाइंड आउट. एंड जो दूसरा है उसने रखा है अपने गाड़ी का नंबर प्लेट रईस. वाह, अब नंबर प्लेट होना चाहिए ना. ऐसा मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है तो नंबर प्लेट से मैनिफेस्ट करो भाई. फील रिच and then be rich. When you manifest trying to be rich, then God shall make you rich also. But you have to put all the thoughts and all the energy into it. What do you think? I would totally like to steal that one. But two people cannot have the same number plate. So, main pata kya karti hu? I have something similar that I do, by the way. I have this like lipstick shade that I absolutely love. Aur main roz usko lagati hu. Uske upar maine uska naam likha hua hai, Money Magnet. So every time I wear that lipstick, I feel like, oh yeah, baby, all the money is coming to me in my lap. I'm a money magnet and I shall be rich one day, which I'm totally not right now. But one day we shall be there and we shall ask the universe for it. So Aniket, this one, this next song goes out to your son, who is actually, by the way, one of my fans, because Aniket's son Ansh, he really likes to listen to Ippy the Hippie on the radio, and who loves this next song, which I also love. So Ansh, this one goes out to you, my dear friend. I hope you enjoy this track. Bye.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe rahun.
6: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
5: Kaise?
6: Page 3 eatery?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
7: पेज थ्री ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
10: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
11: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
12: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट.
14: गाइस, सिर्फ एक घंटा बचा है मेरे शो में. दैट इज करेक्ट. आई एम हियर ओनली फ्रॉम 9 to 10 एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू An evening in Dallas on Fun Asia Radio 104.9 FM. और मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? क्या नाम है मेरा? मेरा नाम है इपी द हिपी. That is right. भाई, जाने से पहले I had dedicated this song to Ansh. Ansh, this song goes out to you. लेकिन वो बीच में कट गया गाना क्योंकि कमर्शियल आ गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने कितने बजे गाना प्ले किया था. तो जस्ट फॉर अंश एंड क्योंकि मुझे भी ये गाना बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग अगेन. वी विल पिक इट अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ. और पूरे नेक्स्ट एक घंटे में मेरे पास सिर्फ एक ही एनीवेज बचा है, तो हम कोशिश करेंगे और एनीवेज ना बोले, नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगी.

भाई टेक इट इजी पॉलिसी, दैट इज माय पॉलिसी. जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, आपको थोड़ा सा टेक इट इजी लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, लेफ्ट राइट, अंडर ओवर हमेशा होता रहता है. लेकिन वी गट्स टू मूव ऑन माय फ्रेंड्स, यू गॉट टू टेक अ चिल पिल एंड जस्ट कीप रोलिंग विद इट. तो इसके ब्रेक में जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट यूनिक नंबर प्लेट्स. तो भाई दो नंबर प्लेट जो मैंने बोला, जो मिस्टर अनिकेत ने हमारे साथ शेयर किया, विच वॉज भोकाल एंड रईस. भाई दैट इज अ ट्रू वे टू मैनिफेस्ट. और मैं करती हूँ मनी मैग्नेट, जो मैंने आजकल अपने, मतलब यू नो, आई हैव लास्ट ईयर ऑन माई बर्थडे आई इन्वेस्टेड इन दिस लाइक रियली एक्सपेंसिव परफ्यूम. इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट वॉज लाइक $100 और व्हाटएवर. आई वॉज लाइक नहीं, दिस आई वॉन्ट फील स्पेशल, सो आई एम गोना गेट दिस लॉन्गकॉम का ला विए बेल परफ्यूम, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल. और उसके ऊपर मैंने एनग्रेविंग कराई मनी मैग्नेट, वो भी कराई मैंने, लिपस्टिक के ऊपर भी है, मेरे परफ्यूम के ऊपर भी है मनी मैग्नेट. अगर कभी मैं नंबर प्लेट बनाऊंगी उसमें भी मैं सोच रही हूँ मनी मैग्नेट कैसे रखूँ, देन मे बी आई विल अट्रैक्ट मनी. एनी वेज, तो जाने से पहले मैंने ये बोला था, अरे यार मेरा लास्ट पेना एनी वेज भी निकल गया, ले नो मोर एनी वेज लेफ्ट इन माई बैंक फॉर टुडे. तो मैंने जाने से पहले ये बोला था कि भोकाल का मतलब क्या होता है. भाई मुझे नहीं पता भोकाल का मतलब, अगर आपको पता है तो आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं. तो मुकेश जी, जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया भोकाल का मतलब क्या होता है. भाई भोकाल मीन्स स्क्वैगर, स्वैगर नॉट स्क्वैगर, सॉरी स्वैगर, टू बी पावरफुल. इट्स लाइक अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इज लाइक ड्यूड आई एम सो कूल फॉर स्कूल, बिल्कुल लाइक दैट वाइब्स. यू नो यू आर लाइक भाई आई एम बेटर देन एवरी वन एल्स, दिस इज माई स्टाइल, भोकाल आ चुका है बिकॉज मैं तूफान लेकर आया हूँ, वगैरह वगैरह, दैट काइंड ऑफ सुपर पॉजिटिव. इट्स लाइक इफ यू वॉन्ट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, कॉल योर सेल्फ भोकाल. फिर उन्होंने मुझे ये भी दिलाया याद कि भोकाल यूज टू बी अ कॉमिक, जैसे वो चाचा चौधरी वाली कॉमिक्स नहीं आती, उसी पब्लिकेशन में कॉमिक का नाम था भोकाल, हु वॉज लाइक दिस देसी सुपर हीरो हु हैड ऑल द पावर्स, लाइक ही वॉज लाइक आयरन मैन, सुपर मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन, एवरी थिंग इन वन. इज नॉट अमेजिंग, मुझे तो याद भी नहीं है. तो मैंने कहा यार अब इससे ना मुझे चाचा चौधरी याद आ गया, और चाचा चौधरी से मुझे कॉमिक्स याद आ गई. एंड देन ही रिमाइंडेड मी, भाई वो डायलॉग याद याद है आपको, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है. हाँ हाँ, लेकिन अभी तो कंप्यूटर भी नहीं, अब तो आज के ज़माने में चाचा चौधरी का दिमाग चैट जीपीटी से भी तेज है. तो इसीलिए ये गाना आपके लिए, फॉर फ्रॉम लाइक अ फ्लैशबैक टाइम टू ऑल द चाचाज ऑफ द वर्ल्ड.

वी आर बैक. यस, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं बिकॉज दैट इज माई जॉब. वेल, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय PMJ Jewels, Dallas. वेट खत्म हो चुका है, लॉन्च भी हो चुका है. PMJ Jewels is now in DFW that brings 60 years of jewelry experience and timeless Indian craftsmanship. Whether you want to explore stunning gold, diamond or bridal collection for every celebration and milestone, join the grand opening, which actually happened unfortunately, but they have opened officially, so you can go to the store and enjoy exclusive offers, exciting festivities and chances to win beautiful jewelry pieces. They are proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatmaneni. PMJ Jewels, they are a name trusted by generation. Aap PMJ Jewels ja sakte hain, Frisco mein hai, Main Street pe, and discover jewelry that tells your story. हाँ जी भाई लोगो, मेरे को एक और कॉल आई अभी बाय द नेम मिस्टर राकेश, जो उन्होंने मुझे बोला भाई भोकाल का मतलब वो भी नहीं है, स्वैगर भी नहीं है, उसका अलग अलग मीनिंग होता है, जो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, इट अडैप्ट्स टू सिचुएशंस अपेरेंटली. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट सिचुएशन यू आर यूजिंग दैट सॉन्ग इन. और नॉट सॉन्ग, सॉरी द वर्ड इन सॉन्ग, लगाते लगाते वर्ड ध्यान आ गया. तो हाहा, मैं एनीवेज बोलने वाली थी लेकिन मैंने बोला नहीं. लुक मे, सो कूल, मेरे को भोकाल आ गया है. नहीं, आई डोंट थिंक आई यूज दैट करेक्टली, लेकिन उन्होंने मुझे बोला भोकाल का मतलब होता है टू ब्रिंग तहलका और धमाका एंड समथिंग भोकाली वाइब्स वाली. ठीक है भाई, मुझे उतनी हिंदी नहीं आती इतने अच्छे से, एटलीस्ट ये वाली स्लैंग तो नहीं आती, मुझे दिल्ली की स्लैंग आती है. और दिल्ली की स्लैंग आप लोगों को पता ही है, अगर आपने मूवीज वगैरह देखी है तो दिल्ली की स्लैंग तो भाई गालियां से शुरू होती है और गालियों पर ख़त्म होती है, जो हम एयर पर नहीं बोलेंगे क्योंकि दिस इज ए वेरी नाइस शो. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू बी दैट पर्सन. ऑलराइट, तो इसीलिए ये गाना आप सुनिए क्योंकि आप मेरी आवाज़ रेडियो पे सुन रहे हैं, लेकिन ये गाने का नाम है टेलीफोन धुन में, क्योंकि कोई बात नहीं, टेलीफोन भी चलेगा, रेडियो टेलीफोन सेम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके,

All right, guys, we are back. This next part of the show is brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms in the U.S. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com. You know, what is the faida of being an RJ all day long? All day long to nahi. 3 ghante to hai, lekin uske pehle I also use my voice teaching little bachas all across Dallas. So, is hafte pata hai what I'm doing? Is hafte I'm doing the Greatest Showman Musical Theater Camp. Exactly. Agar aapke kids hain, to aapko pata hi hai summer camp bol ke kya cheez hai. So, I actually run this musical theater, which is like a play with songs, and these kids do choreography and lots of singing. Aur mere paas subah 8 ghante 9 से 4 बजे तक नॉन स्टॉप आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 18 चिल्ड्रन. भाई मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, मेरी खुद की शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी लाइफ बच्चों के आस इर्द गिर्द घूमती रहती है. पता नहीं क्या है, जो भी है, कोई बात नहीं, जैसे है, लाइफ इज यू नो, लाइफ इज लाइफ. तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. तो आगे बढ़ते हैं. तो आई एम टीचिंग दिस समर कैंप, उसमें मैं सारे दिन मैं अपने आवाज़ चलाती रहती हूँ, ला ला ला ला ला बोलना, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. उसमें एक बच्चा, कोई बच्चा किसी को धक्का मारता है, कोई कहता है मैं मिस इपी, और मेरा नाम वहाँ पे पता क्या है, मेरा नाम वहाँ पे मिस इपी. कई लोग, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मिस इपी तो बोल भी नहीं पाते, वो मेरा नाम बता देते हैं मिसेज इपी. तो लाइक द रिवर, लाइक आई एम फ्लोइंग लाइक द रिवर, टोटली इपी द हिपी वाइब्स, लेकिन मिसेज इपी इज माई नेम. मिसेज इपी, मेरिन हिट मी विद हर वाटर बॉटल, ऐसे करके ऑल डे आई कीप लिसनिंग टू दैट ऑल डे. एनीवेज गाइस, तो उसमें मेरा, अरे यार मेरा आखिरी एनीवेज भी निकल गया, ले फेल पूरा 6 बार हो गया. कोशिश करेंगे 7वीं बार नहीं बोले, ठीक है. 7 times दिस इज अनलकी, वैसे तो लकी नंबर होता है, लेकिन कोई बात नहीं. तो उसमें मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, सारे दिन बग बग बग बग गाना, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट कर करके मेरी आवाज़ बाय द एंड ऑफ इट इतनी स्ट्रांग बन जाती है ना, इतनी स्ट्रांग बन जाती है, तो इट्स लाइक अनबिलीवेबल. तो उसी से एक और गाना सुनते हैं, विच इज टोटली अनरिलेटेड, लेकिन आई लव दिस सॉन्ग एनीवे, सो वी शैल लिसन टू इट. दिस इज फ्रॉम वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट मूवीज, क्योंकि कई बार दिमाग नहीं चलाना पड़ता, आपको सिर्फ शो देखना पड़ता है या मूवी देखनी पड़ती है, जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, कोई स्टोरी वोरी के बारे में कुछ नहीं सोचना. समटाइम्स थिंग्स आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, एंड दैट इज ओके. दिस इज अ फुकरे टाइटल ट्रैक.

0: छुट्टी रे।
1: भैया आपने ये वाली मूवी देखी कि नहीं देखी? फुकरे मुझे तो बहुत मजेदार लगती है, उसकी पार्ट वन और पार्ट टू दोनों बहुत मजेदार लगती है। अगर नहीं देखी तो जरूर देखो, क्योंकि इट्स सो एंटरटेनिंग, दिमाग बिल्कुल ही लगाना पड़ता। आप उसको देख रहे हो सोच रहे हो ओ माय गॉड व्हाट इज अप विद दीज गाइज, लाइक कहाँ कहाँ से ये क्रिएटिविटी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, मतलब कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो इसी का काउंटर काउंटर जो शो है, क्योंकि दिस वॉज अबाउट फोर बॉयज राइट, लेकिन देर इज अनदर थिंग विच इज अबाउट फोर गर्ल्स एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी, नथिंग रिलेटेड टू प्यार रोमांस शादी, वैसे प्यार रोमांस इसमें भी है जो भी है, लेकिन आई लाइक टू वॉच द शो विच कम्स ऑन अमेजॉन प्राइम विच आई एब्सोल्युटली लव। इट्स वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी करंट, एंड आई एम श्योर ऑल माई लेडीज हु आर लिसनिंग टू द शो राइट नाउ, यू ऑल गाइज आर गोइंग टू रिलेट टू दिस, बिकॉज दिस शो इज कॉल्ड फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज। इट्स अबाउट फोर गर्ल्स हु आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ, वन इज अ डिवोर्स्ड लॉयर, एक है एक जर्नलिस्ट है हु विद बोल्ड ओपिनियंस एंड बोल्ड आइडियाज, एक इज अ जिम ट्रेनर, शी इज वेरी कूल, शी इज जिम ट्रेनर, एंड द अदर वन इज जस्ट अ रिच गर्ल, ओके, शी इज अ रिच गर्ल विद डैडीज मनी एंड शी डजेंट नो वॉट टू डू विद हर लाइफ एंड ऑल दे डू इज जस्ट सिट अराउंड एंड फिगर आउट वॉट टू डू विद देयर लाइफ, कीप गेटिंग इन टू कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड देन गेट आउट ऑफ इट एंड देन फिगर आउट

वेल आप वो गाना सुनिए, मेरे ख्याल से ये पूरा गाना है तो सही वैसे म्यूजिक चैनल पे, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो पूरा गाना है नहीं, विच इज़ अबाउट 2 मिनट्स 3 मिनट्स लॉन्ग, तो आपके लिए छोटा सा गाना था, बट तब तक के लिए आप ये वाला गाना एंजॉय करिए, बिकॉज इज अ कूल ट्यून, बिकॉज यू नो वाई वाई दिस नेक्स्ट ट्यून इज एक्चुअली कंपोज बाय विशाल शेखर. येस, डू यू गाइज नो दैट दे आर कमिंग टू डैलस ऑन July 12th? तो आपने टिकट्स ली कि नहीं? गो एन्जॉय सम अमेजिंग म्यूजिक. इट्स वेरी, आजकल तो खैर अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू डैलस टू परफॉर्म लाइव, बट यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट बिकॉज दे आर वन ऑफ माई फेवरेट कंपोजर डुओज. एंड आई एम गोना प्ले यू अ ट्रैक फ्रॉम वन ऑफ द मूवीज दैट दे कंपोज म्यूजिक फॉर.

भाई डांस कर करके मेरा दिल तो थक गया, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ कहीं भी नहीं, मैं यहीं पे बैठने वाली हूँ अगले 20 मिनट तक, एंड देन वी आर वाइंडिंग डाउन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, क्योंकि भाई कल ट्यूसडे है, सबको नौकरी पे जाना है, आपको भी जाना है, मेरे को भी जाना है, तो इसीलिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट, फिर थोड़ा वाइंड डाउन करेंगे. ओके, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में योर अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर पूरे 30 मिनट, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. एट पैशन हेल्थ आप सिर्फ पेशेंट नहीं है, दे विल ट्रीट यू लाइक फैमिली. फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे आर देयर फॉर यू. एंड दैट्स नॉट ऑल, दे आर ग्रोइंग, दे आर एक्चुअली हायरिंग प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट, एंड फॉर फुल टाइम एंड फॉर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है और अगर आपको एक साइड हसल की ज़रूरत है या फिर मेन हसल की ज़रूरत है, देन यू शुड रीच आउट टू पैशन हेल्थ फिजिशंस एट gmail.com, और यू कैन टेक्स्ट देम एट 217-454-4639 फॉर मोर इन्फो. आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम, और यू कैन टेक्स्ट 214-666-6259 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन पेशेंट एंड स्टफ. ओके, तो लेट्स वाइंड डाउन, लेट्स लिसन टू सम चिल कूल टाइप सॉन्ग्स, क्योंकि रात हो चुकी है, मुझे भी घर जाना है, सोना है, तो इट्स लाइक टाइम, इट्स टाइम.

गाइज, इसी गाने के साथ आई एम गोना साइन ऑफ. दिस इज योर फेवरेट बेस्टी इपी द हिपी एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डैलस. आज की इवनिंग यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन कल दोबारा आइए एट 7 PM एंड आई विल एंटरटेन यू विद सम अमेजिंग अमेजिंग म्यूजिक एंड सम इनक्रेडिबल स्टोरीज फ्रॉम 7 to 10 PM टुमारो ओनली हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया।
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
11: Visit www.sanadainc.com today.
12: Hi, this is Ranveer Shori, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर। वो
1: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

गुड इवनिंग डैलस फोर्ट वर्थ। रात के 10 बज चुके हैं और अगर आप अभी ड्राइव कर रहे हैं, किचन रैप अप कर रहे हैं, काम से घर लौट रहे हैं या फिर बस थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो वेलकम है डैलस टू द शो दिल से डैलस विद स्निग्धा। आप सुन रहे हैं सिर्फ अनीशा 104.9 FM पर। मैं हूँ स्निग्धा और अगले 2 घंटे हम करेंगे उन बातों को जो हम सब कनेक्ट करते हैं, लाइक थोड़ा बॉलीवुड, थोड़ा लाइफ, थोड़ी नॉस्टैल्जिया और थोड़ी एंटरटेनमेंट के साथ जारी रखेंगे।

So it's officially Monday night, week ka start. I know Monday is not happy for anybody, but let me tell you need to have your motivation always on week ke start mein so that हमारा week अच्छा जारी रहे. वैसे एक बात बताऊँ, दिन भर हम सब किसी ना किसी रोल में होते हैं, लाइक एन एम्प्लॉय, पेरेंट, स्टूडेंट, स्पाउस, फ्रेंड. लेकिन रात में जब थोड़ी सी शांति होती है ना, तब हम बस खुद के होते हैं. और शायद इसीलिए लेट नाइट रेडियो का अपना ही अलग कनेक्शन होता है. आई होप आई एम मेकिंग योर मंडे नाइट फील थोड़ा नाइस एंड बेटर विथ नाइस मेलो सॉन्ग्स.

वेलकम बैक टू दिल से डैलस। तो हम जारी रखेंगे अपनी बातें। सो कभी कभी मुझे ना लगता है लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस प्लान्ड नहीं होते, वो अचानक ही हो जाते हैं। एंड यू नो इट्स ब्यूटिफुल व्हेन इट लाइक जस्ट क्लिक्स यू, नॉट लाइक यू प्लान समथिंग और कुछ ओके मैं अभी ये बात करूँगा, मैं अभी वो बात करूँगा, बट जो अचानक जैसे चीज़ें होते रहते हैं यू फील गुड अबाउट इट। यू डोंट हैव टू प्लान एवरीथिंग, सब सॉर्टेड नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी मंडे मोटिवेशन थोड़ा जारी रखे। जैसे लाइक टू टेल यू, जैसे किसी पुराने दोस्त का मैसेज आ जाना या किसी गाने को सुन के एकदम से 10 साल पुरानी मेमोरी याद आ जाना। म्यूज़िक में भी थोड़ा ऐसे ही मैजिक होता है। एंड नाइट टाइम रेडियोज आर नथिंग बट मेकिंग यू प्रिपेयर योर नेक्स्ट डे बेटर। तो म्यूज़िक के साथ हम सुनते जाएंगे अगला गाना, जुबी डुबी फ्रॉम थ्री इडियट्स।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच

0: में सब संभालेंगे।
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना, बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: वेलकम बैक डैलस, इट्स 10:33 PM। आप सुन रहे हैं दिल से डैलस विद स्निग्धा ऑन फनीशिया 104.9 FM पर। सो मैं जो अगला गाना आपके लिए बजाने वाली हूँ, इट्स फ्रॉम मूवी धमाल 4। द म्यूजिक इज बाय आर फेवरेट गुरु रंधावा, स्टारिंग अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जफेरी, रवि कृष्णन, संजय मिश्रा एंड कृतिका शर्मा। सो ये नया गाना है, आई होप आधे लोग तो ये सुने नहीं होंगे, सो मैं आपके लिए बजा रही हूँ, सो आई होप यू गाइज लाइक इट।
4: आदि वो लोग कुछ शूट कर रहे हैं,
5: हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं?
6: ये तो अपना गाना, कम ऑन, बाल की शूटिंग हमारे बगैर।
7: Thank you.

वेलकम बैक डैलिस, कीपिंग योर मंडे गोइंग अ लिटिल एंटरटेनिंग एंड फन। हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सीरियस चीज़ें बात करने या सुनने रेडियो नहीं सुनते। हम अपने दिमाग ठंडा और दिमाग को थोड़ा फ्री करने के लिए रेडियो सुनते हैं। सो ऐसे ही मैं जो लाइक आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या बात कर सकती हूँ, बट वेन आई हैव वन थिंग, एक इंटरेस्टिंग सा थिंग आई नोटिस इन लाइक आजकल का लोग, जनरेशन, फास्ट कल्चर एंड एवरीथिंग। वन थिंग आई नोटिस्ड इज हम सबके फ़ोन्स स्मार्ट होते ही जा रहे हैं, लेकिन आर वी बिकमिंग एज स्मार्ट एज आवर फोन्स आर? हम 9 to 5 तो स्मार्ट बनते हैं क्योंकि वी हैव टू मेक आवर सैलरीज एवरी मंथ ऑन टाइम, सो 9 to 5 हमें स्मार्ट बनना पड़ता है बस अपनी लैपटॉप को बताने के लिए तू ही स्मार्ट नहीं मैं भी स्मार्ट हूँ। बट कीपिंग दैट ऑल असाइड, लेकिन जब हमें फ्री टाइम होती है ना, ऑल वी डू इज़ कभी सोशल मीडिया स्क्रोल करते करते आधा घंटा निकल जाते और फिर लगता है पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। बट वट आई वुड जस्ट गिव यू एन सजेशन इज, अगर आधा घंटा फ़ोन स्क्रोल करने से अच्छा अगर कोई अच्छी सी मूवी या एक अच्छी सी कॉन्वर्जेशन या एक लॉन्ग ड्राइव मिल जाए तो वो आधा घंटा नहीं 1 घंटा याद रह जाता है। शायद इसीलिए एक्सपीरियंसेस हमेशा चीज़ों से याद चीज़ों से ज़्यादा मायने रखते हैं, एंड इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ फील गुड एंड एक्सपीरियंस गुड थिंग्स। सो ऑलवेज फील गुड, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ फॉर यू टू मेक यू फील गुड।

वेलकम बैक डैलिस, इट्स 10:50 PM। सो चलिए थोड़ी एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं। आजकल कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया कि मूवी देखने से ज़्यादा टाइम लोगों को ना डिसाइड करने में लगता है, क्योंकि मुझे खुद भी लगता है बाय द वे। सो क्या करते हैं हम, नेटफ्लिक्स खोलो, प्राइम खोलो, यूट्यूब खोलो और 20 मिनट बाद चलो कुछ नहीं देखते। वैसे जेन्युइनली पूछ रही हूँ, आखिरी ऐसी मूवी या वेब सीरीज कौन सी थी जिसे देखकर लगा हो कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई? असल ऐसे रिकमेंडेशंस हो तो प्लीज़ बताएं हमें। बट देर इज़ अ प्लॉट एंड अ ट्विस्ट जो भी मैंने बात किया उसमें। आई स्पोक इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट। तो अगर एंटरटेनमेंट की बात आती है, एंटरटेनमेंट में हम ये नहीं देखते टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं वेस्ट हुआ, हम बस अपने आप को एंटरटेन करते हैं, सीइंग इफ इट्स कॉमेडी, इफ इट्स रोमांटिक और वट एवर। आई होप आपको मेरी जोक समझ आई है। देर इज़ नो टाइम वेस्टिंग व्हेन यू आर जस्ट एंटरटेनिंग इन योर सेल्फ इन वट एवर वे।

वेलकम बैक डैलिस. मुझे आप सबसे एक चीज़ पूछनी थी. आई हैव एन आदत, मतलब आई हैव अ थिंग ऑफ फॉर सॉन्ग्स. जब मैं गाने सुनती हूँ ना, मैं सिर्फ गाने ऐसे म्यूजिक के लिए नहीं सुनती हूँ, मैं लिटरली एंड पर्टिकुलरली वो लिरिक्स के लिए सुनती हूँ. इज देयर एनीबडी लाइक मी जो गाने सिर्फ म्यूजिक के लिए या वाइब के लिए नहीं सुनते, लिटरली लिरिक्स सुन के यू टेल दैट ओ माई गॉड दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, ये है मेरी वाइब? अगर ऐसा कुछ गाने हो आपके दिमाग में एंड यू वॉन्ट मी टू प्ले ऑन दिस नाइस लेट नाइट वाला मंडे सा नाइट, मंडे तो छोड़ दो उसको, बट इट्स स्टिल अ फील गुड नाइट समझ के. इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं 972-235-5555 पर हमारे स्टूडियो, एंड आई विल मेक श्योर मैं आपके लिए वो गाना बजाऊँ एंड यू फील गुड एंड यू लिसन टू द लिरिक्स. सो कीपिंग आर क्यूट वाले सॉन्ग्स गोइंग ऑन, हियर इज़ द नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू. थोड़ा स्टार्टिंग में म्यूजिक ज़्यादा है, बट आफ्टर दैट द लिरिक्स इज़ वेरी क्यूट. यू गाइज हैव टू लिसन इट.

0: के, वो जा रहा है कोई शबोगम पर।
1: What a nice feel good song for you guys. तो मैं आपको ऐसे ही बातें सुनाती रहूँगी. सो आई हैव वन मोर बातें. सो हम मंडे के दिन बात कर रहे हैं, सो इसीलिए बोल रही हूँ. हम फ्राइडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं. सैटरडे के दिन अच्छे से वीकेंड वाइब्स में गुजारते हैं. संडे के दिन भी हम संडे ब्रंच करते हैं. बट मंडे, बेचारा मंडे जब आती है, हम मंडे को ऐसे सोचने लगता है, यार मंडे आ गया. सोचो अगर मंडे को चांस मिले आपको कुछ बोलने, तो मंडे आपके ऊपर कितना फ्रस्ट्रेट करती होगी, जैसे हम मंडे के ऊपर करते हैं. सो इफ़ यू गाइस हैव समथिंग इंटरेस्टिंग ऐसे मंडे वाले चीज़ें बात करने में, सो यू कैन ऑलवेज टेल अस एंड वी आर ऑलवेज हियर टू लिसन. यू कैन कॉल अस ऑन 972-235-5555 पर ऐसे मज़ेदार बातें होने के लिए. आई विल गेट बैक टू यू गाइस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और हम ऐसे ही मंडे के फनी टॉक्स और अगले वीक के हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, सुन सकते.
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.

कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, है ना? वो पूरा जनरेशन ही डिफाइन कर देता है। हर डिकेड के कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिनको सुनते ही लगता है ये तो हमारा टाइम का था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि म्यूजिक चेंज होता रहता है लेकिन इमोशंस वही रहते हैं। सो लेट इट बी लव सॉन्ग्स आज भी हिट है, तब भी हिट था, आज भी हिट है, क्योंकि प्यार इज ऑलवेज अ नाइस फीलिंग। सो हिट तो हम कर ही देंगे। एंड कमिंग टू डांस ट्रैक्स भी इट्स लाइक पार्टीज में बजते हैं, तभी बजते थे, अभी भी बजते हैं, बस बीट्स और स्टाइल बदलते जाते हैं। आज की रात की एक सवाल है, आपकी प्लेलिस्ट में ऐसी कौन सी गाना है जो कभी पुराना होता ही नहीं? आई नो एवरीबडी हैज देयर ओन एक या लाइक इट कैन बी इवन मोर सॉन्ग्स, बट यू विल थिंक लाइक दिस सॉन्ग ना ये कभी पुरानी नहीं होती एंड आई कैन लिसन इट एनी टाइम। सो कॉल कीजिए स्टूडियो पर और मुझे बताइए, आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग क्योंकि आई लव सॉन्ग्स।

Was प्यार किया तो डरना क्या. दिस सॉन्ग वॉज डेडिकेटेड टू वन ऑफ आर लिसनर्स अहमद जी. आई होप यू फेल्ट गुड बिकॉज आई डिड गेट अ न्यू वर्जन ऑफ इट दो. आई होप आपको अच्छा लगा ये गाना. सो कीपिंग आर नाइट सॉन्ग्स ऑन एंड थैंक यू ऑल द लिसनर्स. इवन इफ इट्स 11:15 PM यू गाइज आर लिसनिंग टू फनीशिया 104.9 FM एंड आई विल कीप यू एंटरटेन विद अच्छे अच्छे बातें एंड गुड सॉन्ग्स.

That was Hey Shona from Tararam Pam by Saif Ali Khan and Rani Mukherjee. I love this song. तो ये song भी मुझे कभी पुराना नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने चला दिया था. So हम अपने बातें जारी रख रहे हैं. तो अभी मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, सवाल ही नहीं बस ऐसे ही लाइक हमारे बातें होते रहते, तो वही बात कर रही थी कि अमेरिका में रहने वाले हम सब एक क्वालिटी इज़ हमेशा हमारे साथ, जो हम अमेरिका में हो या अपने कंट्री में हो, बट हमारी क्वालिटीज़ कभी हम कहीं पे भी रह जाते नहीं. डैलस को तो हमने ऑलमोस्ट देसी बना दिया, पर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हमसे जाती नहीं, दैट इज़ लाइक कभी चाय के कप, कभी किसी फेस्टिवल में, कभी किसी गाने में, और कभी किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में. आजकल रेस्टोरेंट के मेन्यूज तो ज़्यादा अमेरिकन से ज़्यादा देसी हो गए से. तो मुझे पता है आप कोई गली का चाय मिस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने चाय के स्टेशंस पड़े कि हम गली के चाय मिस भी नहीं करते. बट आई एम श्योर आप एक चीज़ मिस करते हो US में, दैट इज़ गोलगप्पा. आई नो देर आर लॉट ऑफ गोलगप्पा लवर्स राइट नाउ. ऑल आई एम टॉकिंग इज़ अबाउट हमारे देसी चीज़ें, वेर एवर वी आर इट इज़ देर. बट जो जहाँ रहते ना, वहाँ की मज़ा अलग होती है. हम कितना भी यहाँ ला ले, इट डजेंट फील लाइक वॉट वी फील इन आर देसी कंट्रीज़. ऑनेस्टली, डू यू गैज अग्री विथ मी? आई नो हाफ ऑफ यू गैज अग्री विथ यू, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ पे भी जाऊँ आई एम नॉट सेटिस्फाइड गाइज. आई डोंट नो आप कितने सेटिस्फाइड हो, मैं तो नहीं रह सकती. सो इसी बात के साथ अगला गाना आपके लिए.

0: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
1: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
2: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया
3: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
4: Welcome back guys, it's 11:31 PM, aap sun rahe hai Fun Asia 104.9 FM par. With me, Snigdha, Dil Se Dallas. So, मैं जब ऐसे बात कर रही थी कि हमें हमारी देसी आदतें हम कहीं पे भी हो हम छोड़ते नहीं. So, I had a listener जो बोलते हैं गोलगप्पे तो मैं अच्छा खा लेता हूँ but he was telling that उनको अपने दोस्तों के साथ कावा पीना he misses. And it was after so many days मैंने कावा का like I heard about कावा. Now, I think we all should try. He was like, we should definitely try पेशावरी कावा. So, whoever is listening to me, please go and try it and let me know because I'm also going to try it. Next song is for our listener. Main peshawari kawa to leke nahi aa sakti but ek gana chala sakti hu aapke liye.

जो मैंने देखा, दैट वॉज नॉट द सॉन्ग, दैट वॉज मी. वेलकम बैक गाइज, इट्स 11:41 PM. आई नो ऑल ऑफ आर लिसनर्स आर स्टिल लिसनिंग टू अस, हूएवर इज लिसनिंग टू अस, इवन इट्स एट दिस टाइम यू माइट बी ड्राइविंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर एन्जॉइंग इट एंड यू नॉट फीलिंग बोर्ड अबाउट माई शो. सो इसी बात से अगले गाने को जाते, इट इज़ फ्रॉम आओ, इट इज़ आओना by Aishwarya Rai and Vivek Oberoi, if you know it.

सो यू लिसनिंग टू फनीशिया 104.9 एफएम पर और आप सुन रहे हैं दिल से डैलस विद मी स्निग्धा. इट्स 11:46 पीएम यू गाइस. हमारे पास और 14 मिनट्स बाकी है मेरी शो एंड होने में. द गुड थिंग इज अबाउट दिस सॉन्ग, आई एम अ जेन ज़ी किड, ओके, स्टिल विवेक ओबेरॉय इज समथिंग. व्हेन आई एम लिसनिंग टू ऑल दिस ऑल हिज ओल्ड सॉन्ग्स, आई नो ऐश्वर्या इज इक्वली ब्यूटिफुल, बट फॉर गर्ल्स विवेक ओबेरॉय उस टाइम पे ही इज समथिंग. इज यू गेस शुड वॉच दिस वीडियो सॉन्ग एंड यू विल फील यार क्या दिखता है. सो कीपिंग माई फन फैक्ट्स और ये फन वाला मंडे मूड गोइंग ऑन, एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, वो है कोइंसिडेंस. कभी किसी इंसान के बारे में सोचो और उसका मैसेज आ गया, एंड कभी किसी गाने को याद करो और वो रेडियो पर बज गया. कभी किसी जगह जाने का प्लान करो और उस जगह की फोटो सोशल मीडिया पे दिख गया. बट ये कोइंसिडेंस में मैं एक मज़ेदार लाइक एज अ जोक कुछ बताऊँ, मोर देन थिंकिंग ये यूनिवर्स का सिग्नल है या ये मैं किस कैटेगरी में आई हूँ, आई थिंक द AI इज़ डूइंग ऑल आर वर्क. क्योंकि हम अपने फ़ोन हाथ में लेते और हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, और इंस्टाग्राम खोलो उसी के बारे में चर्चे दिख भी जाते. डू यू थिंक दैट्स यूनिवर्स और डू यू थिंक दैट्स अ कोइंसिडेंटली लिसनिंग AI? इट इज जस्ट अ फनी थिंग और आई फील, आई डोंट नो वॉट यू ऑल फील, बट मुझे ऐसा लगता है AI आजकल हमें कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं. तो कीप योर गैजेट्स अवे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर गैजेट्स अवे. गैजेट्स के लिए बस 2 घंटे रखो, बाकी के चीज़ कीप इट फॉर योर सेल्फ. यू नो यू हैव टू बिल्ड इन योर सेल्फ क्लीन, नॉट बाई बींग अ सोशल मीडिया हैक. सो कीपिंग दिस ऑन, आई एम गोना प्ले अनदर सॉन्ग फॉर यू.

देखते देखते ही रात भी आगे बढ़ गई। और ऑनेस्टली मुझे लगता है रेडियो की सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी कनेक्टेड फील करते हैं। किसी की नाइट शिफ्ट चल रही है, कोई हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, कोई कल के काम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और हम सबको कनेक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक। इज़न्ट इट ब्यूटिफुल? जस्ट म्यूज़िक। एंड ऐसे ही बातें याद आ जाती है, हमें ये बताना होता है, लाइक इट्स नाइस। देख नहीं सकते बट फिर भी वी फील स्टिल कनेक्टेड, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशिया 104.9। एंड थैंक यू अगेन टू आर लिसनर्स। हियर यू गो फॉर आर नेक्स्ट सॉन्ग, एंड वी स्टिल गॉट 6 more minutes to end our show tonight.

बस इसी इसी बात की आज की महफिल यही विराम देते हुए थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर इवनिंग विद मी ऑन दिल से डैलिस। कल फिर मिलेंगे नए गाने, नए कॉन्वर्जेशंस और इसी पॉजिटिव वाइब के साथ। आई होप आपकी वीक स्टार्ट में थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा हंसी मजाक मैंने भी आपको दिया हुआ है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट डैलिस, गुड नाइट टेक्सास। दिस इज स्निग्धा साइनिंग ऑफ फ्रॉम फनीशिया 104.9 FM।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: हाय, दिस इज शर्वरी. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, डीक्लटर योर डेस्क, डीक्लटर योर माइंड। सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि थॉट्स और दिमाग की भी जरूरी है। सो क्लीन स्पेस, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन वाइब्स ओनली, यही है फनएशिया रेडियो का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
4: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।
5: उसकी सुपर हिट ही होती है, बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फन एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बदलाओ, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं?
1: दिया। मैं कहा इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की ऐसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनेशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

करीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद हो ना हो, तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972

0: खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
1: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।

0: अभी बोलना।
1: खोले जहर में भरोसे की बूटी, दिल टांगे खूटे पे दुनिया है लुटी।
2: आपकी शादी हो गई क्या?

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

नित्य की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: Shakti Magic 24/7 only on 104.9 FM.
1: अजमोतला।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
4: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: Oh.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार?
1: पीवीएस मॉल में बबीता आ रही है।
2: कौन बबीता यार?
1: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना, आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बउआ सिंह।
2: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई पूरी की।

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: अरे ओ मोनालिसा।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
0: कहाँ?
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस One vibe.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: भूख लगी
9: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
11: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, Hub 121 McKinney.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: There are problems on 35E shutdown at Corinth, so you may want to take some alternate routes out there. And do remember that whenever you hear any traffic updates or accident reports, they are brought to you by the offices of Attorney Omar Khwaja. And in case you've been involved in a car, truck accident or a slip and fall incident, Attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get that compensation that you deserve. Dealing with insurance companies is stressful, so you need Attorney Omar Khwaja, who's going to make sure that you are compensated and you don't pay anything until you win. For the free consultation, please call him 469-300-5046 or visit Attorney Omar, OMAR.com. 469-300-5046 is the telephone number to call if you need any such help. We're going to round off this first hour of our program, and I have another very busy hour coming up. So stay with me right here on the airwaves of the Fun Asia Network. And we are going to make sure that you are entertained with the songs you want to listen to and informed right at 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओह हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
12: Calculating route, rerouting.
11: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
12: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
11: क्यों?
12: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
11: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो.
13: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
14: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
15: इट्स लॉसन.
14: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
15: इट्स लॉसन.
14: डैडी व्हाट इज द लॉ?
16: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल.
17: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ 6 वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स? आई एम डॉक्टर Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
13: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
17: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
18: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
19: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
2: तारीख पर तारीख.
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार,
11: आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
19: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
20: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
20: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
15: ये क्या होता?
20: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
21: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
22: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
23: प्लान या होप?
22: मतलब है
23: प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
22: ओके, तो मेरा वाला होप है.
23: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
22: क्यों?
23: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
11: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट wealthtactic.com.
24: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
0: Thank you very much for joining us. Let's go ahead and get started with this hour of the program. Welcome to the show if you are just joining us on this lovely Tuesday morning. It's the 23rd of June.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
5: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
6: क्या बताऊं? It's hard to find a realtor who offers great service and also cash back at closing.
5: You need to call Ajay Prabhu of Beam Real Estate. He's an experienced realtor who provides exceptional service plus cash back at closing. Ajay reviews each house thoroughly and shares all the pros and cons and negotiates the best price and builder incentives. Just visit ajayprabhu.com and see why people are raving about him.
4: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me. It's called being loyal.
4: It's called being predictable.
7: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
9: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
9: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
9: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: मामू, देखो क्या हो गया।
17: ओ, क्या हो गया?
16: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
17: ओए, जर्मन का कमाल है।
16: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
17: ओए नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा ही यार।
18: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
19: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: I'll have one more track from Cocktail 2 coming up a little bit later in the program. I have a giveaway for you from Foodistan in Aubrey. That's coming up too. The world news is headed your way. It's going to be a busy rest of this hour, and I'm going to make sure that you are informed and entertained. And of course, so one of you is going to win something if you're lucky. Right here on the airwaves of the Fun Asia Network, ladies and gentlemen, this is your morning drive time special. And I'm in your cars with you, driving you to your destination this beautiful Tuesday morning. And yes, it is a very hot day ahead of you. Get ready to stay cool as we continue with our program here. Some messages now.
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
2: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
3: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं ही तो.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
11: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
12: बेटा, 95% आए?
13: हाँ मम्मी.
12: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
14: मेरा?
12: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
14: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
15: Aji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
14: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: Ceremony at the Rashtrapati Bhavan, paying tribute to the late actor's remarkable contribution to Indian cinema and television. A delegation from Afghan Taliban travelling to Brussels today for closed-door talks with European Union staff expected to focus on deportations. And the National Assembly in Islamabad passed the budget for the upcoming fiscal year during a session that saw the opposition staging a walkout. And that's all I have in the news.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
4: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी. One place, one vibe.
5: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
6: It's Lawson.
5: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
6: It's Lawson.
7: Daddy, what is the law?
8: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
9: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूँ.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: No, not another restaurant again.
10: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
9: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
4: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Aaja meri gaadi mein baith ja.
13: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
14: Wo thoda overheating tha.
13: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो.
15: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर. ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
18: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फनी एशिया रेडियो.

है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: That, ladies and gentlemen, is my show for today. Me Too's coming on right after me. And it is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving. Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
5: Excuse me. It's called being loyal.
4: It's called being predictable.
5: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
5: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
5: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
5: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
6: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
8: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
7: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
8: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
12: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
13: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
12: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
13: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
12: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
13: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
12: नंबर बोल जल्दी।
13: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
14: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: एंड दिस इज गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर ये जो गाना आपने सुना ना, ये आइटम नंबर कहलाता है। वो गाना जो कहानी में कोई फर्क नहीं लाता है, लेकिन एक चटकारा लेकर आता है, एंड दैट इज व्हाट आइटम नंबर्स आर। मैं हाल ही में एक रील देख रही थी एंड आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लेट मी नो इफ यू हैव एनी इन्फो अबाउट दिस। बट यूपी बिहार वाला जो गाना था ना, जो शिल्पा शेट्टी का गाना था फ्रॉम द फिल्म शूल, अपेरेंटली दैट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग जिससे आइटम नंबर का ये जो टैग है उसी से आया था अपेरेंटली। एंड आई हैव नो आइडिया। आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू नो एनी बेटर लेट मी नो। अ वेरी डिबेटेबल टैग दैट इट इज, बट अपेरेंटली इस गाने के साथ ही इस टैग को कॉइन किया गया था। दिस इज गपशप गली विथ मी टू ऑल द वे टिल 12:30।

You are listening to Gupshup Gali with me too on Funisha Radio 104.9 FM. Item number जो सुन रहे हैं इसमें एक और लगा देते हैं, एक झड़ी में एक और फूल लगा देते हैं आपके. And actually item has so many meanings if you think about the desi slang. Item के अपने अलग ही रंग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग के साथ आता है. मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे अगर आप पूछते हो कि वेज में क्या आइटम है, तो मतलब समझ गए आप. और अगर आप ये फिल्मों के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करो, तो ये एक और आइटम नंबर जो कि मैं आपके लिए लेकर आना चाहती हूँ, जो अपने आप में कमाल है. जस्ट फॉर द फैक्ट, हु वुड हैव थॉट माधुरी दीक्षित एंड रणबीर कपूर कैन कम टुगेदर फॉर सच एन आइटम नंबर.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
0: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
6: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
0: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
7: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट।
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
8: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्सन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, रेड हॉट चिली पेपर इज डैलस' नंबर वन चॉइस फॉर इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन कुजीन।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
13: More music, more magic, more must be 104.9 FM. हर वक्त का साथी, हर वक्त आपके साथ फनीशर रेडियो 104.9 एफएम पे. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और हमारी गपशप कुछ आइटम को लेकर चल रहा था, यानी कि आइटम नंबर्स कुछ ऐसे प्ले होने लगे कि एक के बाद एक हमने पिछले सेगमेंट में आपको सुनवा दिया आइटम, जिसके कितने ही सारे मायने होते हैं, जिनमें से एक और होता है कि अगर आप किसी को आइटम बोलते हो, किस टोन में बोलते हो, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि यार एक कुछ एक्सेंट्रिक कैरेक्टर है वो. कितने सारे वर्ड के मीनिंग्स हो जाते हैं ना जब हम एक स्लैंग के तौर पे एक वर्ड को यूज करते हैं. कितने सारे मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. फिलहाल ये जो अगला आइटम है वो एक ऐसा गाना है जो आपको सुकून देने वाला है. भाई टाइटल ही ऐसा कुछ है. गपशप गली विद मी टू कंटिन्यूज हियर. स्टे ट्यून्ड, कीप

पता है, सुकून के लिए लोग क्या नहीं करने को तैयार रहते हैं, थेरेपी तक लेने को तैयार रहते हैं, विच इज़ एन इनक्रेडिबल वे टू डू इट. बट देन देर आर क्वर्की वेज टू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ काम योर लूपी थॉट्स, या तो फिर रीसेट करने के लिए आपके नर्वस सिस्टम को. कई लोगों के कई सारे तरीके होते हैं. जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके ना पैर क्या कहना चाहिए, वो टैप करना शुरू कर देते हैं. दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ दे आर जिटरिश एंड दे आर नर्वस. आई हैव seen people actually biting their nails, I have seen people plucking their hair, all of that comes from that space. और ऐसे में कुछ ऐसे quirky तरीके लोगों ने अपने लिए ढूंढ निकाला है which works for them and works for them beautifully. इनमें से एक तरीका जो शानदार तरीका है, मैंने किसी का सुना था, एंड दे सेड कि जब भी ज्यादा टेंशन होता है ना, वॉट हेल्प्स दैट पर्सन इज क्लीनिंग अप. मतलब घर का सारा मेस वो क्लीन करने लगते, तो एक तरह से उनका वो डिस्ट्रैक्शन होता है. लेकिन सोचें, जब जब उनको टेंशन होती है, तब तब घर एकदम चकाचक.

अगर इस सेगमेंट का कुछ नाम हो सकता था तो हो सकता था भाई सुकून, प्योर ब्लिस लेडीज एंड जेंटलमैन। और वो सुकून भरे ड्राइव के लिए ट्रैफिक अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए ओमर ख्वाजा, अटर्नी ओमर ख्वाजा, जिनके पास अगर आप अपने केस को लेकर जाते हैं बिल्कुल एट द बिगिनिंग ऑफ इट, यू विल गेट द बेस्ट हेल्प। लेकिन अगर देर भी हो गई है, देर इज डेफिनेटली ए चांस फॉर यू, एंड दैट इज फॉर यू टू फाइंड आउट बाई कॉलिंग हिम एट 4693005046। फ्री कंसल्टेशन है। दिस इज रिगार्डिंग ए ट्रक कोलिजन दैट और अ कार कोलिजन दैट यू हैव हैड, या फिर आपका कुछ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हुआ है या वर्क प्लेस इंजरी हुई है, इसके लिए अगर आपको कॉम्पनसेशन चाहिए, दे आर द बेस्ट पीपल टू गो टू, अटर्नी ओमर ख्वाजा। डू रिमेंबर दैट attorneyomar.com इज द वेबसाइट। और एक बात जो बिल्कुल हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पर, एंड इट इज दैट यू डोंट पे अंटिल यू विन। एंड ये जो प्रॉमिस लेकर आते हैं ना, दैट इज आई थिंक ए विनर फॉर मी। जरूर बात कीजिएगा आप इनके साथ एंड फाइंड आउट। ट्रैफिक अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू, थ्री मेजर कोलिजन्स दैट आई एम सीइंग, इंटरस्टेट 30 एट लूप 12 बकना बुलेवार ईस्ट बाउंड पे आपके जो राइट मोस्ट शोल्डर है एंड टू राइट मोस्ट लेन्स आर क्लोज्ड, तो बैकअप काफ़ी रहेगा। एक और कोलिशन जो कि स्पर 366 पे एट पर्ल स्ट्रीट ईस्ट बाउंड लेफ्ट शोल्डर क्लोज एंड द लेफ्ट मोस्ट लेन क्लोज एज वेल। एक और कोलिशन जो कि 183 पे है एट काउंटी लाइन रोड वेस्ट बाउंड, और इसका नतीजा ये है कि राइट मोस्ट शोल्डर जो है वो क्लोज्ड है, साथ में दो राइट एग्जिट्स भी क्लोज्ड है वहाँ पे। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी यू नो नोइंग इफ यू आर ऑन दैट राउट एंड इफ यू थिंक यू कैन टेक अ डिटोर, प्लीज डू। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

0: दिखाइए।
1: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
1: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: मामू देखो क्या हो गया।
4: ओ, क्या हो गया?
3: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
4: ओए, जर्मन का कमाल है।
3: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
4: ओए, नहीं ओए, जर्मन मोटर वर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
12: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
15: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
16: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
17: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
18: Tracks that put you on the right track.

इंडिया की सिनेमा में पहला सुपरहिट सुपरहीरो जो रहा वो था क्रिश, और क्रिश में ऋतिक रोशन एक्चुअली काफी चमके एंड इसीलिए तो सीक्वल्स बने। और ये फिल्म जो कि 20 इयर्स पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी, तो ये गाना जो आपने सुना, राजेश रोशन वाज एट द हेल्म ऑफ इट आई थॉट, बट क्लियरली ओके ओके सलीम सुलेमान वॉज द बैकग्राउंड स्कोरर और राजेश रोशन जो थे वो थे कंपोजर। मुझे पर्सनली, प्लीज डोंट होल्ड मी टू अगेंस्ट इट, एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में राजेश रोशन का वन ऑफ द वीकेस्ट एल्बम्स वॉज फॉर दिस फिल्म। दैट्स वॉट आई थॉट, लेडीज एंड जेंटलमैन। अदरवाइज हम जानते हैं कि कितने टैलेंटेड हैं राजेश रोशन। ऑलराइट, कमिंग टू अनदर मूवी जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, और दैट वॉज द ईयर 2017, लेडीज एंड जेंटलमैन, 23rd of June 2017 को रिलीज हुई थी सलमान खान एंड हिज ब्रदर्स स्टारर ट्यूब लाइट, कबीर खान की फिल्म। एंड मुझे लगता है कि वन ऑफ द वीकेस्ट फिल्म्स ऑफ कबीर खान वॉज दिस। फिल्म का नाम ट्यूबलाइट ऑफ कोर्स।

Kabir Khan's directorial that released on this day in 2017, Salman Khan aur Sohail Khan is film mein, and it is widely considered by critics and audiences ki ye director Kabir Khan ki weakest film thi and it didn't do as good as at the box office. Lekin at the same time, I'd like to add here, mere khayal se, mere opinion mein, Salman Khan ki best film is century ki aayi bhi कबीर खान से है. लेकिन तो वो फिल्म है मेरे लिए बजरंगी भाईजान, जिसका मैं आपको गाना सुनवाने वाली हूँ, मौका नहीं छोड़ने वाली हूँ यहाँ पर. लेट्स गेट यू दिस नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर. और जी हाँ, वीकेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे जो पाथ्स होते हैं ना, वो हमें लेकर आते हैं हमारे लिए कुछ और नए रास्ते. तो अगर आपका US परमानेंट रेसिडेंसी की तरफ रास्ता थोड़ा वीक होता नज़र आ रहा है या पक्का भी नज़र आ रहा है, देन यू मस्ट गेट इन टच विद सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज, बिकॉज यू श्योरली विल नीड दैट प्रोफेशनल हेल्प. अगर आपके पास H1B है, F1 है, L1 है या कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, तो आप इनके साथ ज़रूर कनेक्ट करें. दे विल बी एबल टू हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम, दे स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. तो कहने का मतलब सीधा है कि आप इनके साथ कनेक्ट करें. ड्रॉप एन ईमेल टू देम एट info@seemamehtalaw.com. Let me correct that, okay? एक बार फिर बोलने वाली हूँ और इस बार आप ध्यान से सुने, it's info@seemamehtalawfirm.com. जरूर याद रहे ये आपको. और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अबाउट EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, वंस अगेन दैट ईमेल इज info@seemamehtalawfirm.com. इस गाने के साथ एक छोटे से ब्रेक पर जाने वाले हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद बहुत सारी और बातें करने वाले. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Is शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
6: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी.
8: माय टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequery.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequery.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
12: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
13: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
14: हाँ.
13: घर रिलोकेट करनी है?
14: हाँ.
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
14: हाँ भाई हाँ.
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
15: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.

वेलकम है जी, आप सुन रहे हैं गपशप गली विथ मी टू ऑन फनीशा रेडियो 104.9 एफएम। यहाँ पे कुछ अभी इस वक्त ना मैं जोड़ तोड़ की बातें करने वाली हूँ। कुछ ऐसे गाना मैं लगाने वाली थी और उसी से कुछ दिमाग में आया, सोचा कि इसी के बारे में बातचीत हो। 9722355555 एब्सोल्युटली फन एंड लाइट दैट वी कीप इन दिस शो। और इस शो पे मैं लाइट रखने की तो कोशिश करती हूँ, कभी कभी कुछ लेकिन हैवी भी लेकर आते हैं। अभी हैवी वेदर जो है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द हीट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड द मगी वेदर। अगर आपको ह्यूमिडिटी पसंद है, ये सोच कर आपका स्किन ग्लो करेगा, तो ये आप ही का दिन है। कुछ स्पॉटी स्टॉर्म्स पॉसिबल हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ऑफ DFW। वन आर टू स्ट्रे शावर्स और स्टॉर्म्स मे डिवेलप closer to the metroplex, but this chance is quite low. Otherwise, एक जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे नॉर्थ टेक्सस का, predominantly एक ड्राई स्पेल चलने वाला है for the next several days, ladies and gentlemen. So this is for all those people who were thinking, looking at the क्लाउडी स्काई टुडे कि भाई शायद आज बारिश हो, क्योंकि मैंने भी अपने गूगल से पूछा कि आज बारिश होने वाली कि नहीं, उसने मुझे सीधे सीधे ना कह दिया। बहुत मन दुखा, लेकिन लगा कि ठीक है चलो कोई ना, आने वाले दिनों में बारिश होगी। लेकिन ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टुडे इज़ हाई, इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 96 लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड टुमारो इट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम, पार्टली सनी स्काइज, हॉट एंड ह्यूमिड इज़ व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू टुमारो। परसों और आने वाले दिनों में उसके बाद कुछ विंडी होने वाला है अलॉन्ग विथ द हीट दैट यू आर गोइंग टू गेट। अभी राइट नाउ इट इज 84 डिग्रीज। विथ दैट चलें इस गाने पर। फिल्म का नाम है पुरानी जीन्स।

यारी सिर्फ लोगों से नहीं होती है भाई, यारी चीजों से भी होती है. और यहाँ पर बात करना चाहती हूँ जोड़ तोड़ के बारे में. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और क्या है ना कि ये जोड़ तोड़ का रास्ता हमारे हर चीज़ में आ जाता है, भले ही वो फ़ोन हो जिसका जो कवर है, मान लीजिए वो जो स्क्रीन कवर है वो हज़ारों टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन आप फिर भी उसी से अपना काम चला लेते हो. ये काम चलाने वाली आदत ना सच में हमारी कमाल की होती है, कि मतलब जोड़ तोड़ करके हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं. अब फॉर इंस्टेंस, अगर चार्जिंग केबल ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कुछ एक पर्टिकुलर एंगल, वो 45 डिग्रीज एंगल में रखोगे तो ही वो काम करेगा, तो हम वो काम करवाते चले जाते हैं. मतलब वी जस्ट एडजस्ट एंड जस्ट कंटिन्यू यूजिंग इट. ये केवल चीज़ों के बारे में नहीं, ये खान पान के बारे में भी होता है. कि अगर मान लो कि जिम के रूटीन में आप सॉलिड हो, ठीक है, लाइक मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप बिल्कुल सॉलिड हो, तो आप छोले भटूरे दबा के खाते हो और उसके साथ ऑर्डर करते हो डाइट कोक, ये सोच के कि यार हो गया ना बैलेंस, चल जाएगा. तोड़ मोड़ थोड़ा सा, वही डाइट की बात कर रही थी. और वहाँ पे कपड़ों की भी बात ऐसी ही आती है कि कुछ कुछ कपड़े हम उठा के रख देते हैं यार, ये सोच के कि जब मैं स्लिम होंगा या होंगी तब जाके ये कपड़े आएंगे, तो हम वो सही सही रख देते हैं अपने क्लॉजेट में और उसका इस्तेमाल कभी ना कभी ना किसी दिन पे होगा. और साथ ही साथ उन कपड़ों का भी जो इतने कंफर्टेबल हैं कि यू जस्ट कांट, एक्चुअली यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ देम, लेट्स पुट इट दैट वे. और ऐसे में पुरानी जीन्स की बात आती है, और पुरानी जीन्स एक ऐसा कम्फर्ट हमारा आइटम है कि भाई क्या ही कहा जाए. तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपकी जो वो पुरानी जीन्स है ना, वो कितनी पुरानी है. लेट्स फाइंड द ओल्डेस्ट जीन्स दैट वन हैज़, और हम उनको इनाम देने वाले हैं नियॉन कैक्टस की तरफ से. जी हाँ, आप हमें बताएं कि आपकी पुरानी जीन्स कितनी पुरानी है. 972-235-5555.

0: यादें, जी हाँ, कुछ यादें रह जाती हैं हमारी कुछ चीज़ों के साथ। और यहाँ पे हम पुरानी जीन्स की बात करें कि आपकी पुरानी जीन्स कितनी पुरानी है यार। जिसकी सबसे पुरानी निकलेगी ना, उनको मलने वाला है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड। डाइन इन गिफ्ट कार्ड है ये, और ये 30 डेज के लिए वैलिड रहेगा। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको मेक्सिकन खाने के साथ वो जो एक ग्लोबल फ्यूजन मिलेगा ना, वो कमाल का है। एंड द एम्बियंस इज कमाल का। यू विल गो एंड यू विल नो what I'm talking about here. So yes, Neon Cactus, ladies and gentlemen, do remember, क्योंकि हमारा DFW का food scene कमाल का है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस कमाल की जगह को भी आप पूरी तरह से जांचें, परखें और लोगों तक पहुंचाएं बात। और राइट, 972-235-5555। रीना की तरफ से कॉल आया, उन्होंने कहा कि उनकी जो जीन्स है, उनकी जीन्स 5 साल पुरानी है। लेकिन रीना, आई एम सो सॉरी, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम, कहूँ कि क्या कहूँ, द टेस्ट क्या कहूँ इसको मैं। लेकिन जो भी है, ये आप क्लियरली इसमें से आउट होती हैं, क्योंकि गेस व्हाट, हेमंत के पास 2 ऐसे जीन्स हैं जो आपके जीन्स से और भी पुरानी है। एक 8 साल पुरानी है, एक 12 साल पुरानी है। कैन यू इमेजिन दैट, सीरियसली, ओ माई गॉड, मैं मतलब हैरान हूँ ये सुन के। और मैं एक्चुअली यहाँ पे दाद देना चाहती हूँ कि अगर 8 साल और 12 साल पुरानी है, तो मतलब आपने अपना हेल्थ भी सॉलिड अच्छा रखा है। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है। चलिए एक और कॉल लेती हूँ, एंड दिस आई एम गोना टेक ऑन एयर, एंड कीप कॉलिंग मी एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट, वी विल श्योरली हैव ए विनर। यू आर लाइव ऑन एयर, टेल मी। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: Yes, hi, how are you?
0: I'm doing excellent. Tell me, what's your name and what's the oldest jeans that you possess?
1: My name is Pramesh. Okay. And the oldest thing I have is my great-grandfather's photograph.
0: Great-grandfather's photograph. Well, that was amazing.
1: That photograph was... I think in 1910.
0: Oh my goodness. I am so, so glad that you shared with us. But the question is a bit different, Pramesh. It is about the oldest jeans, pair of jeans that you have.
1: Oh, oldest jeans.
0: Yes.
1: Okay, oldest jean I have is, I think, about 25-year-old.
0: What? Are you serious? Do you even fit into it?
1: Oh, yes, I do.
0: Kya baat hai?
1: That was,
0: that is amazing. Pramesh, you have definitely made it a thing that nobody can surpass, I think. 25 years is a big number. So let's see by the end of this segment if anybody can surpass that 25 years old jeans that Ramesh has with him. It is, ladies and gentlemen, purani jeans aapki kitni purani hai? Bas yahi to hum janna chahte hain. You are listening to Funisha Radio 104.9 FM. Gapshap Gali with Me Too continues.

ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बर्निंग क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था, एंड दैट क्वेश्चन है कि भाई आपकी पुरानी जीन्स कितनी पुरानी है, ये जानना चाहती थी मैं. और पता चला यार, मुझे लगा था कि हेमंत को कोई बीट नहीं कर पाएगा. 8 या 12 साल से ऊपर किसकी जीन्स इतनी पुरानी हो सकती है. लेकिन फिर हमारे ऑन एयर आए और उन्होंने बताया कि उनकी जीन्स 25 साल पुरानी, एंड दैट्स प्रमेश हु टोल्ड अस दैट. लेकिन उसके बाद कुछ और कॉल्स आए जो जिनकी जीन्स उससे भी ज्यादा पुरानी है. एक जनाब जिनका नाम है अली रजाब, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि उनकी जीन्स जो है वो 30 साल पुरानी है. आई सेड ये मिल गया विनर. लेकिन उसके सून आफ्टर दैट, राइट आफ्टर दैट एक्चुअली, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर राज और उन्होंने कहा उनकी 34 साल, 34 ईयर्स ओल्ड दैट हिज जीन्स इज, एंड ही इज वेयरिंग इट. डिड ही से और वॉज इट द अदर कॉलर? बट 34 साल पुरानी मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बीट कर सकता. बट नेवर से नेवर आई गेस. वी विल कम टू नो इन अबाउट फ्यू मिनट्स की सबसे पुरानी जीन्स हमारे लिसनर्स में से किसके पास है. लेट्स फाइंड इट आउट.

एंड राइट, अभी तक जितने भी कॉल्स आए हैं मुझे लगता है मिस्टर राज डेफिनेटली इज द विनर हु ओन्स दिस पेयर ऑफ जीन्स जो 34 साल पुराना है. 34, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन एनीबॉडी बीट दैट. तो नियॉन कैक्टस की तरफ से मिलता है राज साहब को दिस गिव अवे $20 गिफ्ट कार्ड, डाइन इन गिफ्ट कार्ड फ्रॉम नियॉन कैक्टस. यू डेफिनेटली गोइंग टू इंजॉय दैट. उसके बाद आप अपनी जीन्स में फिट आएंगे कि नहीं ये गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि खाना ही इतना बढ़िया मिलता है मेक्सिकन खाना विद दैट ग्लोबल इन्फ्लुएंस दैट यू विल गेट देयर. एंड इट इज नियॉन कैक्टस, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू कैन ट्राई आउट एज वेल. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग हियर. आपकी पुरानी जीन्स कितनी पुरानी है यही था मेरा सवाल, लेकिन यार अगर इसमें हम थोड़ा अपना फिलोसफिकल तड़का नहीं देंगे तो कैसे चल सकता है, राइट? क्योंकि हम जिंदगी के कितने काम जोड़ तोड़ करते रहते हैं उसमें, यू नो, कई बार कुछ बिगड़े हुए काम या कुछ इनकम्प्लीट गोल्स, या कई बार तो हमारी जीन्स भी, राइट, कि जो मतलब घुटने से छिल गया हो या फट गया हो या घिस गया हो, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये चीज़ें ना हम रिश्तों में भी लेकर आते हैं, दैट रिपेयर वर्क व्हेन इट फाइंड इट्स वे इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. जहाँ ये जोड़ तोड़ काफ़ी जगह तो काम कर जाती है, वहीं ये समझने में कई बार पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कि कुछ मामलों में रिपेयर का तरीका सिर्फ एक ही है. That you see the problem, acknowledge the problem, understand the problem, and you know what? Start over. Because it's not always about trying to fix something broken. Maybe it's sometimes about starting over and creating something better. कभी कभी कुछ कुछ चीजों से ना कंप्लीट ब्रेकअप ले लेना चाहिए, अगर वो सही नहीं है आपके लिए, आपको पता हो. And Raj, please give me a call back if you want to redeem that Neon Cactus giveaway. $20 का giveaway है भाई, Raj छोड़ेगा नहीं.

0: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
1: लिया।
0: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
1: नहीं आया।
0: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
2: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
9: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
13: हाँ।
12: घर रिलोकेट करनी है?
13: हाँ।
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
13: हाँ भाई हाँ।
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
14: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
0: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
17: दिल की धड़कन कैसी है डैलस, क्योंकि कल जो अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया का मैच हुआ वो क्या कमाल का मैच था, और वो भी डैलस में हुआ। कुछ रिकॉर्ड्स टूटे, उन सब चीज़ों के बारे में अगले सेगमेंट में बताऊंगी, बिकॉज दैट्स द फीफा सेगमेंट, जहां पे कुछ अपडेट्स भी लेकर आते हैं और कुछ ट्रिवियस भी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जस्ट टू कीप यू एब्सोल्युटली अब्रेस्ट द एंटायर फायर दैट इज गोइंग अराउंड फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो वो अगले सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट में क्या, इस सेगमेंट में थोड़ी और वार्तालाप आप लोगों के साथ। 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो। पीएमजे ज्वेल्स के बारे में बताने वाली हूँ। बिल्कुल चमकता हुआ ये एक नई जगह फॉर योर ज्वेलरी शॉपिंग फॉर द नेक्स्ट स्पेशल ओकेजन दैट यू हैव.

9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. डैलस का इंतजार पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि 20th को ग्रैंड ओपनिंग हुई है PMJ ज्वेल्स की एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिडंट नो अबाउट इट. और ये कितनी गलत बात है कि एक तो मैं फनीजा रेडियो पे हूँ और उसने मुझे नहीं सुना, और मुझे नहीं सुना तो नहीं सुना, किसी को भी नहीं सुना, क्योंकि हम कितने दिनों से आपको बता रहे हैं अबाउट PMJ ज्वेलर्स. एंड ये है 60 ईयर्स के बाद फ्रिस्को में ये पहला लोकेशन जो खुला है ये आपके लिए. PMJ ज्वेल्स जो लेकर आएंगे आपके लिए स्टनिंग गोल्ड एंड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू. आपके हर माइलस्टोन का हिस्सा बनना चाहते हैं. यू इफ यू डोंट नो अबाउट PMJ ज्वेल्स यू शुड गो एंड विजिट देम टू चेक आउट ऑल द डिजाइंस. जी हाँ, प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टमनेनी. और ये PMJ जो नाम है ये एक ट्रस्टेड नाम है. आप किसी को भी हैदराबाद से पूछ लें, उन सबको पता होगा अबाउट दिस प्लेस. सो यस, चेक इट आउट, विजिट PMJ ज्वेल्स फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट. और आप डिस्कवर करें अपना पसंदीदा ये फ्यूचर में जो आपकी जगह बन जाएगी. यू विल सी.

एंड नवनीता खेन का ये कोई अजनबी नहीं है आपके लिए, ये वन ऑफ योर फेवरेट आरजेस दैट यू हैव ऑन फनीशर रेडियो 104.9 एफएम। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये अब केलर विलियम के साथ एसोसिएटेड हैं, यस केलर विलियम्स रियल्टी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब ये होता है कि आप क्लियरली उनसे अपना पर्सनलाइज सर्विस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और जेन्युइन केयर के लिए उन्हें कॉल कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू बाई, सेल और रीलोकेट इन द DFW एरिया। नवनीता खेन का should be the person to go for. 347-449-4242 is that number. A great friend of mine, always have enjoyed her company and her honesty. Or 347-449-4242 ये नंबर मेरे पास रहेगा और हर आरजे के पास रहेगा कि अगर आपको ये नंबर चाहिए तो जरूर कनेक्ट करिए विथ नवनीता खेमका फॉर एनी ऑफ योर बाइंग, सेलिंग और रीलोकेटिंग नीड्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इनटू फनीशर रेडियो 104.9 एफएम। बात करने वाली हूँ कुछ अपनी दिल को खुश करने वाली चीज, दैट इज योर हॉबी। लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स फाइंड आउट कि मिलेनियल्स, जेंजी किन चीज़ों में अपने आप को इंगेज करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, यू नो, अपने खुद के लिए ये करना। जैसे कि मैंने हाल ही में म्यूज़िक सीखना शुरू किया है और एक ज़माने में सीखती थी एंड दैट वाज मोर ऑफ अ प्रेशर फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड बिकॉज दे थॉट कि मैं अच्छा गा पाऊँगी, इसीलिए तब मैंने कभी सिंसेरली नहीं किया। मैं आज भी शायद उतनी सिंसेरली नहीं करती हूँ, बट आई एम इन्जॉइंग इट नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट यू इन्जॉय डूइंग एंड लेट्स टॉक अबाउट मिलेनियल एंड जेन ज़ी कल्चर्स हियर।

संग आई है मेरी क्योंकि हॉबीज ही कुछ बात करने वाली हो यहाँ पर. एंड दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट एंड मेरे ख्याल से कुछ भी चीज को जनरलाइज करना शायद सही बात नहीं होती है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस और आजू बाजू के लोगों से कुछ बताती हूँ आप लोगों को, जो सुनी सुनाई बातें हैं उनसे बताती हूँ. एंड सी लेट्स सी इफ वी अग्री टू दैट. ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मिलेनियल्स हैं, हम मिलेनियल्स में ना, हम जब बड़े हुए कुछ ऐसे कल्चर में बड़े हुए, एक हसल कल्चर के साथ बड़े हुए, कि उस दौर में ना जब हमें सिखाया गया था कि जहां हर सेकंड पैसा कमाना जरूरी था. चलो इट्स एन एग्जैजरेशन, लेकिन एनीथिंग दैट यू डू हैज़ टू गिव यू मनी. अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए होना चाहिए एक पैसा कमाने का साधन, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. नॉट नेसेसरिली माई पेरेंट्स और योर पेरेंट्स डिड दैट एट आर होम, बट जनरली स्पीकिंग. ओके, सो ये एक मिलेनियल कल्चर है जो कई लोग शायद इससे रिलेट कर पाएंगे. बाकी यू नो दैट दे वर एक्सप्लिसिटली टॉट दैट इफ यू हैव अ स्किल यू रियली हैव टू मोनेटाइज इट, टर्न इट इन टू अ साइड हसल. ये तो एक मिलेनियल की बात हो गई, ठीक है. और वहाँ पे आते हैं जेंजी. नाउ जेंजीज को सोशल मीडिया एस्थेटिक्स के प्रेशर ने परेशान करके रखा है. एंड इफ दे पिक अप ए गिटार, इट कांट बी जस्ट यू नो स्ट्रमिंग रिकॉर्ड कॉर्ड्स, यू नो रैंडम कॉर्ड्स, यू नो, क्योंकि बात ये हो जाती है तब कि वो इंस्टाग्राम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. और वो परफेक्शन के चक्कर में कई बार वो छोड़ भी देते हैं ये करना, या अगर करते हैं तो उतना ही मेहनत करते हैं जितना उस रील के लिए मेहनत की जरूरत होगी. यू नो, अगेन दिस इज जनरलाइजिंग, आई नो द फैक्ट वेरी वेल, बट देन देर आर पीपल हु एक्चुअली डू दैट. तो ये मिलेनियल्स का और जेंजी का थोड़ा सा चक्कर है कि हम अपनी हॉबीज को ना हॉबी की तरह ले नहीं पाते हैं, कि जो केवल प्योर एंजॉयमेंट के लिए हो, वो उससे कुछ आप पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करने में मजा आ रहा है. एज सिंपल एज दैट. आपकी कोई ऐसी हॉबी है? दिस इज गपशप गली विद मी टू.

पता है हमारे दिल में कभी कभी ना कुछ दबी दबी इच्छाएं होती हैं, और जब हमें वक्त मिलता है हम उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, हॉबी भी कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं कि जो आप अपनी खुशी के लिए करते हो, किसी और की खुशी या किसी और के कहने पर नहीं, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। और ऐसे में मुझे एक कॉल मिलता है रवि गुलाटी साहब से, एंड ही सेड आफ्टर हिज रिटायरमेंट एक्चुअली ही स्टार्टेड लर्निंग कीबोर्ड, एंड सिंस पास्ट 4 ईयर्स ही हैज बीन लर्निंग कीबोर्ड। उन्होंने अपने यूट्यूब हैंडल का भी नाम बताया जो मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पर, बट जस्ट टू लेट हिम नो कि मैंने थोड़ा सा भी अभी सुना और वो गाना विच गॉट हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ व्यूज, इट इज दिस नेक्स्ट ट्रैक लेडीज एंड जेंटलमैन दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू। बट जी हाँ, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ए हॉबी, दैट इज फॉर श्योर। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
7: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
6: Renew?
7: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
6: What better way to celebrate than with something timeless?
7: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
9: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
9: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
16: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
17: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
18: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
19: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM. Fun Asia Radio.
9: गपशप गली विद मीठू में आपका स्वागत है और स्वागत है फन एजा रेडियो 104.9 एफएम पे भी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही चॉइस ये किया है. तो विल मेक श्योर दैट यू आर यू नो एब्सोल्युटली अप टू डेट विद द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू वांट टू लिसन टू, द न्यू एंड हैपनिंग सॉन्ग्स एंड ऑल्सो यू नो फीफा अपडेट विच इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ माई शो. फीफा अपडेट और ट्रिविया के साथ ये 12 से 12:30 तक का सेगमेंट जो है वेरी स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू हियर. साथ में एक फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है जस्ट 8 घंटे पहले, श्रद्धा कपूर्स ईठा, लक्ष्मण उतरेकर एट द हेल्म ऑफ इट. वो ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने हमें कई कमाल की फिल्म दी हैं, जैसे कि छावा, जैसे कि मिमी,

लिसन, आई नीड टू टॉक अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, क्योंकि अगर किसी हेल्प की ज़रूरत अगर होती है हमें, तो उस वक्त होती है, उस दिन होती है. और कभी कभी डॉक्टर ऑफिस से फिर मैसेज आता है कि भाई कि आज नहीं, आपको परसों का अपॉइंटमेंट मिलेगा, आज नहीं फिर नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट मिलेगा. ऐसा यहाँ नहीं होता. और ये जगह है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि जस्ट टच एंड गो काइंड. यू कैन रियली सिट डाउन विथ योर डॉक्टर टू टॉक योर हार्ट आउट अबाउट वॉट एवर कंडीशन, हेल्थ कंडीशन दैट यू आर गोइंग थ्रू. सो यस, ये आपकी सुनते हैं और दिल से सुनते हैं और आपको वक्त पे अपॉइंटमेंट देते हैं. एंड दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर फॉर ऑल ऑफ यू. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर कोई जो हमारे लिसनर्स में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हमें सुन रहे हैं, या एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हमें सुन रहे हैं, पीडियाट्रिशन सुन रहे हैं, या साइकैट्रिस्ट हमें सुन रहे हैं, और अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में अपना रेज्यूमे भेजना बिल्कुल ना भूलें. पैशन हेल्थ फिजिशंस एट gmail.com इज देयर ईमेल एड्रेस, एंड यू कैन टेक्स्ट देम एट 217-454-4639 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. पैशन हेल्थ फिजिशंस.com, और यू कैन कॉल और टेक्स्ट एट 214-666-6259. दिस इज फॉर एवरीबडी एल्स टू नो. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, ये नाम आपके साथ होना चाहिए, फोन पे नंबर सेव होना चाहिए. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. ईटा का बड़ा इम्प्रेसिव लगा मुझे ट्रेलर, और इसीलिए ईटा के बारे में बात की. श्रद्धा कपूर्स अपकमिंग फिल्म दैट इट इज़ अ बायोग्राफिकल दैट लक्ष्मण उत्रेकर इज ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू, और काफ़ी इंतजार रहेगा. उन्होंने मीमी भी बनाई, और क्या बनाई, कृति सैनन की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ अ करियर सो फा. एंड आई एम श्योर श्रद्धा कपूर इज डूइंग गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज जब वो स्क्रीन पर आती ना, कहीं और नज़र नहीं जाती है. दैट इज़ अ फैक्ट. और इंतजार रहेगा, 28th of August is when it is going to release, which has come with a tagline, पान में पान चखना हो तो मीठा, और तूफान को नाचते हुए देखना हो तो ईठा. 28th of August, ladies and gentlemen, it's going to release this year. अभी रही बात ये सारी फिल्मों की, यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि अब बात करने वाले हैं फीफा की. फीफा एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम टू मी टुडे इज पोर्चुगल वर्सेस उज़्बेकिस्तान. आफ्टर ऑल इट इज़ द लास्ट डांस फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दैट वी आर गोइंग टू सी. विल टॉक अबाउट दैट इन मच डिटेल आफ्टर द सॉन्ग.

और घड़ी का कांटा मुझे बता रही है कि 12 बज चुके हैं एंड 14 मिनट्स इनटू द 12th आवर ऑफ द डे. और इसका मतलब है हमारा गेम शुरू हो चुका है, पोर्चुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान. दिस वन गेम दैट आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट टुडे क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज इन एक्शन एंड फॉर द लास्ट टाइम फॉर अ वर्ल्ड कप दैट ही इज प्लेइंग. ग्रुप के में है पोर्चुगल की टीम अलॉन्ग विथ उज्बेकिस्तान. एंड यस, पोर्चुगल ने ऑलरेडी एक गोल मार दिया है, ये आपके लिए जानना जरूरी है. यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल ऑफ वर्ल्ड कप 2026. और ये खतरनाक बात है क्योंकि यही तो हम देखना चाह रहे थे कि ह्यूस्टन के स्टेडियम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने खेलते हैं. क्योंकि यू प्रॉबली नो कि जो फर्स्ट गेम हुआ था पोर्चुगल का, इट वॉज अ ड्रॉ. एंड ये डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने एक्चुअली इनका ये जो ओपनर मैच था इस पे उनके पूरे उम्मीदों पर पानी फेर दिया था. वेन इट was a draw, it was called a draw, 1-1 the score was when Portugal opened their series in this World Cup. All right, up stakes काफी high है. Portugal is under immense pressure to secure a win after being held to that frustrating 1-1 draw by Congo in their opener. तो अब देखते हैं आगे क्या होना है. बाकी क्रिस्टियानो और रोनाल्डो पूरे फॉर्म में आ चुके हैं मुझे लगता है, एंड इट विल बी क्वाइट नाइस टू सी हिम प्ले. इसके अलावा जो और मैचेस हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बूट्स की तरफ आपकी नज़र एक बार जानी चाहिए. आई होप दे जूम इन टू हिज शू क्योंकि उनका ये ना हमेशा से एक ट्रिब्यूट देते आए हैं अपने फैमिली को ऑन द पिच, एंड दिस टाइम ऑल्सो इट इज थ्रू हिज बूट्स दैट ही इज वेयरिंग. उनके पांचों बच्चों के नाम है उस पे, क्रिस्टियानो जूनियर, एवा एंड मेटियो के साथ साथ एलेना एंड बेला का नाम उस पे लिखा हुआ है. नाइकी क्रिएटेड दिस स्पेशल सिग्नेचर बूट्स दैट इंटीग्रेट दीज पर्सनल टचेस on his shoes. So this is something that you would like to check out. बाकी तीन गेम्स के बारे में इस गाने के बाद बताऊं. And it is गपशप गदी with मीटू with the FIFA segment for all of you.

0: जब से मेरे
1: और उफ क्या स्कोर है पोर्चुगल का, पोर्चुगल वर्सेस उज़्बेकिस्तान, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू. क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड न्यूनो मेंडेज डूइंग व्हाट दे आर बेस्ट नोन फॉर. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओपन द स्कोरिंग इन द सिक्स्थ मिनट इटसेल्फ और उन्होंने अपना एक जो लगाया गोल उसे 1-0 हुआ था और उसे थोड़ी ही देर के बाद न्यूनो मेंडेज ने लगाया सेकेंड गोल. सो राइट नाउ द स्कोर इज 2-0 एंड दैट इज पोर्चुगल वर्सेज उज़्बेकिस्तान विच इज ऑन गोइंग एज वी स्पीक एट ह्यूस्टन स्टेडियम. लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 बजे आज शाम को होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस घाना एंड इंग्लैंड दे गोना फेस ए रेजिलिएंट घाना स्क्वाड दैट करंटली शेयर्स द टॉप स्पॉट आफ्टर पुलिंग ऑफ अ ग्रिटी 1-0 विन अगेंस्ट पनामा. सो यस, द टॉप ऑफ द टेबल क्लैश इन ग्रुप एल, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी एट 4 PM लेडीज एंड जेंटलमैन. फिर है 7 बजे पनामा वर्सेज क्रोएशिया, ए प्योर सर्वाइवल मैच दैट दिस इज गोइंग टू बी और ये टोरंटो स्टेडियम में खेला जाने वाला है. Both teams are sitting on 0 points after dropping their opening games, making a victory absolutely essential to keep their knockout hopes alive. So, ये एक बहुत ही crucial game होने वाला है 7 बजे आज between Panama and Croatia. इसके अलावा let's see Colombia versus Democratic Republic of Congo. ये होने वाला है Mexico के stadium में and आज रात को 9 बजे होने वाला है. Colombia looks to assert total dominance in group K after dispatching Uzbekistan 3-1 in a comfortable opening performance that we know. So yes, this match is at 9 PM और फिलहाल पोर्चुगल के साथ उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ये इतनी जल्दी गोल्स होने के बाद पूरा टाइम बाकी है, लेकिन देन यू नो दैट दे आर इन कम्प्लीट फॉर्म एंड दैट्स पोर्चुगल. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज पोर्चुगल प्लेइंग राइट नाउ एट आर वेरी ओन टेक्सस स्टेडियम. Keep listening, ladies and gentlemen. एक फ्री फीफा मर्चेंडाइज के बारे में बात करने वाली हूं जो कि आजकल क्रेज बना हुआ है.

It's the World Cup excitement, which is absolutely exploding across North Texas as fans line up for hours at the Dallas FIFA Fan Festival for a वायरल सोविनेर. जी हाँ, कल के गेम के बाद भी इस वायरल सोविनेर को लेने के लिए लोगों ने लंबी लाइन, 2 घंटे से भी ज़्यादा लाइन लगानी पड़ी है लोगों को. एंड दिस इज़ बैंक ऑफ अमेरिका, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल बैंक स्पॉन्सर वो हैं, और वो बिल्कुल फ्री कस्टमाइजेबल ब्रेसलेट्स बांट रहे हैं. एंड एब्सोल्युटली फ्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू हर्ड, इसीलिए लोग लंबी लाइन करना चाहते हैं. एंड दे वेरी फैंसी वंस. दीज पॉपुलर फैन बैंड्स कैन बी पर्सनलाइज विद ओवर 140 डिफरेंट चार्म्स, इंक्लूडिंग country logos, sports numbers and special Dallas team designs. तो social media पर ये giveaway इतना बड़ा hit हो गया है कि लोग gates खुलने के पहले ही घंटों पहले आके line में लग रहे हैं just to get that free band, that bracelet from Bank of America. For those you know, wanting traditional gear, official FIFA merchandise like jerseys and hats and pins are flying off the shelves at CVS and dedicated pop-up shop at Galleria डालिस. और जी हाँ, ये कुछ हमारे मर्चेंडाइज के बारे में बात हो रही थी. अल्टीमेटली लोकल्स ओवर यू नो दे एब्सोल्युटली लव दैट मैसिव ग्लोबल टूर्नामेंट विच इज़ ब्रिंगिंग ए ह्यूज कल्चरल एंड इकोनॉमिक बूस्ट स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ टेक्सस. येस्टरडे द गेम वॉज इन डालिस, लियोनल मेसी ने अपना जो कमाल दिखाया, और इसके बाद अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेइंग एट द ह्यूस्टन स्टेडियम टुडे एज वी स्पीक.

0: आगे की बात नहीं होती है, साथ चलने की बात होती है. साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज गपशप गली विथ मी टू गेटिंग रेडी टू मेक स्पेस फॉर रिमिता. सी यू टुमारो एट 10.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली.
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
8: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को. कॉल 972-666-1181. मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ.
9: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
8: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, इर्विंग और गार्लिन में उपलब्ध.
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
8: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्स-रे, CT स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइज़र वे, सुइट 205, फ्रिस्को.
14: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
15: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट.
16: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ 6 वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स. आई एम डॉक्टर शहजाद बातलीवाला. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
17: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
16: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
18: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.

9 minutes past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. Main hoon Rumita and this is the show Afternoon Adda. Namaskar Dallas, kaise hai aap log sab? You know, Tuesday afternoon है जैसे कि मैंने कहा, और मुझे लगता है कि ट्यूसडे दुनिया का सबसे इग्नोर्ड दिन होता है. कैसे? वैसे ऐसे ही होता है कि मंडे को सब पूछते हैं कि वीकेंड कैसा था, फ्राइडे को सब पूछते हैं कि वीकेंड का प्लान क्या है, और ट्यूसडे बेचारा खुद ही अपना हाल पूछ रहा होता है. अभी इस वक्त कुछ लोग ऑफिस में होंगे और प्लान कर रहे होंगे कि यू नो लंच क्या करेंगे, या जो लंच लेके आए हैं वो इंतज़ार में है कि कब अपना डब्बा वो लोग खोलेंगे. कुछ लोग गाड़ी में होंगे, लंच की तरफ जा रहे हैं. कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम के नाम पे किचन और लैपटॉप के बीच ना शटल सर्विस खेल रहे होंगे. और ऐसे ही इस ट्यूसडे में, आज इस हाल में, हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं. इसे मैं सोच रही थी मैं कि एक बात याद आई कि हम बचपन में ना बहुत जल्दी थी हमें कि हम बड़े होंगे, बहुत जल्दी थी कि हम एडल्ट बन जाएंगे. स्कूल में लगता था बस यार कब बड़े होंगे, कोई होमवर्क नहीं होगा, जब मन करे पिज्ज़ा खाएंगे, जब मन करे शॉपिंग करेंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा. और एक्चुअली में आजकल पूछने वाला भी है ही नहीं. पता चला कि पिज्ज़ा खरीदने की आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन उसके बाद एसिडिटी की खुद ही हैंडल नहीं कर पाती है. शॉपिंग भी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड बिल भी तो देखना पड़ता है. और सबसे पनी बात यह है कि बचपन में लगता था एडल्ट्स के पास हर सवाल का जवाब होता है, पर

बड़े होके समझ आया ना कि हम सब बस अंदाजा ही लगा रहे हैं। तो आज आफ्टरनून अड्डा में बात करते हैं उन चीजों की जो किसी ने हमें सिखाया नहीं, लेकिन लाइफ ने धीरे धीरे सिखा दी। और मैं चाहती हूं आज आप भी मुझे बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अपने लाइफ में थोड़ा सा लेट रियलाइज किया।

आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो. मैं हुर्मिता एंड दिस इज आफ्टरनून अड्डा, जहां पे आज अड्डा है अबाउट सम थिंग्स दैट वी रियलाइज अ लिटिल लेट इन लाइफ. चाहे आप अभी अभी एडल्टहुड में स्टेप इन कर चुके हो या बहुत मतलब दुनिया देख ली, फिर भी आजकल नई नई चीज़ें रियलाइज करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं सिचुएशंस से. जिंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ आपको जिंदगी सिखा ही रही है. जैसे कि खान साहब और सभा जी ने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था व्हाइल आई वाज प्लेइंग दीज ब्यूटीफुल टू ट्रैक्स फॉर यू गाइज, और उन्होंने शेयर की अपनी लेट रियलाइजेशंस. एक तो खान साहब मानते हैं कि हमें फैमिली और फ्रेंड्स यानी कि अपने लोगों में पैसे उधार नहीं देना चाहिए क्योंकि वो ना कभी वापस नहीं आते. और यही चीज वो सारे DFW वासियों को भी सलाह देना चाहते हैं कि कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स या फिर बहुत अच्छे करीबी दोस्तों को पैसे मत उधार देना, क्योंकि वो लोग ना सोचते हैं कि आप इतने वेल ऑफ हो, आपको उस पैसों की वापस क्या ज़रूरत है. ये तो चीज़ भाई, ये तो गलत बात है. जो लेना है वो तो वापस देना ही है. तो खान साहब, आई फील फॉर यू इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन इन योर लाइफ, बट एटलीस्ट यू रियलाइज्ड. और इत्तला करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सभा जी ने कॉल किया एंड उन्होंने कहा कि भाई बचपन में तो ये डिस्क्रिमिनेशन था ना जो था, वो हमें सिखाए नहीं जाते, बट एज वी ग्रो अप यानी कि रिलीजन पे, कास्ट पे, स्टेटस सिंबल में कुछ भी, वी व्हेन वी आर ऑल टुगेदर, अब जब हम छोटे होते हैं तब उतना डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंसिएशन नहीं होता हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में होते, बट एज यू ग्रो अप एंड एज एडल्टहुड स्ट्राइक्स इन, ये हमें सिखाया जाता है. और जिंदगी ये तो बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ मैं. आई नो सभा जी, आई कैन फील फॉर यू टू. अब क्या कर सकते हैं, एडल्टहुड ही ऐसी चीज़ है, जिंदगी ही ऐसी चीज़ है, हमें कुछ ना कुछ माशाल्लाह सिखा ही देती है. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. इफ यू टू आर रियलाइजिंग थिंग्स अ लिटिल लेट इन योर लाइफ एंड वांट टू शेयर टुडे एट आफ्टरनून अड्डा, कॉल मी एंड लेट मी नो.

माशाल्लाह, ये दोनों इतने खूबसूरत है ना कि लगता है कि ये पूरा गाना कभी खत्म ही ना हो। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो एंड दिस आफ्टरनून अड्डा में, यानी कि रुमिता। आज हम बात करें अबाउट द लेट रियलाइजेशंस इन लाइफ। तो अभी ये गाना चल रहा था ना, तो मुझे सिर्फ ये चीज अभी अचानक से याद आई कि जब हम ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं और सिर्फ एक चीज या दो चीजें एनलिस्ट करके लेके जाते हैं कि यही सिर्फ खरीदना है, और somehow अचानक से $80 कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। मुझे लगता है अडल्टहुड का असली टेस्ट टैक्स रिटर्न नहीं होता है। यहाँ पे आप ग्रॉसरी स्टोर में जाके बजट के अंदर अगर निकल पाते हो, यही आपका सबसे बड़ा टेस्ट है अबाउट बीइंग एन अडल्ट। और सबसे फनी बात यह है कि बचपन में हम मम्मियाँ जब बोलती थी ना कि बेटा सब कुछ घर पे है, कुछ नहीं लेना है, अभी तो कंट्रोल हमारे हाथ में है ना, वो भी नहीं होता है यार। फिनांसिस सही होते ही नहीं है। खैर, मेरा तो होता नहीं, आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको अपने फिनेंशियल गाइडेंस के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है, देन एजी फिनटैक्स कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। एंड बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्टेड एंड एफिशिएंट टीम, अपने इनोवेटिव फिनेंशियल सर्विसेज से आपको और आपके बिजनेस को बहुत सारा मदद मिलेगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US। फॉर डिटेल्स यू कैन कॉल देम एट 4699429888 or visit agfintax.com and you can secure your financial, you know, future a little bit. अभी पैसे की बात हो रही है तो चलिए गाना ही सुन लेते हैं पैसों के ऊपर।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
9: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
16: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
17: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Ramit and this is my show Afternoon Adda. This was the song taken from the movie Dadi Ki Shadi. Yaar, ye bhi ek movie aayi hai, abhi tak release hui hai, mujhe nahi lagta hui hai. It stars Neetu Kapoor and Kapil Sharma, by the way, in pivotal roles. Aur ye jo gana tha, Senti, this was requested by Shoaib Ji. Shoaib Ji, if you're still listening to me, this song was dedicated to you. Waise aapka ye request maine isiliye rakha kyunki aapne bahut hi ek khaas cheez mujhe aaj sikhai jab main grocery stores ke bare mein baat kar rahi thi, and you called and you told me a very important thing jo mujhe laga ke baki DFW and the entire DFW should know about it. Unhone ek hi cheez salah di mujhe ki jabhi bhi aap grocery store mein jao to ek cheez yaad rakhna aur keep it in mind and do it next time ke grocery store mein kabhi bhi khali pet nahi jana. क्यों खाली पेट नहीं जाना ये आप भी रियलाइज कर पा रहे हो अभी ये सुन के, क्योंकि यार खाने का मन करता है और इधर उधर एक्स्ट्रा चीजें हम ले लेते हैं, बिल भर जाता है. दैट इज व्हाट वी रियलाइज अ लिटिल लेट इन लाइफ. और आज आफ्टरनून अड्डा में उसी की चर्चा हो रही है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी रियलाइज अ लिटिल लेट इन एडल्टहुड. और दिमाग में ये चीज आया कि इन अब कोई भी आप कंट्री से हो, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका या साउथ एशिया में किसी भी कंट्री से हो, आप अपने पेरेंट्स को जब कॉल करते हो ना, सिर्फ वो कॉल नहीं होता है, वो एक क्वेश्चनेयर होता है. पहला सवाल ये होता है कि खाना खा लिया, तबीयत ठीक है, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या चल रहा है. और आप जब बोलते हो ना कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली उन्हें लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ ही है. बचपन में लगता था कि पेरेंट्स बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, जो अभी भी कभी कभी लगता है, बट अभी समझ में ये भी आता है कि वो क्वेश्चंस नहीं होते यार, वो उनका तरीका होता है कहने का कि बस तुम ठीक रहना. और ये रियलाइजेशन भी एडल्टहुड का थोड़ा सा हमें लेट ही समझ आता है. तो गाइज, जब तक आप अपने पेरेंट्स को कॉल कर पा रहे हो, कॉल कर लो. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ लिटिल प्रीची ओवर हियर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉल एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, क्योंकि ना कभी कभी अच्छा लगता है उनसे बात करने में, हमेशा लगना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फादर्स डे या मदर्स डे में ही ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से नहीं चलेगा. टॉक टू देम एंड पेरेंट्स से यार, नथिंग एल्स. रियलाइज कर लो ये.

हाय, कुछ गाने सुनने से हम इतने इमोशनल हो जाते हैं यार। कभी कभी मैं खुद ही अपने आप को कोसती हूँ कि मैं क्यों प्ले करती हूँ ऑन एयर, बट तब लगता है कि यार लिसनर्स है हमारे, इतने इतने पॉपुलर गाने हैं और एक्चुअली दिल को छू जाने वाले गाने, तो क्यों ना आप भी उनका मजा लें। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, दिस इज रमीता एंड ऑन आफ्टरनून अड्डा। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सम लेट रियलाइजेशंस इन लाइफ, बट लाइफ है तभी जब आपका हेल्थ सही रहता है। तो इफ यू नीड अ प्राइमरी केयर क्लिनिक दैट इज गोइंग टू बी, आई मीन, केयरिंग फॉर यू, माँ की तरह नहीं, बट ऑब्वियसली इफ यूर फॉर एनुअल चेकअप, फॉर एनी प्राइमरी केयर, फॉर अर्जेंट केयर, कुछ भी डायग्नोसिस हो, कार्डियक डायग्नोसिस, सिटी स्कैन, एनीथिंग, एक्सरेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ यू वॉन्ट टू पैम्पर सम हिमालयन विथ सम हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑफ कोर्स, देन फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ बीन प्राउडली केयरिंग फॉर अ कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लोनॉक्सी मेडिकल। जी हाँ, फाउंडेड बाय मनदीप आचार्य, लोनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स यू एवरीथिंग दैट यू नीड एज अ प्राइमरी केयर क्लिनिक बाय योर साइड। इट्स ओपन 7 डेज अ वीक, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। यू कैन वॉक इन एनी टाइम और आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन विथ आर लेट रियलाइजेशंस इन लाइफ, अभी अभी थोड़ी देर पहले आई जस्ट ओपन माई व्हाट्सएप और एक बहुत पुराना नाम दिखा मुझे, और मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में एक ऐसा नाम जरूर है जिसे हम रोज बात करते थे, आई मीन रोज, एवरी डे, एवरी मोमेंट। फिर लाइफ बिजी हो गई, जॉब, फैमिलीज, शहर बदल गए यार, टाइम जोन्स बदल गए, और आज शायद महीनों से उस इंसान से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन वो अगर अचानक कॉल कर दे या फिर एक टिंग पिंग आ जाए ना उनका, तो कन्वर्सेशन वहीं से शुरू होगी जहां पे हमने छोरी थी। तो बचपन में लगता था कि यार ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, रोज बात करेंगे, मतलब एवरी डे। वो दिलचाता का डायलॉग याद है ना, कभी कभी रोज मिलना तो दूर, साल में एक बार भी मिल ले तो काफी है। एडल्टिंग यही तो सिखाता है हमें, ये ना कुछ रिश्ते ना कमजोर होते हैं, बट इट्स ऑल द डिस्टेंस यार, यू कैन मेंड थिंग्स अवे, यू कैन ट्राई आउट।

21 minutes past 1 o'clock, you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. और आज अगर आपका लंच का प्लान बन गया हो, लंच हो गया हो, कोई बात नहीं, आज का सोच लिया आपने, डिनर का भी तो सोच सकते हो, कल का लंच भी तो सोच सकते हो, वीकेंड का प्लान भी तो बना सकते हो. और अगर इन सारे बॉक्सेस पे टिक करना है तो अगले गाने सुनने, मतलब अगला गाना सुनना है पर्टिकुलरली, बिकॉज अगला गाना दे सकता है आपको एक मौका एक गिव अवे जीतने का. द गिव अवे इज फ्रॉम द चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. सो यू कैन ईदर गेट अ कढ़ाई चिकन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और चिकन के शौकीन हो मेरी तरह, और अगर आप वेजिटेरियन हैं देन कढ़ाई पनीर इज देयर फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज गेट्स द नेम ऑफ द फिल्म ऑफ द सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू प्ले राइट नेक्स्ट एंड यू कैन विन दिस गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. वैसे इस गिव अवे के अलावा भी आप चंडीगढ़ बाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का मजा ले सकते हैं, जैसे कि उनकी एक स्पेशल थाली होती है मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज लंच के टाइम पे, फॉर लंच ओनली, हाँ दैट्स लंच स्पेशल ओनली. सो मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन वेयर चंडीगढ़ बाइट्स इज लोकेटेड, यू कैन गो एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट देयर वेबसाइट chandigarhbites.com. फिलहाल स्टूडियो का नंबर इज 9722355555, that is 5555. Call me and tell me the name of the song, I mean name of the movie of this particular song. Bahut easy hai yaar, mauka mat gawana.

जो भी हो गिव अवे फिर आएगा, जी हाँ फिर आएगा, फिर आएगा मेरे शो में एक और बार आएगा। फिलहाल अगर आपने ये मौका गवा दिया है, क्योंकि एक जन ने सिर्फ आंसर्स तो सभी ने करेक्ट दिया ही है। आई नो हाउ बॉलीवुड बफ यू गाइज आर, बट द फर्स्ट कॉलर जनरली इज द विनर इन माई शो। और इस गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स के गिव अवे के विनर का नाम इज मुग्धा आत्रे। कंग्रेचुलेशंस मुग्धा जी, यू हैव वन दिस कढ़ाई पनीर और द कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। एंड येस, द प्रीवियस सॉन्ग वॉज फ्रॉम द मूवी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। व्हाइल आई वॉज टेकिंग सम कॉल्स, आई गॉट अ कॉलर जिनका नाम है कृषानु। बंगाली टू बंगाली कनेक्शन निकल गया यार, क्या करे। एंड ही हैज रिक्वेस्टेड अ सॉन्ग फ्रॉम वन ऑफ हिज फेवरेट मूवीज, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। एंड आई थिंक अगर आप भी बंगाली हो मेरे और कृषानु की तरह, देन आपका भी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है, एंड दैट इज Piku. So he has requested a song from the movie Piku, and here, ladies and gentlemen, this song for you only.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Aaja meri gaadi mein baith ja.
3: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
4: Wo thoda overheating tha.
3: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो,
5: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
10: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं.
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं.
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं.
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
16: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
17: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
16: कैसे?
17: Page 3 eatery?
16: No, not another restaurant again.
17: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
16: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
10: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
18: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
19: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
20: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
21: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
20: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
20: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

1:40 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Ramita and this afternoon Adda hum baat kar rahe about the things we realize a little late in life. Aur abhi abhi this Sayoni from the band Junoon, jab ye gaana chal raha tha na, then I realized ki kitna purana gaana hai, but still it is so relevant and still, I mean, टचिंग द हार्ट द सेम वे, और वही जुनून अभी भी है. एंड ऑफिशियली लेट 90s का ये गाना है. एंड व्हेन द सॉन्ग रिलीज इट वॉज बैक टू, आई मीन एक रेज इसने क्रिएट किया था. एंड आई कैन ऑफिशियली से कि वो हमारे जमाने का गाना है. और यही मैंने रियलाइज किया कि हाउ ऑफन डू वी से दिस कि हमारे जमाने वाला मोमेंट कभी कभी हमारे लाइफ में आता है. मुझे लगता है एडल्टहुड का सबसे डेंजरस सिम्टम यही होता है कि एक दिन आप अपने से किसी यंगर पर्सन को देखकर यही बोल देते हो, हमारे ज़माने में ना बस गेम ओवर, आप ऑफिशियली उस कैटेगरी में आ चुके हो. और फनी बात यही है कि जिन लाइंस पे हम बचपन में जब हमें ये सुनना पड़ता था हमारे ज़माने में थिंग, वही लाइन्स हम बोल रहे हैं आजकल. लाइफ में ना आयरनी फ्री में ही मिल रही है दोस्तों. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. टेल मी योर हमारे जमाने में मोमेंट एंड आई विल टेल यू कितना क्या कौन सा ज्यादा फनी है. आई लेट द एंटायर डैलस नो अबाउट द योर हमारे जमाने मोमेंट या फॉर द थिंग्स दैट यू रियलाइज अ लिटिल लेट इन योर लाइफ.

आपकी और मेरी कहानी से ज्यादा मुझे आपके कहानी में, आपकी कहानी में इंटरेस्ट है, क्योंकि बचपन से मैं बहुत ही ज्यादा इंक्यूजिटिव हूँ. क्या कर सकते हैं. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशर रेडियो एंड दिस इज रमिता. और क्यों आपकी कहानी में मैं ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी लाइफ की कहानी इस मुकाम पे आके ठहर गई है और आप कंफ्यूज्ड हो कि यार घर लेना है या नहीं लेना है, क्या करें, या फिर रेंट में ही लेना है, या फिर घर जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में रहे, या चेंज करे, रीफाइनेंस करना है, क्या करना है, देन आई एम हियर टू गिव यू अ सोल्यूशन. बिकॉज योर ड्रीम होम जो है ना आपका, वो पास ही है और आपको पता ही नहीं है. That is how Dream Home Mortgage is going to help you with that. क्योंकि वही वो कर रहे हैं since 1998. होम ओनरशिप को रियलिटी बनाने का काम ही है Dream Home Mortgage का, क्योंकि उनकी पर्सनलाइज्ड Mortgage solution makes the entire process very smooth and hassle-free. Licensed in all the 50 states, unki jo expert team hai, ya fir experienced team hai, that is committed to finding the right loan options tailored to your needs. Chahe aap ghar khareed rahe ho, upgrade kar rahe ho, ya fir refinance kar rahe ho. Start your home ownership journey with confidence with Dream Home Mortgage. Uske liye aapko call karna hai 972-245-5626. That's 972-245-5626. Or visit dreamhomemortgage.com for more details. You know, Dream Home Mortgage, making Dream Home happen. आज जून खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता कि 2026 इतनी जल्दी कैसे भाग रहा है. बचपन में ना समर वेकेशंस खत्म ही नहीं होते थे, और अब मंडे आता है और पलक झपको तो फ्राइडे आ जाते हैं. यार शायद वक्त तेज नहीं हुआ है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और बात यही पक्की है ना, यही हमें लेट रियलाइज होता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस आफ्टरनून अड्डा, वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेट रियलाइजेशंस इन लाइफ. इफ यू टू हैव सम लेट रियलाइजेशंस ऑफ लेट, कॉल मी एंड लेट मी नो. 972-235-5555 इज द स्टूडियो नंबर.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
6: उमर ख्वाजा.
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
15: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
14: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
15: वेट, व्हाट?
16: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
17: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
16: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.

रब के साथ साथ अभी रमिता भी मेहरबा होने वाली है आपके ओर, क्योंकि आ गया है वक्त एक और गिव अवे जीतने का आपके लिए। फन पिज्जा किचन का $10 गिफ्ट कार्ड इज हियर राइट हियर फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज गेस द सॉन्ग, द नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं की प्ले करने वाली हूँ आपके लिए, एंड यू कैन ऑलवेज विन द गिव अवे। जो पहली कॉलर होगी मैं उनको देने वाली हूँ दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। सो बी रेडी, क्योंकि मैं प्रिल्यूड प्ले करने वाली हूँ एंड आई विल बी जस्ट स्टॉपिंग फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम द मोमेंट द एक्चुअल सॉन्ग इज स्टार्टिंग। सो हियर यू गो, गेस द सॉन्ग और जीत लो ये फन पिज्जा किचन से एक $10 गिफ्ट कार्ड।

0: स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. आई ऑलरेडी हैव अ कॉलर विद मी एंड आई विल बी टेकिंग यू लाइव. हेलो फनीशा रेडियो. हेलो. हाय फनीशा रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: या द सॉन्ग इज सजदे में यूं ही रुकता हूँ.
0: जी जी, आप पूरा गाना गा ही दीजिए. एक लाइन आपने जब बोली दिया.
1: नहीं, अब पूरा गाना तो नहीं गाना पड़ेगा. आई थिंक
0: सो थोड़ा सा सुर में भी गा सकते हैं आप. लाइन सिर्फ रटना नहीं होता है, थोड़ा सुर भी डाल दीजिए.
1: सचते में यूं ही रुकता हूँ, तुमसे ही आके मिलता हूँ, क्या इसको ही कहते हैं.
0: यस यस, इसको ही कहते हैं सही जवाब. कंग्रेचुलेशंस. मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
1: नीलम मलिक.
0: नीलम जी, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन दिस फन पिज्जा किचन से $10 गिफ्ट कार्ड. प्लीज लाइन पे रहे व्हाइल आई प्ले द सॉन्ग, द एंटायर सॉन्ग फॉर आवर डीएफडब्ल्यू लिसनर्स. हियर यू गो.
1: श्योर.

You're listening to 104.9 FM Funny Show Radio. It's 2:27 by the studio clock. यानी कि वक्त हो चुका है सबको मैं टाटा बाय बाय कह दूं. पर जाने से पहले आज पूरे शो में हम उन चीजों की बात कर रहे थे जो लाइव धीरे धीरे सिखाती है. और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लेसन ये है कि किसी के पास पूरा आंसर या पूरे आंसर्स है नहीं. ना पेरेंट्स के पास है, ना टीचर्स के पास है, ना हमारे खुद के पास है. हम सब बस सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं और शायद ऐसे ही करेंगे. इसी का नाम जिंदगी है यार, हमारा फेवरेट गेम. वैसे आज का सवाल मैं फिर से पूछूंगी कि ऐसी कौन सी बात है जो आपने लाइफ में थोड़ा सा लेट रियलाइज किया है. यार जिंदा हो यार, वही काफी नहीं है क्या? This is Rumita signing off from Afternoon Adda. फिर मिलेंगे कल same time.

बॉलीवुड स्पॉटलाइट ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आप सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ. मैं हूँ किरण आपके साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 2:30 PM टिल 5 PM आई एम हियर विद यू राइट हियर ऑन योर एंड माय फेवरेट रेडियो स्टेशन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. फन एशिया जैसा और कोई नहीं, बिल्कुल सही जगह ट्यून्ड इन है आप. सुनते रहिए, अगले ढाई घंटे लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ब्लॉकबस्टर गाने. आज है जी बॉलीवुड स्पॉटलाइट, ट्यूसडेज को लेके आती हूँ और आज की स्पॉटलाइट हमने एक ऐसे स्टार पे डाली है, एक ऐसे डायरेक्टर पे डाली है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने हमें कुछ आउटस्टैंडिंग बॉलीवुड फिल्में दी. बॉलीवुड वॉज रीशेप्ड बाय दिस मैन, दिस इज नन अदर देन करण जौहर.

बहुत सारे गाने करण जौहर की फिल्मों के आज आपके लिए लाइंड अप हैं। और यू नो 1998 में पहली फिल्म करण जौहर ने बनाई थी, डायरेक्ट की थी। ही वॉज द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म एंड दैट वॉज ऑफकोर्स जिसका अभी आप गाना सुन रहे थे, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है के लिए एक नहीं दो नहीं बेतहाशा अवार्ड्स जीते करण जौहर ने, खासतौर पर फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता करण जौहर ने इस फिल्म के लिए फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। सो द फर्स्ट मूवी वॉज द डिफाइनिंग मूवी इन हिज करियर, और उसके बाद तो जैसे आप कह लीजिए लाइन लग गई कमाल की फिल्मों की, चाहे वो कभी खुशी कभी गम हो, कभी कल हो ना हो, काल, कभी अलविदा ना कहना, दोस्ताना, वेक अप सिड एंड मेनी मोर। और इन सारी ही फिल्मों का कोई ना कोई गाना मैं आज आपकी समातों की नज़र यानी कि आपके लिए ज़रूर प्रेजेंट करूंगी। दिस इज़ कभी खुशी कभी गम।

2001 में रिलीज हुई कभी खुशी कभी गम, जो कि एक बार फिर करण जौहर ने डायरेक्ट ही नहीं की बल्कि लिखी भी. एंड K3G वाज अ सेंसेशन. आई थिंक कुछ क्लासिक कल्ट्स में K3G का नाम आता है, अभी तक उसे याद किया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है. और फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट सीन का अवार्ड जीता. बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन पाई और डायलॉग और सीन के लिए जीता अवार्ड करण जौहर ने. एंड ऑल्सो इन आईफा एज वेल एज स्क्रीन अवार्ड्स. अच्छा जी, अब आगे बढ़ रहे हैं. एक मूवी जिसमें करण जौहर ने कोई डायरेक्शन नहीं की, कोई राइटिंग नहीं की, कोई प्रोडक्शन नहीं की, बट ही वॉज द कॉस्ट्यूम डिजाइनर इन दैट फिल्म. शाहरुख खान के सारे कपड़े इस मूवी में करण जौहर ने डिजाइन किए थे. एंड ही एक्चुअली वन द आईफा अवार्ड्स बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर डिजाइनिंग द क्लोथ्स फॉर शाहरुख खान. आपने डेफिनेटली पहचान लिया होगा ये कौन सी मूवी थी. लेकिन अगर आपने नहीं पहचाना तो मैं आपको मौका देती हूं रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से. ये गिव अवे है, जल्दी से मुझे बताइए. आप जीत सकते हैं ड्राई चिली चिकन या फिर चिली बेबी कॉर्न या फिर बटर चिकन या फिर उनका चिकन मक्खन वाला. इन चारों में से कोई भी एक डिश आप वहां जाके अवेल कर सकते हैं इफ यू आर द विनर. बट ओनली एट रिचर्डसन मेकिनी एंड एलन लोकेशन. फ्रिस्को लोकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गिव अवे. सो आप मुझे जल्दी से बताइए वो कौन सी मूवी थी जिसमें शाहरुख खान के कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन करने के लिए करण जौहर ने जीता बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड. 972-235-5555 इज नंबर टू द स्टूडियो.

जी हाँ, क्या यही प्यार है? बहुत सरल सा सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो बड़े बड़े नहीं ढूंढ सके जी, तो ये गाने में कौन सा ढूंढ लेंगे हम। लेकिन बहरहाल आपसे मैंने सवाल पूछा था कि वैसे तो करण जौहर ने बेस्ट डायरेक्टर के लिए, स्क्रीन प्ले के लिए, राइटर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड जीता, एंड दैट फॉर्म फ्रॉम आइफा, एंड दैट मूवी वॉज मोहब्बतें। 2001 में ये अवार्ड जीता था करण जौहर ने। आप सबने जो फोन कॉल्स किए और जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी लकी विनर हैं, वो मैं आपका ना जिस सीक्वेंस में आपका नंबर आता है, नाम कॉल आती है जी, मैं उस सीक्वेंस का नंबर नोट करके मैं आपके फॉर्मूले में डालती हूँ, और आपका आपकी लक ही आपकी विन का फैसला करती है। और हमारी आज की लकी विनर है शाजिया नवीद। शाजिया, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई रेड हॉट चिली पेपर। यू कैन गिव अस अबाउट 2 days टू सेंड योर नेम एंड इन्फॉर्मेशन टू रेड हॉट चिली पेपर, और उसके बाद आपके पास 6 से 7 दिन का टाइम है टू गो टू रेड हॉट चिली पेपर, रिचर्डसन, मिकनी या फिर एलन लोकेशन। इन 3 में फ्रिस्को इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस। आप जाके ड्राई चिली चिकन या फिर चिली बेबी कॉर्न या फिर बटर चिकन या फिर चिकन मक्खन वाला, इन 4 में से कोई भी एक डिश अवेल कर सकती हैं। कंग्रेचुलेशन। और आप तमाम लोग जिन्होंने कॉल किया, सागर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, और फनीश, इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है। सुनते रहिए और बने रहिए। यू माइट जस्ट बी द लकी विनर नेक्स्ट टाइम। दिस इज बॉलीवुड स्पॉटलाइट राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून राइट टाइम विद सुनहरी किरण। स्पॉटलाइट डाली है आज हमने द डायनामिक करण जौहर।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: अपनी roots भी और Texas का swag भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। Royal Sona Masuri Rice हो, नानक पनीर हो या Parle Ji Biscuits, वही देसी taste जो दिल को घर जैसा feel दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
7: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
8: क्या?
7: सैलरी बंद हो जाती है
8: और बिल्स बंद नहीं होते।
7: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
8: मतलब
7: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
5: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
9: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
10: इट्स लॉसन।
9: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
10: इट्स लॉसन।
9: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
11: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
5: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
17: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
18: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

बॉलीवुड स्पॉटलाइट में आज हमने स्पॉटलाइट डाली है करण जौहर पे. राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. ट्यूसडेज के ट्यूसडेज 2:30 to 5 तक आपके लिए बॉलीवुड स्पॉटलाइट लेके आती हूँ. वैसे तो एवरी डे आई एम हियर विद यू 2:30 PM to 5 PM एंड एवरी डे आई ब्रिंग यू अ डिफरेंट फ्लेवर. और आज जी फ्लेवर है करण जौहर. करण जौहर के बारे में आपको बताती हूँ कि 25 May 1972 इज हिज डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अराउंड एक महीने पहले के जो सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, के जो ही उन्हें कहा जाता है वैसे इनफॉर्मली. और फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, टेलीविजन पर्सनालिटी हैं, प्राइमरली हिंदी सिनेमा में काम किया है. और ही हैज लॉन्च्ड ऑफ कोर्स द करियर्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. और खास तौर पे एक टाइम तो आया था कि उन्हें नेपो किड्स का वो यू नो गॉडफादर कहा जाने लगा था, बिकॉज सारे ही स्टार्स के बच्चे जो हैं वो करण जौहर ही लॉन्च कर रहे थे थ्रू हिज धर्मा प्रोडक्शंस प्रोडक्शन हाउस. और कई सारे अवार्ड्स करण जौहर ने जीते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल फिल्म अवार्ड, और इसके साथ 8 दफा फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुके हैं करण जौहर. इसी के साथ ही हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020. एंड एब्सोल्युटली लोडेड डूड हम ये कह सकते हैं. दिस इज बॉलीवुड स्पॉटलाइट. करण जौहर पे स्पॉटलाइट डाली है हमने. इस गाने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स. बने रहिए मेरे साथ. यू आर राइट हेयर ऑन द राइट चैनल. डोंट चेंज इट.

कभी अलविदा ना कहना से आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गाना जी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट हो गया है तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, और इन्हीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको निकलना है एंड यू नीड एन अटर्नी बाय योर साइड हु कैन फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा। ना सिर्फ ये कि वो और उनकी टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन, और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कुछ पे नहीं करना अनटिल यू विन योर केस। तो आपके लिए ये इस स्ट्रेसफुल मौके पर एक राहत का जो है पैगाम है, ये एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट और समवन यू नो और केयर फॉर इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, तो आप उन्हें उमर ख्वाजा का नंबर दीजिए और गिव दम अ कॉल, दैट इज 4693005046 उमर ख्वाजा का नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं विच इज attorneyomar.com। बॉलीवुड स्पॉटलाइट सुन रहे हैं आप, आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण पे ट्यून्ड इन है 104.9 FM फाइन एशिया रेडियो, मेरा और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन।

An absolute anthem for Desi girls all around the world. This is one of my favorite songs as well because it just defines you as a Desi girl. So, aap sun rahe hain Bollywood Spotlight. Aur ye jo Desi girl tha, ye liya gaya tha ji movie Dostana se. Acha, 1998 mein Karan Johar ne movies ka apna direction ka silsila shuru kiya with the movie Kuch Kuch Hota Hai. He was the director and the writer of the movie. Then, after 3 years, he came up with another movie which was Kabhi Khushi Kabhi Gham. एक बार फिर ही वॉज द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द मूवी. उसके बाद 2 साल बाद करण जौहर ने अपना थोड़ा सा जॉनर चेंज किया एंड ही बिकेम प्रोड्यूसर एंड ही प्रोड्यूस्ड द मूवी कल होना हो. गाना मैं इसका आपका आपके लिए प्ले कर चुकी हूँ. ही वॉज द प्रोड्यूसर एंड द राइटर. फिर काल एक बार और करण जौहर की प्रोडक्शन एंड देन ही केम बैक विद अनदर डायरेक्शन. 5 साल बाद उन्होंने एक और मूवी डायरेक्ट की विच वॉज कभी अलविदा ना कहना, जिसका मितवा अभी हम थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं. ये मूवी ना सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट की और लिखा बल्कि इसे प्रोड्यूस भी किया. सो वो कहते हैं ना, ही वॉज द मास्टर ऑफ द मूवी. और उसके बाद ही काइंड ऑफ डाइव्ड इन टू द रोल्स ऑफ प्रोडक्शन मोर देन राइटिंग एज वेल एज डायरेक्शन. तो दोस्ताना, वेकअप सिड, कुर्बान, ये बैक टू बैक 2008 और 2009 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई जो उन्होंने एज अ डायरेक्ट एज अ प्रोड्यूसर की. कुर्बान अलबत्ता उन्होंने लिखी भी थी. एंड देन केम माई नेम इज खान. वंस अगेन ही केम बैक विद हिज डायरेक्टोरियल फिल्म विच वॉज इन 2010 माई नेम इज खान. ये एक छोटा सा आपको रिकैप बता रही थी मैं कि किस तरह उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन को साथ लेके चले. और अब तो खैर वो मोस्टली प्रोड्यूस ही करते हैं, डायरेक्शन बहुत कम करते हैं. तो अब अगला गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं. दिस वन इज टेकन फ्रॉम अनदर वेरी ब्यूटिफुल मूवी, वेक अप सिट.

माई टाइम इक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाई हेल्प करती है इंडिविजुअल्स एज वेल एज फैमिलीज टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. चाहे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग कर रहे हों या आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर यूर प्लानिंग ऑफ ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट यानी कि किसी भी एज ग्रुप में हैं आप, दिस माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, उनसे बात कीजिए, गिव देम अ कॉल इफ यू हैव any questions regarding your investment plans. That number is 469-702-1272. 469-702-1272 is that number, or you can give them visit their website, which is mytimeequity.com. Once again, the website is mytimeequity.com. And the views and opinions expressed in these live announcements, as well as the interviews that we do here on our shows, are paid advertisements and does not necessarily represent the official views of the radio station nor the RJ. Aur isi ke saath ji, Karan Johar ki kuch produced, directed or written behtareen filmon ke kuch behtareen gaane aapke liye pesh kar rahi hoon. Ek film aayi 2009 mein, Saif Ali Khan aur Kareena Kapoor ki. Likha is film ko, produce to kiya करण जौहर ने इस फिल्म को, बट साथ ही साथ अराउंड आप कह लीजिए 2-3 साल बाद उन्होंने ये मूवी लिखी. दिस वाज कुर्बान. फिल्म तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा उसका जॉनर आप कह लीजिए था, बट गाने कुछ फिल्म के बहुत खूबसूरत थे. दिस वन हैपेंड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स. दिस इज कुर्बान हुआ, मतलब आप लिखाई बस चेक कीजिए लिरिक्स.

0: कि तुम शुरू हुए जहां मैं खत्म हुआ कुर्बान हुआ। सुन रहे थे आप कुर्बान फिल्म से गाना, और ये एक टीजर था 2009 में जो करण जौहर ने रिलीज किया, और इसके बाद एक बहुत बड़ी फिल्म, उनकी डायरेक्टेड फिल्म रिलीज होने वाली थी, एंड दैट वाज माय नेम इज खान, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया एज वेल एज प्रोड्यूस किया। सो जब ब्रेक के उस पार हम जाएंगे तो मैं आपके लिए माय नेम इज खान का बहुत ही पॉपुलर ऋचा शर्मा की आवाज में और राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में गाना प्ले करूंगी, विच इज सजदा। फिलहाल आपको बताती चलूं कि जी 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली यू नो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, और अब विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड सेकंड फ्रिस्को लोकेशन दे आर ग्रोइंग। इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक, हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, मतलब सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ मिलने वाला है। कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए या कोई और स्कैन्स कराने के लिए। ओपन 7 days a week from 8 AM till 8 PM. Walk in anytime. Appointment lene ki bhi zarurat nahi. How easy can it get? How much more passionate can they be about your health? So be passionate about your health and check out Texas Primary Care, Lanoxie Medical. Ab hum badh rahe hain break ki taraf. I will see you after the break. Stay tuned.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Bhook lagi, zoro ki bhook lagi.
6: Bhook lagi hai? Ya bas kuch exceptional khana hai?
7: Street style chaats, rich Awadhi flavors, and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
6: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
8: Mamu, देखो क्या हो गया?
9: ओ क्या हो गया?
8: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
9: ओए जर्मन का कमाल है।
8: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
9: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
6: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
10: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
12: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
14: बेटा, 95% आए?
15: हाँ मम्मी।
14: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
16: मेरा?
14: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
16: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
17: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
18: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग, रीराउटिंग।
17: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
18: Look
15: लोकेशन अपग्रेडेड नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ
16: क्यों
15: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ
16: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
18: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
15: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
18: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
19: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
20: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
21: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
22: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM

अच्छा, ऋचा शर्मा के एक दफ़ा मैं कॉन्सर्ट में जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, एंड व्हाट अ पावर पैक्ड परफॉर्मर शी इज़, मतलब पावर हाउस ऑफ वॉइस जो है वो ऋचा शर्मा. और जब ऋचा शर्मा और राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ें एक साथ आईं तो बना ये शाहकार जो आप सुन रहे थे. मूवी जो थी आपके लिए माई नेम इज़ खान से लिया गया. दिस वॉज अ मूवी दैट वॉज डायरेक्टेड बाई करण जौहर. बहुत अरसे बाद करण जौहर ने ये मूवी डायरेक्ट की थी. बॉलीवुड स्पॉटलाइट सुन रहे हैं आप. आज हमने स्पॉटलाइट डाली है करण जौहर पर. दिस इज़ योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मेरा और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन हमेशा ही 104.9 FM. बने रहिए मेरे साथ और stay tuned where you are because I still have so much more that is lined up for you. Every day 2:30 till 5 PM मैं आपके साथ रहती हूँ, all weekdays Monday to Friday. अच्छा जी, अब लेके आई हूँ आपके लिए गिव अवे. और चूंकि हम बात कर रहे हैं करण जौहर की, और मैं आपको ये बता भी रही थी कि शुरुआत उन्होंने डायरेक्शन से की, उसके बाद ही मूव्ड ऑन टू प्रोडक्शन और फिर प्रोड्यूस डायरेक्ट और फिर ही बिकेम अ लार्जर स्केल प्रोड्यूसर. कई सारी मूवीज़ उन्होंने प्रोड्यूस की और उसके बाद 2023 में उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की जो काफ़ी पॉपुलर हुई. अच्छा, अब जो गिव अवे है वो आया है जी इंडिया बाजार की तरफ से, जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है. सबसे पहले तो ये कि आपकी जो भी डेली देसी ग्रोसरी एसेंशियल्स हैं वो सब इंडिया बाजार से पूरे हो जाते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो, फ्रेश प्रोड्यूस हो, स्पाइसेस हो, स्नैक्स हो, एवरीथिंग इज बेस्ट क्वालिटी एट इंडिया बाजार. और ये इंडिया बाजार जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है, आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. एड्रेस सबसे पहले नोट कर लीजिए उनका, 5152 क्वाड्रेंट वे, लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ. अगर आप फोर्ट वर्थ में रहते हैं, केलर में रहते हैं, हर्स्ट या हैसलेट में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंटली ये लोकेशन है. और ये याद रखिए, बिफोर यू विन दैट यू विल हैव टू गो टू इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ एट दिस लोकेशन एंड गेट योर ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम देयर. सो इफ यू कैन मैनेज दैट ट्रिप देन डेफिनेटली यू शुड विन. और आपको मुझे ये बताना है कि आखिरी मूवी कौन सी थी अभी तक की जो करण जौहर ने डायरेक्ट की थी. प्रोड्यूस तो बहुत सारी की हैं, अभी लेटली भी जो लास्ट मूवी उन्होंने प्रोड्यूस की दैट वाज मेरा ख्याल है तू मेरी मैं तेरा, और उसके बाद अक्यूज्ड एक फिल्म प्रोड्यूस हुई चांद मेरा दिल. लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ विच वाज द लास्ट मूवी दैट ही डायरेक्टेड एज अ डायरेक्टर, व्हाट वाज हिज लास्ट मूवी और कौन से ईयर में वो मूवी उन्होंने डायरेक्ट की थी. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

जी, मैंने तो आपकी सहूलत के लिए उसी फिल्म का गाना भी लगा दिया था कि अगर वैसे नहीं तो वैसे पता लग जाए आपको. द लास्ट मूवी दैट वॉज डायरेक्टेड बाय करण जौहर वॉज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. 2023 में, 2023 वॉज द ईयर जिसमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई थी, और उन्होंने डायरेक्ट की थी एज वेल एज ही वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी. बहुत पसंद किया गया इस मूवी को ऑफकोर्स, और बहुत अरसे बाद हमें धर्मेंद्र जी देखने को मिले इस मूवी में. साथ ही साथ शबाना आजमी थी, इफ आई एम नॉट I'm not mistaken, शबाना आजमी थी. आजा जी, आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स एंड फॉर गिविंग मी द राइट आंसर. नीलम, रिचा, राजेश, जारा, शिखा, रीमा एंड मेनी मोर. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं राजेश पिल्लाई. राजेश, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो टू इंडिया बाजार लोकेटेड ऑन फोर्ट वर्थ 5152 क्वाड्रेंट वे, और आपको वहां जाके अपना गिफ्ट हैम्पर अवेल करना है. सो कंग्रेचुलेशंस, एंजॉय शॉपिंग एंड एंजॉय द गिफ्ट हैम्पर. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. फनीजे इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड.

अच्छा, आयरनी की बात है, करण जौहर बनाते सारी शुरू में उन्होंने सारी लव स्टोरीज बनाई और लव स्टोरीज ही बेची और फिर ये मूवी प्रोड्यूस की, विच वॉज आई हेट लव स्टोरीज. इमरान खान थे इसके अंदर और ये गाना आप सुन रहे थे, बट आई डोंट थिंक ही बिलीव्स इन दैट. नोबडी हेट्स लव स्टोरीज, एवरीबडी लव्स लव स्टोरीज. अच्छा जी, अब एक और चीज जो मैं आपको बताने लगी हूँ, विच यू विल एब्सोल्युटली लव, एंड दैट इज तंदूरी फ्लेम, जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है. अगर आपका आज खाना बनाने का दिल नहीं है या अचानक से कोई मेहमान आ गया और ओहो अब खाना कौन पकाएगा, इतनी जल्दी कैसे पकेगा, लेकिन खाना तो घर जैसा ही परोसना है, तो फिर तंदूरी फ्लेम से बेहतर कोई जगह नहीं है जी. तमाम आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि तंदूरी प्लैटर्स, रिच करीज, वेलवेटी रिच करीज, हॉट फ्रेश नान्स, मतलब जो भी आपको चाहिए तंदूरी फ्लेम आपको प्रोवाइड कर सकता है. वहां बैठ के खाइए, टेक अवे कीजिए, केटरिंग करवाइए, एवरीथिंग तंदूरी फ्लेम इज हैव फॉर यू. दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड, जरूर विजिट कीजिए. दिस इज योर स्टेप टू घर का खाना. और आई जी, ये बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने स्पॉटलाइट डाली है करण जौहर पे. आप सब इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स करके मुझे मतलब बता रहे हैं कि आपको कितना मज़ा आ रहा है ये मज़े मज़े के गाने सुन के. करण जौहर के बनाए हुए गाने हैं ही बहुत खूबसूरत. सफ़ी, दिस वन इज़ गोइंग आउट टू यू, एंजॉय.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings or bridal jewelry per buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price per. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो।
15: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
16: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
15: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
16: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
12: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181, मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
15: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
16: कहाँ, फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
12: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
17: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
18: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
19: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
18: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
19: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
20: इन प्लेनो।
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
21: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
22: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
23: कितने आदमी थे?
24: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

अराउंड 40-50 के लगभग मूवीज प्रोड्यूस कर चुके हैं करण जौहर और सिलसिला अभी जारी है. आप सुन रहे थे उनकी पहली मूवी विच इज़ कुछ कुछ होता है से, ये आइकॉनिक नंबर जो कि सारे यंगस्टर्स की, वो कहते हैं ना, दिल की धड़कन बन चुकी थी. तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है. सो दिस इज दैट आइकॉनिक कुछ कुछ होता है. करण जौहर ने हमें कुछ बहुत ही आइकॉनिक रोल्स और आइकॉनिक मूवीज और आइकॉनिक डायलॉग्स एज वेल एज आइकॉनिक गाने दिए और कुछ बड़े ही कमाल के रीमिक्स भी दिए. तो सिलसिला उनके ये दिए हुए गानों का, फिल्मों के गानों का जारी है. एक एपिसोड इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता. सो नेक्स्ट वीक विच इज ट्यूजडे वन मोर टाइम ऑन बॉलीवुड स्पॉटलाइट लेके आऊंगी आपके लिए करण जौहर पार्ट टू, विच इज जिसमें हम मजीद उनके फिल्मों के गाने प्रोड्यूस कर आपके लिए प्रेजेंट करूंगी, बिकॉज देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स एंड आई डोंट वांट टू बी डू इनजस्टिस टू such beautiful songs. अच्छा जी, अब आगे बढ़ रहे हैं. This one is taken from another beautiful movie that was Agnipath. Agnipath का remake बनाया करण जौहर ने, और of course the original Agnipath cannot be touched. But this was not bad.

0: तुझे देखकर किसी की याद आती है। किसकी पता नहीं, किसकी बस याद आती है। मजहर को क्यों मारा?
1: मजहर को शांताराम ने मारा।

स्पेनिश ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं जी द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी के एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड एंड गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विद डायमंड परचेजेस. तो डायमंड परचेज कीजिए, अपना सोना एक्सचेंज कीजिए और $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम हासिल कीजिए. इसी के साथ 9 कैरेट से ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन होगा. सो टर्न योर गोल्ड इन टू समथिंग न्यू, ब्यूटिफुल एंड टाइमलेस ओनली एट तनिष्क USA. सम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लेकिन जरूर चेकआउट कीजिए. यू माइट जस्ट एंड अप लाइकिंग समथिंग. और जो पुराना आपके पास चीजें पड़ी हैं वो नई खरीद के कुछ रिफ्रेश भी कीजिए, एक्सचेंज भी कीजिए, फायदा भी हो और हासिल भी हो. दिस इज तनिष्क ज्वेलर्स. और बस अराउंड मेरे पास 2-3 गाने अभी, 4:30 तक हम ये सेगमेंट करेंगे बॉलीवुड स्पॉटलाइट एंड 4:30 ऑनवर्ड्स मेरे पास आपके लिए है वेदर, ट्रैफिक एज वेल एज गोल्ड प्राइस अपडेट, करेंसी अपडेट, जो कि सुनहरी किरण पे आपको हमेशा ही सुनने को मिलता है. एवरी डे 4:30 से 5 PM डेडिकेटेड होता है हमारे फाइनेंसिस के लिए, वेदर के लिए, ट्रैफिक के लिए. सो बने रहिए मेरे साथ विद दिस नेक्स्ट नंबर. वी आर मूविंग ऑन विद our afternoon drive times Bollywood spotlight, जिसमें हमने spotlight डाली करण जौहर.

जी हाँ, ना सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे हैं करण जौहर, बल्कि बहुत ही पॉपुलर होस्ट एज वेल एज कुछ फिल्मों में उन्होंने, जैसे सुभाष घाई करते थे ना अपनी फिल्मों में एक एंट्री दिया करते थे, वैसे ही करण जौहर ने भी एंट्री दी। उससे पहले एक फिल्म में काम भी किया, अगर आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे याद हो तो, शाहरुख खान के दोस्त बने थे। बट चलो, जो जो वो बेहतर कर सकते थे उसी पर उन्होंने फिर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। तो एक जो है आपको बताती हूँ कि 2005 में जब उनकी फिल्में हिट हो रही थी, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, कुछ कुछ होता है, कल होना हो के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके थे, ऐसे भी एक सिलसिला आया कॉफी विद करण का, और कॉफी विद करण के लिए उन्होंने एक नई चीज के लिए अवार्ड जीता, एंड दैट वाज बेस्ट एंकर। नॉमिनेशन पाई और उसके बाद इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स के लिए ही वन द बेस्ट एंकर टॉक शो होस्ट अवार्ड फॉर कॉफी विद करण 2005 में भी और 2007 में भी। आपने डेफिनेटली कभी ना कभी कॉफी विद करण तो देखा ही होगा, कोई एक एपिसोड ही देखी होगी, अगर पूरा सीजन नहीं देखा मैं मान ही नहीं सकती कि हम में से कोई एक शख्स है जिसने कॉफी विद करण नहीं देखा। और अगर आपने नहीं देखा तो आप मुझे कॉल करके जरूर बताइए कि आपने क्यों नहीं देखा, और मतलब आपको वो कहते हैं ना सलाम है कि आपने कॉफी विद करण नहीं देखा। बट 7 सीजन अब तक कॉफी विद करण के आ चुके हैं, और जब मैं इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कब शुरू हुआ कॉफी विद करण और अब तक अब कहां पे प्ले हो रहा है, क्योंकि बीच में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था और टीवी से हटा दिया गया था और उसके बाद वो वेब प्लेटफॉर्म पे चला गया था। बट दिस इज देयर इज सो मच कॉन्ट्रोवर्सी ऑलवेज अराउंड केजीओ।

जी धर्मिष्ठा, आपको सलाम है। मैंने प्रॉमिस किया था कि सलाम आपको ज़रूर भेजूंगी। आपने कभी कॉफ़ी विद करण नहीं देखा, कुछ रीलें शायद आपकी नज़र से गुजर गई, लेकिन कोई सीज़न, कोई एपिसोड, कोई अपने फेवरेट एक्टर की भी एपिसोड आपने नहीं देखी। सो थ्री चेयर्स टू यू। ऑल दो जैसे हमने कहा कि इट कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कॉफ़ी विद करण के इर्द गिर्द घूमती रहती थी बिकॉज ऑफ इज क्रूशल एज वेल एज क्रिटिकल एज वेल एज समटाइम्स बिलो द बेल्ट questions, but Coffee with Karan is still running. आपको बताते चले जी, this was a talk show जो फिल्म मेकर और टेलीविजन पर्सनालिटी करण जौहर ने प्रोड्यूस किया और धर्मेटिक एंटरटेनमेंट के अंदर धर्मा प्रोडक्शन से अब उन्होंने धर्मेटिक एंटरटेनमेंट कर लिया है। वो कहानी भी, वो कहते हैं ना, ये किस्सा कभी और सही, तो वो किस्सा हम कभी और करेंगे। और डेब्यू हुआ इस कॉफी विद करण का 19 November 2004 में, और अब तक जो है 8 सीजन्स आ चुके हैं ओवर द स्पैन ऑफ 18 ईयर्स। और अब जो है लेटली मेरा ख्याल है कि डिज्नी या फिर स्टार वर्ल्ड पे आ रहा है, या पता नहीं किस पे अब स्ट्रीम कर रहा है, डिज्नी हॉट स्टार पे आजकल स्ट्रीम कर रहा है, बिकॉज मेरा ख्याल है सारे टीवी चैनल्स ने करण जौहर को भगा दिया कि भाई आप रहने दें, हमारे टीवी चैनल पे मत आइए। तो अब वो प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गए। एक छोटा सा किस्सा कॉफी विद करण का ये भी। और अब इस आखिरी गाने के साथ इस सेगमेंट का इख्तिताम कर रहे हैं। अब जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो आई हैव यू नो वेदर फॉर यू, ट्रैफिक फॉर यू, एज वेल एज करेंसी अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट, सो मच मोर इज लाइंड अप फॉर यू। दिस इज द लास्ट सॉन्ग फॉर द सेगमेंट बॉलीवुड स्पॉटलाइट राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। अगले ट्यूजडे वी विल कंटिन्यू विद द करण जौहर पार्ट 2।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: Or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
5: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
4: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
3: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, Makini, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया।
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया।
11: मुझे भी नहीं आया।
13: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.sanadainc.com today.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभाल लेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio. Love.

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. आधा घंटा मेरा आपके साथ on afternoon drive time with सुनहरी किरण में मौजूद है और ये टाइम है आपको कनेक्ट करने का विद उरा डेट रिलीफ सेगमेंट. हमारे साथ मौजूद हैं उरा डेट रिलीफ के अमन जी जो हमें बताएंगे कि उरा आपको कैसे हेल्प कर सकता है. देयर डेट रिलीफ प्रोग्राम्स, हाउ कैन दे हेल्प यू एंड मेक यू और यू नो गाइड यू टू मेक द राइट डिसीजन एंड चॉइसिस फॉर यू. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. गुड afternoon Aman ji, how are you doing?
1: All good. Fanisha sunne wale sabhi listeners ko Ura aur Aman ki taraf se namaskar. Aaj hai 23rd of June. Bas ek agla Tuesday aur phir ye mahina khatm, yani ki 30 June ko ye mahina khatm hone ja raha hai agle Tuesday. Aur lekin is mahine jo galti kar li hai, ab yahi kahunga ki ab agle mahine mat kijiyega. Wo ye ki is mahine jo aapne credit card ki minimum payment bhari hai, wo agle mahine na bhariye kyunki क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट से क्रेडिट कार्ड उतरते नहीं, सिर्फ टाइम पास होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड सच में खत्म हो जाएं, उतर जाएं, डेट फ्री हो जाएं, तो उरा को कॉल कीजिए मिनिमम पेमेंट करने से पहले. क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट आपको 40% इंटरेस्ट देना पड़ता है, तब जाकर वो उस महीने का टाइम पास होता है. तो अगर आप 40% इंटरेस्ट भरते रहेंगे तो क्रेडिट कार्ड अगले 30 से 40 साल तक नहीं उतरेंगे. क्रेडिट कार्ड पर्सनल हो, बिजनेस के हों, स्टोर के हों, आपके हों, वाइफ के हों, बच्चों के हों, किसी के भी क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं. उन सब में से अगर आप डेट सेटलमेंट कराना चाहते हैं, उनको माफ करवाना चाहते हैं अप टू 50%, 55%, 60%, वो डिपेंड करता है कार्ड के ऊपर कि कितना आपका माफ हो सकता है. तो अगर आप चाहते हैं आधे से ज्यादा माफ हो जाए तो उरा को कॉल कीजिए. उरा इसके साथ साथ क्या करता है आपके लिए कि आपका कोई पर्सनल लोन है उसको भी आधे से ज्यादा माफ करवाया जा सकता है. गाड़ी जो रीपोजेस हो गई, जो बैंक उठाकर ले गया बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, या टोटल हो गई, इंश्योरेंस ने क्लेम नहीं दिया, उसको भी माफ करवाया जा सकता है. सिंपल कॉल कीजिए. मिनिमम पेमेंट आंख बंद करके भरते रहेंगे तो आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और वो कार्ड उतर भी नहीं रहे. सो जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555. और हमारी वेबसाइट है ura.org. अगर नंबर ना भी लिख पाए हो तो फन एशिया रेडियो तो आप रोज सुनते हैं अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश के साथ. अमन जी का नंबर भी ले लीजिए. थैंक यू.
0: थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून अमन जी. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.

0: org. अगर नंबर ना भी लिख पाए हो तो फाइनेंशिया रेडियो तो आप रोज सुनते हैं अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश के साथ. अमन जी का नंबर भी ले लीजिए. थैंक यू.
1: थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून अमन जी. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.

And it is time now to give you the weather update. आज है जी ट्यूजडे जून द 23rd और स्टूडियो में हो रहा है इस वक्त 4:42 PM. सिटी ऑफ मिकिनी में है 90 degrees. However, it feels like 97 right now. पार्टली क्लाउडी सा समा है, दिन रहा पार्टली सनी, कुछ यू नो 20% चांस ऑफ शावर्स भी रहे, हेयर एंड देयर कहीं कहीं बूंदाबांदी सी हुई, बट नॉट टू मच. हाईज इन दी लोअर 90s. हाउएवर, जैसे मैंने कहा, फील्स लाइक ऑफ कोर्स 97. और बाहर काफ़ी गर्मी है, हालांकि मौसम बादल आए हुए हैं, खूबसूरत सा है. और शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी विद अ 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म. ह्यूमिड होगा विद लोज इन दी अपर 70s. इसी के साथ आज का पोलन काउंट इज 4.8, विच इज of course better than 8 and 9. Grass and oak is what is bothering where pollen is concerned. UV index is extremely high, which is 9 and 10. So please dhyan rakhiye, if you're planning to be outside, keep yourselves hydrated, which is very important. Nahi to bada shadid sar mein dard hoga aapke. Aur sunrise aaj ka hua 6:18 subah, 6:18 AM, jabki aaj ka sunset hoga 8:39 PM. That was the weather forecast for you. और इस गाने के बाद लेके आऊंगी आपके लिए करेंसी अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट, सो मच मोर आई स्टिल हैव लाइंड अप फॉर यू.

0: हाय गाइस,
1: और अगर आप ये चांद बालियां खरीदना चाहते हैं और खास तौर पे सोने में खरीदना चाहते हैं, वैसे भी खरीदना ही चाहते हैं, तो करेंसी की अपडेट जाननी जरूरी है कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो यूरो जी आज इस वक्त, विच इज ट्यूजडे June 23rd 4:45 PM, यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.87, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.75 विद रिस्पेक्ट टू $1. इंडियन रुपी 95.05 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.42 पे स्टैंड कर रहा है. नेपालीज रुपी 152.15 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.57 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर $1. एंड बांग्लादेशी टका 122.99 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर $1. और अब जब इस गाने से हम वापस आएंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी क्या गोल्ड प्राइस अपडेट.

एंड विद दैट इट इज टाइम फॉर गोल्ड प्राइस अपडेट. इस वक्त जी गोल्ड प्राइस पर आउंस है अकॉर्डिंग टू goldprice.org $4,110.94. जबकि गोल्ड प्राइस पर ग्राम राइट नाउ इज $132.17. तो कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $2.36 की कमी देखने में मिली, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $73.41 की कमी देखने में मिली. दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू व्हेयर योर फाइनेंसेस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. जानना चाहते थे आप सोना कितना सोना है.

ट्रैफिक की अपडेट देने का टाइम आ गया है जी. आपको एक मेजर इंसिडेंट नजर आ रहा है और उसके साथ कुछ डिसेबल्ड व्हीकल्स. सबसे पहले तो जी डिसेबल व्हीकल एट IH 30 टूवर्ड्स फर्ग्यूसन रोड, जिसकी वजह से वन लेन इज ब्लॉक्ड. वेस्ट बाउंड की ये रोड है, वन लेन इज ब्लॉक्ड और सिवेरिटी तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि रश आवर है और रश आवर में एक लेन भी ब्लॉक हो तो इट कैन रियली बी वेरी स्ट्रेसफुल और वेरी अनोइंग एक्चुअली. और उसी के साथ एक कोलिजन हमें नजर आ रहा है 75 पे एट बेल्ट लाइन रोड साउथ बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन. द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. और अभी कोई अराउंड 10 मिनट पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, तो आई एम श्योर लॉट्स ऑफ बैकअप विल बी बिल्डिंग अप एट दिस स्पॉट. देर इज अनदर डिसेबल्ड व्हीकल एट 35 ईस्ट टूवर्ड्स हंडली, विच इज नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से two lanes are blocked including an exit lane. So that was all that I had for you where traffic is concerned. Agar aap yahan pahunchne wale hain to please be vigilant, be careful and specially driving ke waqt bahut zyada khyal rakhiye. Ye time hota hai rush hour ka, everybody wants to be somewhere quickly.

And that is all the time that I have with you today. It is time for my wrapping up. Thank you so much aaj ki dopahar mere sath connected rehne ke liye. Kal ek baar phir hazir hungi. Kal hai Wednesday. So 2:30 p.m. till 5 p.m. I will be here like every weekday. Afternoon drive time with Sunehri Kiran leke. Aur start karenge kuch romantic melodies se. 3 se 4 tak aap balki 3 se 3:30 tak kuch Pakistani pop music. 3:30 se 4 tak aapke liye leke aungi. The top 10 trending dramas of Pakistan. Jo aap aur main सारे देखना पसंद करते हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिए. वो लिस्ट आपके लिए कल 3:30 से 4 के दौरान मौजूद रहेगी. और फिर 4 बजे से 5 बजे तक वी विल प्ले सम ब्लॉकबस्टर म्यूजिक. देयर इज सो मच दैट इज लाइंड अप फॉर यू एवरी डे ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. आई विल सी यू टुमारो.

15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi was selected to the senior India men's T20 team. Congratulations, Vaibhav bhaiya. I think you deserve everything that you're getting your hands to, and even things that are not there yet. I think tum itne kamyab ho yaar, kya hi bolu. Matlab, I have played cricket. I've played cricket up until under 16, under 19 as a Punjab batsman for under 19, under 16, and for my school. But, you know, this guy is something special. Matlab, aisa anokha khiladi. हमें देखने को मिला. आई थिंक दिस इज आवर ब्लेसिंग. ये हमारे को थैंक यू करना चाहिए वैभव सूर्यवंशी का कि यार इतना कमाल का क्रिकेट जो हम कभी सोच भी नहीं सकते. दिस गाय इज डूइंग दैट. 11 डिलीवरीज ही स्कोर्ड अ 50, जिसमें सिर्फ एक बॉल जो थी वो जीरो थी, बाकी सारी बॉल्स इधर अ सिक्स और अ बाउंड्री. देन द ट्रेमेंडस 94 इन जस्ट 29 डिलीवरीज. आई मीन क्या कर रहा है यार ये लड़का. आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल योर ओपिनियन अबाउट दिस सूर्यवंशी क्रेज. विच एक फिल्म आई थी सूर्यवंशी, एंड उस टाइम पे मुझे लगता था कि सूर्यवंशी इज अ वेरी स्पेशल नेम. आई थिंक यू नो दैट नेम वॉज स्पेशल टू मी बिकॉज ये होना था हमारी लाइफ में कभी ना कभी. बट आई एम ओपनिंग द लाइन्स फॉर यू ऑल. 972-235-5555. आई रियली वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्रिकेटिंग लेजेंड जो कि शैटर कर चुके हैं 36-year-old रिकॉर्ड हेल्ड बाय सचिन तेंदुलकर टू बिकम द यंगेस्ट प्लेयर एवर नेम्ड टू द इंडियन स्क्वाड. And Sachin was 16 and I think some days, and this guy is 15 and 78 days or something like that. But I want to hear from you, the people of DFW, the listeners of Fun Asia, कि भाई ये जो prodigy आई है इसका क्या करना है, आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है with a batsman like Vaibhav Suryavanshi. 972-235-5555 is the number to the studio.

0: भी तू लगा। अर्थी से मुर्दा भी उस वक्त खड़ा हो गया जब पीछे से रोती हुई पत्नी ने कहा, नहीं पता है मैंने कभी भी उसको कोई तकलीफ नहीं दी। मुर्दा भी छलांग मार के भागने लगा। भैया आया ब्रेक के बाद वापस।
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Aur sunao, house hunting kaisi chal rahi hai?
4: Kya bataun? It's hard to find a realtor who offers great service and also cash back at closing.
3: You need to call Ajay Prabhu of Beam Real Estate. He's an experienced realtor who provides exceptional service plus cash back at closing. Ajay reviews each house thoroughly and shares all the pros and cons and negotiates the best price and builder incentives. Just visit ajayprabhu.com and see why people are raving about him.
5: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
4: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
8: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
11: अब पंजाबी आ गया।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन your first visit.
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
13: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me. It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
16: छोटा सा मेरो मदन गोपाल। DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
17: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

कोई भी पति अपनी पत्नी को उसकी गलतियों पर नहीं डांटता, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है, बल्कि उस महापुरुष ने बवाल से बचना सीख लिया है, शांति से जीवन जीने का मार्ग खोज लिया है, और इस तरह वो गृहस्थ में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।

मेरे सारे मोक्ष प्राप्त किए हुए दोस्तों को नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, किमचू, कैसे हो जी, सब ठीक ठाक। मोक्ष प्राप्त करने का सिंपल सा तरीका है, देखो हमारे को पता है कि उन्होंने मानना तो वैसे भी नहीं है, इसलिए आप मना के करो भी क्या, हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ मैन।

5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक बज चुके हैं जी, शाम के 5:30 ऑलमोस्ट, और 5:30 बजे हमारे पास एक बंदे आएंगे खास, जो बताएंगे आपको कि आपकी शिपिंग सॉल्यूशंस, चाहे बिजनेस हो या घर हो, घर मूव करना हो, गाड़ी मूव करना हो, व्हाटएवर यू वांट टू मूव आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, दे विल मूव दैट ऑल। बाकी आपको बॉडी मूव करनी हो तो वैसे ही जरूरी है, थोड़ा सा डांस, थोड़ी सी वॉकिंग, थोड़ा सा रनिंग, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अब बता कौन रहा है जो बिल्कुल भी नहीं करता है। अक्सर अच्छे डॉक्टर वही होते हैं जिनको इलाज पता जरूर होता है पर खुद पे जो लागू नहीं करते हैं। भैया, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय वन पर्सन जिनको आपको लाइफ में लागू करना है। इफ यू एवर आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल, अटर्नी ओमर ख्वाजा उनका नाम है, एंड द वेबसाइट टू डू सो इज attorneyomar.com, वेयर यू विल फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर, वैसे तो ये मुसीबत आप तक कभी ना पहुंचे, बट इफ यू आर इन्वॉल्व्ड, नो समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद दिस, क्योंकि इंश्योरेंस से डील करना एंड टू डील विद योर मेडिकल बिल्स एंड ऑल ऑफ द अदर प्रोसेस इज रियली अ हेडेक, but if you get somebody like attorney Omar on your side, they take the headache away from you, so make sure you check them out. Let's take you to the next gana right here on Fun Asia, and thodi der mein giveaway coming up from Panj Tara.

0: टेकन फ्रॉम द मूवी जिसका जी बहुत होने वाला है, चर्चा हो रहा है। वेलकम टू द जंगल। अक्षय कुमार के साथ साथ बहुत लंबी स्टार कास्ट है। दिस इज द ब्रांड न्यू ट्रैक दैट इज कॉल्ड तेरा पैसा मेरा पैसा। चलो ये भी ठीक है। मेरे घर पे मेरे वो आए साला साहब ना, तो बीवी ने पूछा यार भाई को खाना पूछ लो। मैंने कहा हाँ जी साले साहब, खाना खा के आए हो या घर जाके खाओगे? ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, आप कहीं ना जाइए।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: Beta, 95% eye?
9: Haan, mummy.
8: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
8: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens, and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings, and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: It's Lawson.
12: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
13: It's Lawson.
12: Daddy, what is the law?
14: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
15: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
16: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
15: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
16: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में? सब संभाल लेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर।

0: वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर

वंडरफुल ट्रैक देयर, एंड इस गाने को लगाने की वजह ये थी जी कि आज राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। अब कईयों को ये गाना बहुत पसंद है, कईयों तो हमारे पंजाबी होते हैं ना, कई वो कहते हैं की लाया ये कुछ होर ला, तो वो भी आ रहा है जी। दिलजीत का भी गाना आने वाला है, क्योंकि दिलजीत की तो बड़ी गल बात है जी, इनकी प्रशंसा तो अब अमरीका भी कर रहा है जी, और LA डे है जी, लॉस एंजलिस डे बना दिया दिलजीत दोसांझ जी के नाम पे, एंड दैट इज़ ऑन January समथिंग, आई थिंक एन अचीवमेंट दैट इज़ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस, चाहे जहाँ मर्जी से हो, पंजाब साउथ इंडिया डजेंट मैटर, एक इंडियन को ये खिताब मिले, और स्पेशली जब यहाँ पे इतनी गर्मा गर्मी हो रखी है इंडियंस को लेके भैया, तो हमारे इंडियन जो हैं बड़े काम के लोग हैं, वैसे देखा जाए तो सारे टॉप CEOs हमारे इंडियन हैं, उसके ऊपर बंदा बिंदास मार बिंदास ये भी इंडियन है, और क्या चाहिए। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय AG फिनटैक्स। अगर आपने अभी तक अपने टैक्सेस नहीं करवाए हैं तो भैया यहाँ जाके करवा लीजिए, क्योंकि अंकल सैम जो है वो छोड़ते नहीं है किसी को, और जो बैक टैक्सेस होते हैं वो बाद में आपको तंग करते हैं, इसलिए डोंट लेट इट लैग फॉर टू लॉन्ग, गेट विद देम ऑन द वेबसाइट agfintax.com। आलो जी, इंदिरा जी की वाइफ जी, आपके लिए ये गाना। इस गाने में ना दिलजीत जी कह रहे हैं, जे तू नची ना साडे ना सोनिए, मैं लहंगे ते शराब गेर दूं डोल दूं। तो मैं जिनका फ़ोन आया था, मैंने उनसे पूछा कि आपके लहंगे पे अगर शादी पे शराब गिर जाए तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, कहते नहीं करेंगे। मैं कहा ले फिर ऐसी शादी पे ही जाना चाहूँगा मैं भी, जहाँ पे कोई गुस्सा ना करे, सब प्रेम से रहें। हाँ, एक अंकल जरूर होते हैं जो लड़ाई सारी करवाते हैं और कहते हैं मैं तो चाहता हूँ सब मिल के रहें,

दिलजीत पाजी का गाना, और दिलजीत के नाम में ही दिलजीत है जी, तो इन्होंने तो बनता है ना, इनका दिल जीतना नहीं बनेगा तो किसका बनेगा, रमेश वरम का नहीं ना, दिलजीत का ही बनेगा जी। आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे जी राज बब्बर साहब का बर्थडे एज वेल, बॉर्न ऑन द 23rd of June 1952, हिंदी पंजाबी फिल्मों में बहुत सारा काम, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते हैं जी, पॉलिटिशियन है वहाँ से, 3 times मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड 2 time मेंबर ऑफ द राज्यसभा, स्टेट प्रेजिडेंट ऑफ यूपी कांग्रेस कमेटी, एंड टुडे मार्क्स हिज बर्थडे, जिन्होंने बहुत सारा काम किया जी, काफ़ी फिल्मों में रीना रॉय के साथ इनका जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर ट्रेनिंग इन दिल्ली, एंड उसके बाद बी आर चोपड़ा की फिल्म आई थी इंसाफ का तराजू, उसके बाद तो बस गाड़ी बढ़ गई जी और चलती रही, और फिर आई चंद परदेसी 1980, फिर मारी द दीवा 1989, लॉन्ग द लिश्कारा, दिस वॉज ऑन द पंजाबी साइड, एंड बहुत सारी फिल्में हिंदी में भी बाद में नजर आईं, जैसे कि साजिश, आंखें, दलाल, द गैम्बलर, अंदाज, याराना, बरसात, जिद्दी, गुंडागर्दी, दाग द फायर एंड इंडियन, दैट वॉज इन 2001 द लास्ट वन दैट वी सॉ हिम इन अ बिग रोल, उसके साथ टेलीविजन सीरीज में आते रहे, बट टुडे वी रिमेंबर मिस्टर राज बब्बर, मतलब इनके नाम में ना एक गब्बर वाली फील थी, ऑल्दो नथिंग टू डू विद गब्बर, बट बब्बर एंड गब्बर राइम करते थे, तो मुझे गब्बर सिंह और बब्बर सिंह में थोड़ा समझ नहीं आता था कौन सी बात कर रही मम्मी, और मेरी मम्मी तो ऐसी थी कि गर्मियों में ना उन्होंने मेरे को, स्पेशली जब गर्मियों की छुट्टियाँ होनी, उन्होंने ऐसे उठाना कि सुन तेरे से मिल लेना बाहर कोई लड़की आई है, बाहर जाके देखना, तो भैया बाहर जाके देखना तो अखबार वाला बिल लेके खड़ा होता था, हाँ जी भैया 320 रुपये। इसी के साथ आ गया जी गिव अवे फ्रॉम पंज तारा, एंड दे आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय देयर छोले भटूरे, मैंने खाए हुए हैं, बड़े जबरदस्त बनाते हैं, कल मुझे एक कॉलर का कॉल आया था जो जाके खा के आए थे, कह रहे हैं जी बड़ी वाकई मजेदार है, और या फिर आपको छोले भटूरे नहीं खाने, यू आर मोर ऑन द हेल्दी साइड, तो आप ना वो आलू वाला नान खा लीजिएगा, और उनको बोलना बटर ना डालें, क्योंकि उससे फिर आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो आपको तो अच्छी टेस्ट नहीं खाना ना, तो उसको साइड पे करवा लीजिएगा, और जो भटूरा खाना होगा उस पर थोड़ा सा ना नैपकिन से टप टप टप कर लीजिएगा, उससे आपकी गिल्ट ज़रूर दूर हो जाएगी। अब अगर आपको ये जीतना है तो मुझे सवाल का जवाब देना होता है, लाइक टू आस्क क्वेश्चन एंड गेट सम आंसर्स, क्योंकि टीचरों ने मेरे से सारी उम्र सवाल पूछे, मैं जवाब देता गया, अब मेरी बारी आई है, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा और आप मुझे जवाब देंगे और असूल भी मेरे होंगे जैसे टीचरों के होते थे, मेरा असूल है कॉलर नंबर 3 जो मुझे देगा सही जवाब, क्यों मैं टीचर हूँ, मेरी मतलब मैं आरजे हूँ, मेरी मर्जी यहाँ पे चलती है। ये पूछने लगा हूँ जी मैं आपसे कि फिल्म का नाम आप बताएंगे, जो कॉलर नंबर 3 देगा सही जवाब इस गाने की फिल्म का, उसको मिलेगा 5 तारा का छोले भटूरे, या फिर नान बटर ना डाले तो ना ही जाए। नेम ऑफ द फिल्म दिस गाना इज निकालिंग फ्रॉम,

0: गाना लगा थी मेरे पास कॉल की लाइन लग गई। अरे कौन कौन है रे बाबा मेरे साथ करते हैं इनसे बात रे। गुड इवनिंग रे, कौन बोल रहा है रे?
1: हाँ जी मैं वृषाल बात करता हूँ।
0: वृषाल बाबा क्या हाल है, सब ठीक है?
1: सब ठीक सब ठीक।
0: अच्छा बहुत बढ़िया। अब ये बताएं कि आपको घर पे मोक्ष मिल गया कि नहीं अभी तक?
1: मिल
0: गया ना। हाँ मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता, मोक्ष उसको मिलता है जो हम हस्बैंड होते हैं ना, हमें आदत नहीं है हम बीवी को गलतियां निकालें, और हम निकालना भी नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरपोक हैं, इसका मतलब ये है कि इस साधना को करते करते करते करते हम इतने संतुष्ट हो चुके हैं कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो गई है। अच्छा आप बताइए सर, फिल्म का नाम?
1: फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट।
0: एयर लिफ्ट कह रहे हैं हमारे वृषाल भाई। देखते हैं भैया आप दुरुस्त हो कि मेरे दूसरे कॉलर दुरुस्त हैं। गुड इवनिंग फनेशिया, कौन बोल रहा है सर?
1: राजेश।
0: राजेश सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है, आप कैसे हो?
0: कोई आगे पीछे है तो नहीं?
1: पीछे बेटी है।
0: अच्छा पीछे बेटी है, ठीक है। बेटी को मेरा नमस्ते। हेलो बेटी, अब ये बताओ राजेश, फिल्म का नाम याद है?
1: एयरलिफ्ट।
0: एयरलिफ्ट। आपकी एनिवर्सरी कब होती है?
1: बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया
0: अरे देखो
1: आपने।
0: फिल्म का नाम याद है, एनिवर्सरी की डेट याद नहीं है आपको? चलो आज मैं आपको जाने देता हूँ, कोई बात नहीं। लेट्स सी हु डू वी हैव नेक्स्ट विद अस ऑन द एयरवेज ऑफ फनेजिया। गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहा है?
2: हाय गुड इवनिंग, दिस इज नीलांग।
0: हाय क्या नाम बोले आप?
2: नीलांग।
0: नीलांग, मैं कहा नीलाम, मैं कहा ऐसा मत करना यार, ऐसी कोई हमें नौबत नहीं है। ये नीलांग भाई कैसे हैं, सब ठीक है?
2: सब गुड, आपकी मेहरबानी सर।
0: अरे हमारी कौन सी मेहरबानी, मेहरबानी उस ऊपर वाले की यार जिसने हम सबको बना दिया, और मेहरबानी उसकी जिसने आपको बिल्कुल ठीक ठाक रखा, और मेहरबानी उसकी जो आपको हंसने का मौका दे रही है। क्या नाम है आपका? नीलांग बोले ना, नीलांग। फिल्म का नाम
2: एयरलिफ्ट।
0: एयरलिफ्ट। नीलांग एलन जा सकते हो?
2: एलन यस जा
0: जाने
2: सकते हैं।
0: जाने देती है ना भाभी? अच्छा
2: बिल्कुल
0: जाने देती है, फिर होल्ड करो। आप जीत चुके हैं जी 5 तारा का गिव अवे। एब्सोल्युटली द मूवीज नेम वाज एयरलिफ्ट। लेट्स टेक यू टू वन मोर ट्रैक, उसके बाद ले रहे हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कहीं जाइएगा मत क्योंकि बहुत सारा फन अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर इज स्टिल बाकी, यू नो।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route, rerouting.
6: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
6: Kyu?
7: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
6: Achha, to seedha wahi le chalo.
8: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
7: Your new destination has arrived.
9: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
10: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
12: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को.
14: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
13: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
15: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया.
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया.
15: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
17: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
19: भूख लगी, जोर
16: रोकी, भूख लगी।
19: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
20: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू। ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
18: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एंबियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
21: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
18: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
22: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
23: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

एब्सोल्युटली बिंदास बोलो जी, और आपको बिंदास खबर देता हूं कि पीएमजे ज्वेलर्स आ चुका है जी डालस फोर्ट वर्थ। इफ यू नो द ब्रांड फ्रॉम इंडिया देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप नहीं जानते तो आपको ये बता दूं कि 60 सालों का ज्वेलरी एक्सीलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप लेके आ चुका है पीएमजे ज्वेल्स। दे आर नाउ इन फ्रिस्को। चाहे स्टनिंग गोल्ड हो, डायमंड हो, ब्राइडल कलेक्शन हो, हर सेलिब्रेशन को, हर माइलस्टोन को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ज्वाइन देयर इवेंट, देयर स्टोर व्हिच इज नाउ ओपन फॉर यू, नॉट एनी मोर सॉफ्ट ओपनिंग, द ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है, द ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। यस, इट्स द इंग्लिश वेरी कंबाइंड विद द हिंदी लैंग्वेज बिकम वेरी नाइस कंजंक्शन, एंड देर इज अ स्टेशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ जंक्शन, बट नन द लेस आपने सिर्फ जाना है पीएमजे ज्वेलर्स पे। दे आर ऑल्सो एसोसिएट विद महेश बाबू एंड सितारा गौतम नेनी। पीएमजे इज अ नेम ट्रस्टेड बाई जेनरेशन। अब 60 साल से कर रहे हैं भैया, तो आपके माँ बाप से लेके आपके रिश्तेदारों ने, बहुत सारों ने ट्रस्ट किया है पीएमजे को, एंड नाउ टू गेन दैट ट्रस्ट एंड बिल्ड दैट ट्रस्ट विद यू, दे आर हियर इन फ्रिस्को। विजिट पीएमजे ज्वेल्स इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी। मेक श्योर टू चेक इट आउट। अभी के लिए गाना विदाउट डाउट

मैं ना बचपन में बड़ा परेशान होता था। मैंने एक दिन मम्मा से पूछा, मम्मी मेरी शक्ल भगवान से मिलती है? मम्मी कहती, नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है। क्यों? मैंने कहा, नहीं जब भी मैं कहीं जाता हूँ वो कहते हैं हे भगवान फिर आ गया।

0: जबरदस्त गाना, जबरदस्त फिल्म, दिस वाज नैना दा क्या कसूर, एक ऐसी फिल्म से लिया गया था ये गाना जो कि मुझे बहुत पसंद थी, एंड दिस वाज अंधाधुन। अंधाधुन एक ऐसी फिल्म जो अगर आपने नहीं देखी है देन आई वुड से दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट वॉच। और जब आई थी फिल्म तो पहले मुझे लगा कि यार क्या, एक दो बारी सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर वॉचिंग इट एंड आई डिडंट आई ग्लिम्प्स दैट इट, तो मुझे समझ नहीं आया था कि फिल्म कितनी कामयाब है यार। बट दिस फिल्म द एक्टिंग हर कैरेक्टर की, आई मीन एवरी बॉडी डिड देयर रोल इन सच अ फिनेस के व्हेन यू वॉच दैट मूवी यू एक्चुअली फील यार वाओ दिस इज समथिंग समथिंग वंडरफुल। सो इफ यू हैवंट सीन द मूवी अंधाधुन, इट इज डेफिनेटली अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड दैट यू प्लीज गो वॉच इट। यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो, इट्स 6:11 इन द स्टूडियो क्लॉक। आज ट्यूजडे है जी, और ट्यूजडे को हिंदी में हम कहते हैं मंगलवार। मंगलवार को ध्यान रखना होता है, मन की बात बीवी से नहीं करनी, क्योंकि मन की गल, मन दी गल जे बीवी नाल की थी तो वॉर होने के चांसेस होते हैं। आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अनदर बर्थडे विच इज जिनेडिन ज़िडान, सॉकर प्लेयर हैं जी जो कि फ्रांस में पैदा हुए, June 23rd, 1972, स्टार अटैकिंग मिडफील्डर हु बिगैन हिज करियर एट द एज ऑफ 14, लेड द फ्रेंच नेशनल टीम फॉर ओवर 10 years एंड प्लेड क्लब सॉकर फॉर जुवेंटस एंड रियल मैड्रिड। ही हेल्प्ड फ्रांस विन द 1998 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, स्कोरिंग 2 goals इन द फाइनल मैच। फॉर नाउ इट इज अनदर गाना जो कि फिल्म बहुत चर्चे में है। मुझे ऐसी फिल्में ना समझ आती नहीं है, आपको देखनी है आप देख सकते हैं। आई विल वॉच इट बट आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दिस वॉचिंग दिस मूवी विच इज बंधु 2.0। गाना मूवी का नाम कॉकटेल दुइटो।
1: इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यू आर गेटिंग मी।
2: यू गाइस वांट ऑडिशन? या
3: रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: अगर आपकी बीवी ऐसी फीलिंग ले कि उसको लगे मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, तो पैशन हेल्थ केयर पे ले जाना, मल्टीपल लोकेशंस इन DFW, दे आर हेयर टू हेल्प द कम्युनिटी। एंड इफ एनी टाइम यू फील अनईजी, जोक्स अपार्ट, नहीं जोक्स क्यों अपार्ट, वैसे कभी भी लग सकता है, उनका कुछ नहीं है, उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। जैसे वो कहती है ना कि मुझे ना कुछ फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है आप पूछते हो, तो कहते पता नहीं पर कुछ फील हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ फील हो तो आप उनको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे ले जाइए, दे हैव मल्टीपल लोकेशन DFW, एंड यू नो व्हाट, ये जो डॉक्टर है ना ये 30 मिनट लगाएंगे अपने पेशेंट के साथ। तो हस्बैंड अच्छा है ना, 30 मिनट तक कम से कम अंदर बैठी रहेगी। अच्छा जी, 30 मिनट्स का टाइम लगाते हैं बिकॉज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज द रियल कॉज, क्योंकि हम तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसके बाद बताऊंगा भगवान भी समझ नहीं पाए थे वो क्या हुआ था बाद में, बट नाउ यू नीड टू गेट टू पैशन हेल्थ, स्पेशली इफ यू आर इन द मेडिकल फील्ड एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ जॉब। अगर आपके फैमिली में या आप खुद डॉक्टर हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, पेडाइट्रिशियन हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, पैशन हेल्थ केयर इज लुकिंग फॉर यू। दे आर ग्रोइंग एंड एज पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ दे आर हायरिंग। इफ यू वॉन्ट टू सेंड योर रेज्यूमे, नोट डाउन दिस ईमेल विच इज passionhealthphysicians@gmail.com, passionhealthphysicians@gmail.com, एंड सेंड योर रेज्यूमे देयर, या फिर आप टेक्स्ट करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं 217-454-4639, दैट्स 217-454-4639। एंड ऑफ कोर्स पैशन हेल्थ हैज अ लोकेशन नियर यू, दे हैव मल्टीपल लोकेशंस एंड दे रियली वांट टू टेक केयर ऑफ द कम्युनिटी द बेस्ट वे दे कैन। मेक श्योर टू विजिट देम फॉर योर नेक्स्ट डॉक्टर्स विजिट एंड आई एम गोना टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक। पर जैसे मैंने कहा था कि कई बार तो ऐसा होता है कि उनको खुद नहीं पता होता क्या हमारे साथ गलत है, बट पैशन हेल्थ केयर विल ट्राई टू फिगर आउट। एक बार ये एक लड़की तपस्या कर रही थी, बड़ी देर से लगी हुई थी, भगवान जी उतर ही आए, कहते मैडम क्या तकलीफ है, इतने सालों से आप तपस्या करे जा रही हैं, मेरे को खुद ही नीचे आके पूछना पड़ रहा है आपसे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। वो कहती हैं रहने दे भगवान, आप नहीं समझेंगे।
1: बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले, बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले, बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना।
0: भगवान 10 ऑप्शन दे चुके हैं उसको कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, नहीं पता लग रहा।
1: गाना चला तो गाना

0: मजा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा।
2: लो जी डीजे वाले बाबू ने तो गाना बजा दिया है। मेरी भी एक ब्रेक छोटी सी आने वाली है, पर आपने कहीं नहीं जाना है। पता है आपको ना, अच्छा ही होता है कि ये जो फांसियां वांसियां बंद हो गई हैं, क्योंकि अगर किसी यूट्यूबर को फांसी देते तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछते तो बोलता फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिए। ये सिस्टम चल रहा होता ना, क्यों हम ऐसी बातें करें? हमें सिर्फ अच्छी बातें करनी है मार्विन, एंड अच्छी बातों में ये है कि फनीश जी रेडियो इज 24 hours 7 days a week अवेलेबल फॉर योर एंटरटेनमेंट। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ, 40 more minutes इन दिस जर्नी वी कॉल द बिंदास शो। तो आप डायल मत चेंज करें और मैं अच्छे गानों की लिस्ट लेके बस अभी आया।
3: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: Mamu! देखो क्या हो गया।
12: ओ क्या हो गया?
11: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
12: ओए जर्मन का कमाल है।
11: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
12: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
13: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
14: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
15: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
16: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
17: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
19: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
18: इतना सब और प्राइस?
19: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
2: मैं।
6: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
19: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
20: छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
21: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
22: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: शादियां ना बड़ी धूमधाम से होती हैं, और चलो कई धूमधाम से नहीं भी होती, पर जो शादी में जो ग्रूम होता है ना, ग्रूम उस पर बड़ी तवज्जो दिया होता है कि मतलब हीरो फीलिंग देते हैं उसको, कि मतलब उससे इंपॉर्टेंट बंदा कोई है ही नहीं, जबकि उसको क्या पता होता है कि आगे क्या होना है उसके साथ। खैर, तो ये जो प्रथा है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मैं आपकी थोड़ी सी आंखें खोलने वाला हूँ कि ये प्रथा में क्या होता है कि जब दूल्हा आता है, उसकी एंट्री होती है, तो गाना लगता है अजीम शान शहनशाह। अब ये नहीं पता कि शादी के बाद वो शहनशाह टीवी का चैनल भी नहीं चेंज कर सकता।
1: दास है बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: उसके बाद तो वो ये पूछता है क्या देख रही हो? अच्छा है, अच्छा है।
2: बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है।
0: बंदी पूछती भी है आपने कुछ और देखना था? नहीं नहीं कोई बात नहीं। 6:26 हो चुके हैं जी स्टूडियो की घड़ी में, 6:26। और घर की बात बताता हूँ, घर में क्या होता है, घर में बहुत चीज़ें पड़ी होती हैं, कभी इधर कभी उधर। ऐसे ही एक घर में एक वाज पड़ा था टेबल के ऊपर, और 3 साल से वहीं था। अब हस्बैंड गया हुआ था काम पे, बीवी घर पे छुट्टी थी, और बीवी सफाइयाँ कर रही थी, सफाई करते करते वो वाज जो है वो गिर गया और टूट गया। अब पति घर आया तो 3 घंटे लड़ाई हुई कि वाज टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, बला बला बला बला। उसके बाद ये समझ आई कि वो वाज पति ने 3 साल पहले गलत जगह रखा था, बेवकूफ़ आदमी।
1: ये

आज के दिन अगर बात की जाए इतिहास की, इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट टाइप राइटर आज के दिन इंट्रोड्यूस किया गया था जी। द डे वॉज 23rd of June, मतलब डेट वॉज 23rd of June, डे थोड़ी होता है मार्विन, डे तो आज ट्यूजडे, हाँ पर जून 23rd की तारीख थी। तारीख पे तारीख, एक तो सनी देओल ने वैसी तारीख को इतना बदनाम कर दिया, बट आज की तारीख जून 23rd को द फर्स्ट टाइप राइटर वॉज सीन ऑन दिस डे इन 1868 में अमेरिकन इन्वेंटर्स क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, सैमुअल डब्ल्यू सोल and Carlos Ginnon were granted a patent for the first typewriter. The concept was revolutionary, and within a few years, the typewriter and its efficient QWERTY keyboard had become an indispensable office tool and a fixture in the literary world. Aaj ke din mein bhi kahi jagah dekha jata hai typewriter, and I'm very fantasized by typewriters. I think jo purani writing jinhone ki hai, tak tak tak tak tak tak, unka to tak tak tak tak, ghar walon ke dimag mein faltu ki peeda waisi. जैसे एक गुस्से में टाइप राइट कर रहा है, मैंने जान के नहीं लगाया गाने में वैसी म्यूजिक है, ऐसा है। टेकिंग यू बैक टू द 90s विद सल्लू भैया एंड सम गोरी गोरी कोड़ियां इन लंदन।

लायनल मेसी इज लीडिंग द गेम अगेन विद 5 गोल्स. व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर ही इज. मैंने पांचों के पांचों गोल देखे हैं यार. आई मीन इट इज क्रेजी द वे ही मूव्स, द क्विकनेस, द माइंड दैट ही वर्क्स विद ड्यूरिंग दैट दोस गेम्स. आई थिंक इट्स जस्ट फैंटास्टिक. व्हाट अ लवली प्लेयर. नंबर 2 इज अर्लिंग एंड ही इज एट 4 फ्रॉम नॉर्वे. देन किलियान विद 4 गोल्स एज वेल. दीस आर द टॉप 3 ऑन द गोल चार्ट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. Very exciting games that are happening, and a lot of people in the United States are getting to see these games live in person. I think that's a big achievement for a lot of those who've never seen a football game at that level. Soccer kehlo yaar, football yahan pe to gure hamare galat samajh jate hain, but soccer. Kehte hain ji aandhi se dar nahi lagta sahab, aandhi se dar nahi lagta sahab. Wo jo aandhi leke aati hai aur uske baad jo hota hai usse dar lagta hai sahab. Jaise ki light jaane se yaar. हर बारी गलत मत समझा करो. इंसान शरीफ भी होते हैं लोग मेरे जैसे.

विशाल एंड शेखर की म्यूजिक में बनाया जी ये गाना एंड यू गॉट टू वॉच दैट कॉन्सर्ट जुलाई 12th कर्टिस कलवेल सेंटर टिकट्स अवेलेबल एट cashpatelproductions.com एंड इफ यू हैव अ देसी गर्ल विद यू देन टेक हर टू श्री कृष्णा ज्वेलर्स दिस इज अ स्टोर दैट विल रियली रियली मेक हर हैप्पी बिकॉज डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड एंड देव गॉट अ ग्रेट कलेक्शन देयर रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी इज व्हाट यू फाइंड एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स चाहे क्लासिक गोल्ड डिजाइन हो डायमंड्स हो या फिर हो जी इंट्रिकेट कुंदन या स्टनिंग पोल की कलेक्शन एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू celebrate life's special moments. Now welcoming you at their new location, 13145 Suite 220, that is on Main Street, Frisco, Shri Krishna Jewelers. Do check that out. मेरे ना क्लास में एक बहुत सुंदर सी मैडम पढ़ाती थी मैं इंग्लिश जी और इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते आज उन्होंने एक दिन बड़ी इमोशनल सी बातें कर दी थी पता नहीं क्या हुआ उनको तो कहती हैं कि चलो ये बताओ कि जिंदा रहने के लिए वैसे बेसिक क्या ज़रूरी है तो मैं खड़ा हुआ मैंने बोला मैम वो एक्चुअली ना क्या है कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम बस फिर उन्होंने ऐसी कान पे लगाई वो बज मेरे कान में आज तक बज हो रहा है

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रेयान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ओके चौकस कर लो फोकस, क्योंकि मेरा टाइम हो गया जी जाने का, टाटा बाय बाय वाले का जी, क्योंकि बस जो आता है वो जाएगा जी, जो शुरू हुआ उसको खत्म होना है। फॉर नाउ इट इज द एंड ऑफ माय शो फॉर टुडे, बट ऊपर वाले ने दिया एक और दिन तो उसको धन्यवाद करता करता, उसको थैंक यू करता करता यहाँ पहुंच जाऊंगा जी। 5 to 7 आई विल गिव यू कंपनी विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो, जिसका नाम है द वन एंड ओनली द बिंदास शो, ब्रॉट यू बाय योर वेरी ओन बंदा बिंदास, मारविंदास नाम है जी। अच्छा, उम्र बढ़ानी है अपनी, हेल्दी रहना है आपको। कहते हैं कि अच्छे आदमी का चेहरा देख लो तो ऐसा हो जाता है कि आप लंबे जीते हो और हेल्दी रहते हो। तो मेरी फोटो देखनी है आपको इंस्टाग्राम फेसबुक बंदा बिंदास मारविंदास पे चले जाओ। अब आप पूछोगे मारविन तू यार ये बातें सारी करता कैसे है? देखो जी मैं हूँ दूध का धुला, क्योंकि जब मैं नहा रहा होता हूँ ना तो मैं एक चुटकी दूध, मतलब एक दो बूंदे दूध की अपने मग्गे में डाल लेता हूँ और फिर मैं धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि मैं दूध का धुला हूँ भाई। विद दैट इट इज़ गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। रिमेंबर द लेडी और द लेडा इन द फोटो, आई मीन नॉट फोटो, इन द शीशा मिरर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन भैया, उसका ख्याल रखो जिंदगी में। बाकी चीज़ें अपने आप टिच टिच, जैसे वो टेट्रिस की गेम खेलते हैं ना, डब्बे जोड़ रहे होते हैं टिंग टिंग ब्रूम, बस वैसे आपको अपना ख्याल रखना है, अपने आप को देनी है टॉप प्रायोरिटी। मतलब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी को नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं, सबसे ज़्यादा हीरो आप लाइफ में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंत्री आप, समझ गए? अपने आप को टॉप पर लेवल पर रखो। देखो सारी चीज़ें हैं टेट्रिस की गेम की तरह टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग हो जाएंगी। मेरे बात इप्पी द हैप्पी
1: हमारी अधूरी कहानी,
0: कल पूरी करूंगा मैं ये वाली अधूरी कहानी, लेट इट बी अधूरी, क्योंकि हर बार शो करने आना है, कुछ कहानियां अधूरी रह जाएं तो अच्छी होती हैं, क्योंकि फिर शुरुआत करेंगे ना कल। गुड नाइट।